सुप्रभात, ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज दिन मंगलवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 13वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 4 अगस्त सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58:45 हो रहे हैं। आरंभ होती हमारी आज की यह सभा। आप सबका दिन मंगलमय हो।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब आइए समाचारों के लिए हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे हिंदी समाचार। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि पार्टी 3 विधानसभा उपचुनाव में मिले जनादेश को स्वीकार करती है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता पर भाजपा पर विश्वास बनाए रखने का आभार व्यक्त किया। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी बांकीपुर और दतिया में के चुनाव परिणामों का गहन विश्लेषण करेगी। भाजपा के सत्येंद्र पटेल ने वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है, जबकि जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत कुमार ने बिहार की बांकीपुर और कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव से बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने ऊर्जा, अवसंरचना, व्यापार, रक्षा, शिक्षा और संस्कृति पर विशेष ध्यान देते हुए रणनीतिक साझेदारी की विस्तृत समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय चुनौतियों पर भी चर्चा की और भारत उज्बेकिस्तान बहुपक्षीय सहयोग के विस्तार पर विचार विमर्श किया। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में एक समान विचार हैं। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक कल शुरू हुई। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बुधवार को नीति वक्तव्य जारी कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के चलते आरबीआई के सतर्क रुख अपनाते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने की संभावना है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के संबंध में मुलाकात की। बैठक के बाद भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग को इसके लिए माफी मांगने को कहा है। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनसे धारा 79 के अंतर्गत दी गई सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस लिया जाना चाहिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर सूचित किया है कि इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन पर नए सीमा शुल्क को लेकर मुकदमा दायर किया है। राज्यों ने इसे सुप्रीम कोर्ट

0: द्वारा फरवरी में रद्द किए गए आयात शुल्कों की जगह नए शुल्क लगाने का बहाना बताया है। पिछले महीने अमरीका ने 59 देशों और यूरोपीय संघ पर दोहरे अंकों का शुल्क यह आरोप लगाते हुए लगाया था कि उन्होंने जबरन श्रम से उत्पादित आयात पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए थे। जम्मू कश्मीर सरकार प्रवासी परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से लगभग 50,000 प्रवासी परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के डेटाबेस में एकीकृत कर रही है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि सरकार प्रवासी राशन कार्ड को साधारण खाद्य पात्रता कार्ड की जगह व्यापक सामाजिक कल्याण लाभ के तौर पर परिवर्तित कर रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब आइए सुनते हैं आज का चिंतन। विषय है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय।
2: जीवन की परवाह, क्योंकि उनके हृदय में असीम करुणा थी। हाँ, वो करुणा ही तो थी जो उमड़ पड़ी थी उनके अंतरतम से। यही करुणा मानव को महामानव बना देती है। तभी तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर मानव जाति के लिए एक दृष्टांत बनकर इतिहास के पृष्ठ में अमर हो गए। मनुष्य के अंदर दया और करुणा होनी चाहिए। वो दया और करुणा अपने परिवार तक ही सीमित न होकर अड़ोस पड़ोस, परिचित अपरिचित किसी के लिए भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोक सेवा के लिए आपके पास प्रचुर धन राशि हो। आपके पास कुछ नहीं है, पर आपके हृदय में मात्र करुणा के दो चार कण हैं तो वो भी बहुत बड़ा खजाना है। समस्याएं कहां नहीं बिछी हैं, संकटग्रस्त कौन नहीं है। सेवा और करुणा की जरूरत चारों ओर है। आपको जरूरत है उसकी चादर बिछाने की। रास्ते के हर मोड़ पर पीड़ित हैं, असहाय हैं। जरूरत है उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने की, उनके दर्द को अपना दर्द समझने की। कुछ क्षण के लिए आप स्वयं पीड़ितों के जीवन की कल्पना कीजिए, उसकी देहरी पर खड़े होकर देखिए और सोचिए। आपके हृदय में स्वयं करुणा उमड़ पड़ेगी और उमड़ी हुई करुणा के दो चार छींटों से ही उन्हें नहलाइए। फिर देखिए उनके आशीर्वादों की फुहार, उसमें नहाकर आपको कैसी अलौकिक शांति मिलती है। छोटी छोटी सेवाओं को भी कभी छोटा मत समझिए। अड़ोस पड़ोस, मोहल्ला, रास्ता, नगर, कहीं भी आप ऐसी जरूरत देखिए, अपनी करुणा का दरवाजा तुरंत खोल दीजिए। हो सकता है आपकी करुणा भरी छोटी सी सेवा सहायता किसी को काल के गाल से निकाल दे, किसी माँ का लाल लौटा दे, किसी सुहागिन का लुटता हुआ सुहाग लौटा दे, किसी बच्चे को अनाथ होने से बचा दे, किसी वृद्ध या किसी परिवार को बेसहारा होने से बचा दे। हो सकता है इसके लिए बदले में आपको कोई कीमत ना मिले, पर आपका हृदय परमानंद से परिपूर्ण जरूर होगा। दया और करुणा रहित मानव मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गिरजाघर जाए, वो ईश्वर से बहुत दूर है। और ईश्वर के नजदीक वही है जिसने सोच लिया है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सम्राट अकबर के दरबार में रहने वाले प्रधान सेनापति खानखाना रहीम, हाथ में एक पत्र है। पत्र में हैं सिर्फ दो पंक्तियां, सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सब कोय। पत्र लाने वाला है एक दीन दरिद्र ब्राह्मण। रहीम सोच में है। पत्र किसी ऐरे गैरे का नहीं, ये तो उनके परम श्रद्धेय मित्र संत तुलसी का है। उन्होंने तुलसी के अधूरे दोहे को पूरा किया। गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए। साथ ही ब्राह्मण की थैली उन्होंने पर्याप्त अशर्फियों से

0: भर दी। उसे धन की जरूरत थी, बेटी की शादी करनी थी, वो निर्धन था। तुलसी के पहेली नुमा इशारे पर यहां रहीम ने ब्राह्मण को धन दिया, महत्व उसका नहीं है, महत्व है रहीम के भाव का, उनके उदात्त चरित्र का। क्योंकि तुलसी ब्राह्मण है, हिंदू है, और खानखाना रहीम मुसलमान, पर वे तो तुलसी के परम मित्र हैं, परम भक्त हैं। तुलसी के मर्यादा पुरुषोत्तम राम से भी वे प्रभावित हैं। रहीम तो काशी उनकी कुटिया में भी आए हैं, तुलसी ने उनका आलिंगन किया है, भव्य सम्मान दिया है अपनी कुटिया में। रहीम ने मोहरों की थैली भेंट की है और तुलसी के इनकार करने पर कहा है इसे रखना ही होगा, क्योंकि चित्रकूट में जो तुम संत सम्मेलन और भंडारा कर रहे हो उसमें इसे लगा देना, मैं भी उस सत्संग में भाग लेने जरूर आऊंगा। चित्रकूट में रहीम संत तुलसी के साथ बहुत दिन तक रहे थे, इसके प्रमाण भी हैं। एक दिन तुलसी ने चित्रकूट में एक हाथी को स्नान के बाद सूंड से अपने ऊपर धूल डालते देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने मित्र रहीम से पूछा, धूरि धरत निज शीश पर, कहु रहीम के ही काज? और रहीम ने चट जवाब में कहा, जेहिरज मुनि पत्नी तरी, सो ढूंढत गजराज। बात तुलसी और रहीम की नहीं, बात इन कविताओं और कवित्व प्रतिभा की भी नहीं, बात है कट्टर जात पात के उस जमाने में भी हिंदू मुस्लिम एकता की, सद्भावना की। कहां है वहां सांप्रदायिकता का द्वेष या भेदभाव? कोई भी संत या सूफी जाति पाति के प्रपंच से बहुत ऊपर होता है, वह तो मानवता का उपासक होता है। उसके जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, त्याग, परोपकार, अहिंसा और दया। उसका कोई दुश्मन नहीं होता। कबीर, नानक, रैदास आदि संत फकीर हिंदू मुस्लिम धर्मकांडों से बहुत ऊपर उठ चुके थे। उन्होंने बहुत पहले ही इस बात का अनुभव कर लिया था। सांप्रदायिक भावना से एकता का खंडन होता है, वह राष्ट्र की जड़ को खोखला करता है, हिंसा और रक्तपात कराता है। उन्होंने एकता की डोर से उसे एक करने की कोशिश की, तभी तो कहा, हिंदू कहे हम बड़े, मुसलमान कहे हम, एक मूंग दो दाल हैं, को ज्यादा को कम। उन्होंने बार बार समझाया, राम रहीम एक हैं, उन्हें दो मत जानो। अपनी आत्मा को निर्मल बनाने पर, स्वयं को सुधारने पर ही उन्होंने हमेशा जोर दिया, संपूर्ण मानव जाति एक ही परमात्मा की संतान है। जात पात के भेदभाव से परे होकर जो मानवता को मानव धर्म मानता है, जो भिन्न और विरोधी मतों को एक एकता की सुदृढ़ डोर से बांधने का प्रयास करता है, वही संत है, वही मानव है, और वही ईश्वर या अल्लाह के निकट है।
1: आप सुन रहे थे चिंतन, विषय था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। अब आइए सुनते हैं आज श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी।

नगरी के राजा शीलनिधि के वैभव तथा ऐश्वर्य की तुलना में इंद्रपुरी भी हेय थी। राजा ने जब अपनी कन्या के स्वयंवर का आयोजन किया तो सैकड़ों रूपवान राजे महाराजे उसका वरण करने के लिए वहां उपस्थित हुए। घुमंतु नारद जी भी वहां पहुंचे। राजा शीलनिधि ने उनका उचित आदर सत्कार करके उनसे अपनी कन्या का भविष्य बताने की प्रार्थना की। विश्व मोहिनी का रूप देखकर देवर्षि अपना वैराग्य भूल गए। कन्या के लक्षण ऐसे जिन्होंने देवर्षि के मन में उसे प्राप्त करने की अदम्य लालसा जगा दी, लेकिन उसके लिए वैसे ही रूप की आवश्यकता थी। हरि को अपना सबसे बड़ा शुभेच्छु जान नारद जी ने उनसे अपने लिए उन्हीं का अपना अनुपम रूप मांगा। भगवान ने कहा, हे योगी मुनि, रोग से व्याकुल रोगी यदि कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे वो नहीं देता। मैंने भी आपका हित करने की ठान ली है, अतः आपका अकल्याण नहीं होने दूंगा।

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। अब आइए हम आपको बता दें आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की एक संक्षिप्त रूपरेखा।

श्रोताओं, सुबह 7 बजे आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग। 7:20 का वक्त होगा कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता का। सुबह 7:30 पर आप लुत्फ उठाएंगे गैर फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में गीत संगीत का। सुबह 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात। 8:15 पर सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। प्रादेशिक समाचार का वक्त होगा सुबह 8:30 पर, इसे आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 8:45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी। सुबह 9 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। सुबह 10 बजे आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम हैलो हजारीबाग। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 1:10 तक आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

दोपहर 1:20 से आप फिर से सुन सकेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। दोपहर 2:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। विविध भारती के कार्यक्रमों को पुनः आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से शाम 4 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 4:02 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। शाम 4:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की आज की कड़ी को। शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम 5:02 पर आप सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे ग्रामीण भाई बहनों को संबोधित कार्यक्रम खेतीबारी। शाम 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

0: शाम 6:02 पर आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। शाम 7:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 7:10 पर सुनेंगे जिले में आजकल, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार आप सुनेंगे शाम 7:15 पर। शाम 7:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित यह कार्यक्रम होगा। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे संसद समीक्षा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 8:15 पर आप लुत्फ उठाएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी चाहत का। रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। रात्रि 9:00 सुनेंगे News@9। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्टी लाइट, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। अगर ये प्रसारण आपको प्राप्त नहीं होता है तो फिर आप कार्यक्रम रजनीगंधा का लुत्फ उठाएंगे। कार्यक्रम फिल्म संगीत का ये है कार्यक्रम है। और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आज के फनकार। रात्रि 11:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। रात्रि 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। रात्रि 11:10 पर आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का समापन हो जाएगा। तो अभी आप सुन रहे थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की एक संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: अथ वार्ताः। लोकसभया सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयकं पारितम्। अनेन विधेयकेन भारतस्य प्रधान न्यायाधीशं विहाय सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या 33 इत्यतः 37 पर्यन्तं वर्धिष्यते। अस्य वर्षस्य मई मासे राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अस्मिन् विषये अध्यादेशं प्रसारितवती आसीत्। केन्द्रीय विधि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवालः एतत् संशोधन विधेयकं लोकसभायां प्रस्तुतवान्। असौ अवदत् यत् एतत् न्याय व्यवस्थायां प्रवर्तमान परिष्कार प्रक्रिया दिशि महत्वपूर्णः पदक्षेपः अस्ति। विपक्षदलानां विरोध कारणात् लोकसभायाः कार्यम् अशेषे अपि दिने बहुवारं स्थगितं जातम्। कार्यारम्भानन्तरं लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला ग्लास्गो नगरे आयोजितासु 23तम राष्ट्रमण्डल क्रीडासु उत्कृष्ट प्रदर्शनं कृतवतां क्रीडकानां अभिनन्दनम् अकरोत्। तदनन्तरं प्रश्नकालस्य आरम्भे विपक्षसदस्यैः छात्रान्दोलनेषु कथितस्य आरक्षकबलप्रयोगस्य विषयः उत्थापितः। अस्मिन्नेव समये सांख्यिकी कार्य क्रियान्वयन मन्त्री राव इन्द्रजीत सिंहः भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयकं प्रस्तुतवान्। तथा वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बैंकर्स बुक्स एविडेंस इत्येतत् विधेयकं प्रस्तुतवती। विधानसभायाः उपनिर्वाचनेषु जनसुराज दलस्य नेता प्रशांत किशोरः बिहार राज्यस्य बांकीपुर आसने विजयं प्राप्तवान्। तत्रैव गुजरात राज्यस्य मंजलपुर आसने भाजपा दलेन स्वस्थानं पुनः प्राप्तम्। मध्यप्रदेशस्य दतिया आसने च कांग्रेस दलेन विजयम् अवाप्तम्। बिहारे प्रशांत किशोरः भाजपा दलस्य प्रत्याशिनं नीरज कुमारं 24,300,319,000 पराजितवान्। असौ 150,164,000 प्राप्तवान्। गुजराते भाजपा दलस्य प्रत्याशी सतीश पटेलः कांग्रेस दलस्य भीका भाई रबारी इत्येनं 30,000+ पराजितवान्। मध्यप्रदेशस्य दतिया आसने कांग्रेस दलस्य प्रत्याशी घनश्याम सिंहः भाजपा दलस्य आशुतोष तिवारी इत्येनं 6,000+ पराजित्य पुनरपि विजयं प्राप्तवान्। एतेभ्यः त्रयेभ्यः विधानसभासनेभ्यः मतदानं विगतमासस्य 30 दिनांके एव सम्पन्नमासीत्। तेलंगानायाः हैदराबादस्थले अद्य ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्यदलस्य सहैव सम्पत्ति पुनर्प्राप्तेः ब्रिक्स एक्सपोर्ट नेटवर्क इत्यस्य द्वितीयोपवेशनं प्रारप्स्यते। अस्य द्विदिवसीयोपवेशनस्य आयोजनं स्थैर्याय, नवोन्मेषाय, सहयोगाय, निरन्तरतायै च निर्माणम् इति विषयमाधारीकृत्य क्रियते। अस्मिन् कार्यक्रमे ब्रिक्स सदस्य देशेभ्यः वरिष्ठनीति निर्मातारः, व्यावहारिक विशेषज्ञाः, सहैव भ्रष्टाचार विरोधी विधि प्रवर्तन अभिकरणानां प्रतिनिधयः अपि भागं ग्रहीष्यन्ति इति सम्भाव्यते। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः ह्यः नवदिल्ल्यां उज्बेकिस्तान देशस्य विदेशमंत्रिणा बख्तियार सईदोव इत्यनेन सह वार्ताम् अकरोत्। उभाभ्यां मंत्रिभ्यां भारत उज्बेकिस्तानयोः रणनीतिक सहभागितायाः विस्तृत समीक्षा कृता। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अवदत् यत् भारतीय क्रीडकैः ग्लास्गो नगरे आयोजितासु 26,000-तमवर्षस्य राष्ट्रमण्डल क्रीडासु भारतं पदकतालिकायां चतुर्थस्थाने स्थापयित्वा गौरवपूर्णं इतिहासं विरचितम्। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य असम

0: मेघालय उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किमेषु अतिवृष्ट्यै रक्तवर्णीय संचेतना प्रसारिता इति वार्ताः।
1: एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग।

इंद्रदेव सिंह को अभी आप सुन रहे थे इस लोकगीत में, और अब आइए सुनते हैं जरूरी संदेश।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: जरूरी संदेश के बाद आपका एक बार फिर से कार्यक्रम लोक गीत में स्वागत है। लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। और अब लीजिए पेश है कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

0: 102.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता। कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं भेंट वार्ता। विषय है बोन ट्यूमर, कारण, लक्षण और बचाव। इस बारे में विस्तार से जानकारियां दे रहे हैं डॉक्टर मृत्युंजय कुमार और इनसे बातें कर रहे हैं अली शबीर।
1: श्रोताओं, आज के हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित हैं हजारीबाग शहर के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मृत्युंजय कुमार, जिनसे हम बातचीत करेंगे बोन ट्यूमर के बारे में कि बोन ट्यूमर या बोन कैंसर ये क्या है, इसके होने के कारण क्या हैं, किस तरह के उम्र के लोग आमतौर से ज्यादातर ग्रसित होते हैं, इससे बचाव की क्या संभावनाएं हैं, ये सारी चीजें हम इनसे जानते हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार साबिर जी, और श्रोतागण को भी नमस्कार।
1: सर, ये बोन कैंसर, ये बोन ट्यूमर, ये क्या है?
2: बोन ट्यूमर, बोन में जो ग्रोथ हो जाता है, अननेसेसरी ग्रोथ,
1: मतलब हड्डी बढ़ जाती है,
2: जिसको हम लोग बोन ट्यूमर कहते हैं। बोन ट्यूमर दो प्रकार का होता है, एक बेनाइन और दूसरा मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट जिसको कैंसर बोलते हैं।
1: अच्छा जी।
2: तो हड्डियां जो एबनॉर्मल रूप से बढ़ जाती है
1: जी,
2: वो दो प्रकार का होता है, बेनाइन और मैलिग्नेंट। बेनाइन जो कैंसर का रूप नहीं है, लेकिन कैंसर का पहले का रूप हो सकता है।
1: अच्छा जी, जी।
2: और मैलिग्नेंट है, वो कैंसर कैंसरस है, यानी ये आपको रियल कैंसर हो गया बोन का।
1: सर, तो जैसे आपने कहा कि हड्डियां बढ़ जाती हैं, तो इसका कोई कारण है क्या?
2: बोन ट्यूमर जो भी है, बेनाइन टाइप का या मैलिग्नेंट टाइप का, यानी कैंसरस वैरायटी जो है बोन ट्यूमर का, जिसका एटियोलॉजी यानी जो कारण है, वो इसका पता नहीं चला है अभी तक। मतलब इडियोपैथिक बोला जाता है मेडिकल टर्म में,
1: जी जी।
2: जिसका एटियोलॉजी पता नहीं है, कारण पता नहीं है, लेकिन यहाँ ये कुछ कुछ अगर रेडिएशन के होता है, मतलब कुछ कुछ आप धारणाएं हैं कि ज्यादा रेडिएशन अगर के क्षेत्र में आप रह रहे हैं तब कैंसरस होने की संभावना ज्यादा है,
1: जी।
2: या ज्यादा कोई ट्रॉमा हो गया उसमें भी कैंसर डेवलप कर जाता है
1: जी।
2: लेकिन एटियोलॉजी अननोन है, यानी ज्ञात नहीं।
1: ये कह सकते हैं कि मैंने कुदरती तौर पर किसी को होना था तो उस तरह से वो हड्डी
2: बिल्कुल बिल्कुल बढ़ने, ये जेनेटिकल होता है कि वंशागत रूप से जिस व्यक्ति को ये ट्यूमर हो रहा है अपने पूर्वजों से, उसमें जीन इनहेरिट हुआ है, वंशागत से आया और
1: किसी ने वो फिर डेवलप कर लिया। तो जैसे हड्डियों के बढ़ने का की जो शुरुआत होती है, तो इस तरह से मरीज जो आपके पास आते हैं, तो किस तरह का कंप्लेन लेकर के आते हैं?
2: बोन ट्यूमर में सबसे पहला कंप्लेन होता है कि वो एक स्वेलिंग लेकर के आता है, सूजा हुआ बोन के पास, बोनी स्वेलिंग, तो हार्ड स्वेलिंग, जैसा हड्डी होता है उतना ही कड़ा सूजन लेकर के
1: आता
2: है। हाँ, दर्द हो सकता है, बोन में फ्रैक्चर हो सकता है, ज्वाइंट को इन्वॉल्व कर सकता है, वो सूजन जो है, अगर बड़ा हार्ट स्वेलिंग जो है, ज्वाइंट को इन्वॉल्व कर सकता है, जिसकी वजह से ज्वाइंट का जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड बने अवरुद्ध हो जाएगा।
1: अब ये जानना चाहेंगे कि जो हड्डियों में सूजन होता है, तो शरीर का कोई खास हिस्से का हड्डी में सूजन आता है या कहीं भी हो सकता है? ये
2: बोन ट्यूमर बेनाइन ट्यूमर है या मैलिग्नेंट ट्यूमर है, हर ट्यूमर का अलग अलग प्रकार है, अलग अलग ट्यूमर का अलग अलग जगह में होने की संभावना,
1: कई तरह के ट्यूमर है
2: और उनका स्थान अलग है। कोई ट्यूमर घुटना में होने का संभावना, कुछ ट्यूमर का संभावना है घुटना के नजदीक होता है, कोई ट्यूमर आपको खोपड़ी की हड्डी में हो सकता है, कोई ट्यूमर आपको जांग की हड्डी में हो सकता है, अलग अलग टाइप का कैंसर अलग अलग जगहों में उनका मतलब कॉमन जगह है।
1: और शुरुआती लक्षण सब में सूजन ही दिखता है।
2: शुरुआती सूजन, हड्डियां में दर्द
1: जी,
2: हड्डियां में विकृतियां भी और फ्रैक्चर भी हो सकता है
1: जी,
2: और ज्वाइंट जो जोड़ होता है
1: जी,
2: उसका गति में अवरुद्ध, जो मोशन जो होता है ज्वाइंट का, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड यानी गति अवरुद्ध हो जाता है,
1: उठना बैठना चलने फिरने में
2: दिक्कत हो जाती है, प्लस आपको वजन का लॉस हो जाता है,
1: हल्का लगने लगता है,
2: वजन लॉस होता है,
1: वेट लॉस होता है,
2: वीकनेस फील होता है, प्लस कैंसर का दूसरे ऑर्गन में, दूसरे सिस्टम में जाने की संभावना होती है, जैसे दिमाग में चला गया, लीवर में चला गया, लंग में चला गया,
1: तो ये मतलब हड्डी से वो ट्रांसफर होकर के
2: जो कैंसरस बोन ट्यूमर है वो अपने जगह से जहां पर हड्डी में हुआ वहां से ब्लड के माध्यम से दूसरे जगह चला जाता है
1: जी।
2: जैसे दिमाग में, फेफड़ा में, लीवर

0: में दूसरे और शरीर के अन्य भाग में
1: दूसरे अंगों को ये
0: दूसरे अंग को भी प्रभावित करता है
1: जी। तो सर मरीज जैसे इस तरह की कंप्लेन लेके आता है कि हड्डी में सूजन हो रहा है या दर्द हो रहा है, तो इसका जांच इसमें आप करवाते होंगे, स्पेशलाइजेशन करवाते
0: जी जी। बोन ट्यूमर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग एक सिंपल सबसे पहले एक्सरे करवाते हैं
1: जी,
0: जिस जगह में बोनी स्वेलिंग है
1: जी।
0: उसके बाद दूसरा हम लोग सीटी स्कैन करवाते हैं
1: जी।
0: उसका बायोप्सी करवाया जाता है कंफर्मेशन के लिए कि किस प्रकार का कैंसर है, जिसका कंफर्मेशन के लिए हम लोग बायोप्सी करते हैं, यानी बायोप्सी मतलब थोड़ा सा ट्यूमर का पार्ट काट के निकाल करके और लैब में जांच किया जाता है, कंफर्म हो जाता है कि किस प्रकार का ये बोन ट्यूमर है, कैंसिनस है कि बेनाइन।
1: सर तो बेनाइन आपने जो कहा कि बेनाइन जांच में पड़ताल में आ गया कि बेनाइन है, कैंसिनस नहीं हुआ, तो इसका इलाज तो आसान है।
0: हाँ, बेनाइन ट्यूमर का इलाज कैंसिनस की तुलना में आसान है। बेनाइन में होता है कि कभी कभी जितना साइज में वो डेवलप किया पूरा होल जीवन उतना ही साइज
1: रहेगा,
0: जिसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होता है पेशेंट को उस स्वेलिंग की वजह से
1: जी जी।
0: तो बेनाइन कुछ कुछ बेनाइन ट्यूमर को एज सच छोड़ दिया जाता है, कुछ नहीं किया जाता है
1: जी जी।
0: लेकिन कुछ कुछ बेनाइन ट्यूमर का भी लक्षण है कि लेट स्टेज में आगे चल करके वो कैंसर फॉर्म में
1: बदल सकता है।
0: तो बेनाइन ट्यूमर का इलाज थोड़ा आसान है, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर जानलेवा होता है, क्योंकि वो एक जगह से दूसरे जगह उसको फैलने का खतरा, दूसरे शरीर के दूसरे भाग में फैलने का खतरा होता है।
1: लेकिन शुरुआत के ही दौर में अगर लक्षण पता चल गया है तो फिर उसका इलाज तो
0: बोन ट्यूमर अगर इनिशियल स्टेज में अगर कैंसरस फॉर्म का भी बोन ट्यूमर अगर आपको शुरुआती दिनों में आपको पता चल गया
1: जी,
0: तो अगर आप चिकित्सक हड्डी रोग विशेषज्ञ चिकित्सक से या कैंसर विशेषज्ञ चिकित्सक से आप मिलते हैं तो उसमें भी उसका इलाज है।
1: तो किस तरह का उसमें ऑपरेशन करना होता है, दवा
0: जी जी। उसमें इलाज में कुछ कुछ बोन ट्यूमर का सर्जरी यानी ऑपरेशन से है, कुछ कुछ में बिजली का सेक लगता है जिसको रेडिएशन बोलते हैं, रेडियोथेरेपी
1: जी जी,
0: बिजली की सेक लगाई जाती है। कुछ कुछ में कीमोथेरेपी है, यानी दवा खिला करके ट्यूमर का साइज को कम किया जाता है या कंट्रोल में रखा जाता है बोन ट्यूमर।
1: ये सब इनिशियल स्टेज में अगर है तब, लेकिन
0: इनिशियल स्टेज में ही मेनली मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर का इलाज संभव है। अगर लेट स्टेज में आया है तो
1: फिर मुश्किल हो जाता है,
0: पेशेंट का सर्वाइवल यानी जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा दिन तक नहीं सर्वाइव कर सकता है।
1: अब ये जानना चाहेंगे सर कि ये जो बोन ट्यूमर का जो मसला है, जो ये समस्या है, ये किस तरह के लोगों को लोग इससे ग्रस्त होते हैं आमतौर से? ये अगर
0: बोन ट्यूमर रियली में अलग अलग प्रकार का बोन ट्यूमर अलग अलग एज ग्रुप में कॉमनली होता है
1: जी।
0: जैसे आपको सबसे पहले दो तीन का नाम लेना चाहूंगा चार, कि ये मोस्ट कॉमन जो होता है मैलिग्नेंट जो कैंसरस बोन ट्यूमर है
1: जी जी,
0: इसमें ओस्टियोसारकोमा और इविंग सारकोमा नाम है
1: जी।
0: ओस्टियोसारकोमा और इविंग सारकोमा जो सबसे खतरनाक ट्यूमर है, और एक जो कि जैसा ओस्टियोसारकोमा का कॉमन एज ग्रुप है 10 साल से 30 साल वाले उम्र वाले लोगों को कॉमनली होता है
1: जी।
0: और इविंग सारकोमा है वो भी आपको 5 से लेकर के 25 साल तक बच्चों को होने का संभावना रहता है, बच्चों और एडल्ट को
1: जी जी।
0: और एक कैंसरस फॉर्म है जिसका कैंसरस बोन ट्यूमर का कैंसरस फॉर्म है मल्टीपल माइलोमा
1: जी,
0: जो ओल्डर एज ग्रुप में होता है 40-45 साल के बाद वाले लोगों को होता है,
1: मतलब हर उम्र करीब करीब 10 साल की उम्र से लेकर के 40-45 साल की उम्र
0: जी, किसी भी उम्र अलग अलग टाइप का कैंसर अलग अलग एज ग्रुप में कॉमन है।
1: इसका कोई खास कारण ऐसा विशेष
0: आइडियोलॉजी अननोन है, कुछ कुछ अब धर रहे हैं कि रेडिएशन की वजह से होने का खतरा बढ़ता है, ये सब कुछ
1: इस तरह की बीमारी से लोग ग्रसित ना हो इसके लिए बचाव के तौर पर वो खुद क्या
0: बचाव के तौर पर आप यही कर सकते हैं कि रेडिएशन से बचिए
1: जी।
0: अल्ट्रा बोलता है कि धूप में अल्ट्रा वायलेट रे है, अल्ट्रा वायलेट रे की वजह से ज्यादातर कैंसर होता है।
1: अच्छा, इसमें खाने पीने का भी कुछ ऐसा
0: खाने है पीने का है कुछ कुछ कैंसर को लेकर के, खासकर बोन ट्यूमर में ऐसा तो कुछ नहीं है
1: जी।
0: लेकिन कुछ कुछ आंत का कैंसर है उसमें बताया जाता है कि कुछ खान पान पर डिपेंड करता है, लेकिन बोन कैंसर में खान पान का कोई मतलब नहीं
1: है, क्या खा रहे नहीं है, क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे हैं, वो तो अपने कुदरती तौर पर कहा कि कुदरती तौर पर वो हो जाता है। और अगर किसी ने किसी को अगर हो गया खुदा न खास्ते तो फिर बेहतर यह है कि जितना जल्दी हो सके वो डॉक्टर के संपर्क में आए, चिकित्सक से मिले और उसका इलाज कराए, यही उसका बेहतर समाधान है।
0: बेनाइन ट्यूमर में जैसे मोस्ट कॉमनली एक जो खतरनाक बेनाइन ट्यूमर खतरनाक ट्यूमर नहीं होता है
1: जी,
0: तो उसमें मोस्ट कॉमन एक इक्सोस्टोसिस है जिसको ऑस्टियोकोंड्रोमा बोलते हैं
1: जी।
0: वो आपको शरीर के किसी भी भाग में हो जाएगा, किसी भी भाग में हार्ड स्वेलिंग के रूप में रहता है
1: जी।
0: जिसका इलाज हम लोग एक्चुअल

0: ऑपरेशन वगैरह आपने कहा, तो हड्डी वगैरह काट के भी इसका ऑपरेशन कर सकते हैं?
1: जी जी, हड्डी काट करके ही इलाज होता है। कुछ कुछ जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसमें लिम्ब को, पैर को, एक पैर या हाथ को काटना पड़ता है।
0: लेकिन ये देखना होगा कि वो कहीं और दूर तक तो फैला
1: जी, जी, दूर तक चला गया है तो फिर पैर और हाथ जहां पर ट्यूमर है उसके नीचे काटने के बाद उसके लिए कीमोथेरेपी यानी कुछ दवाइयां चलाई जाती है ताकि मरीज ज्यादा देर तक जिंदा रह सके।
0: तो सर, बोन ट्यूमर या बोन कैंसर क्या है, इसके पहचान क्या है, इससे किस तरह से बचा जा सकता है, इसका क्या इलाज है, इस बारे में जो आपने जानकारी हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता। इसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे थे भेंट वार्ता। विषय था बोन ट्यूमर, कारण, लक्षण और बचाव। भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर मृत्युंजय कुमार और इनसे बातें कर रहे थे अली शब्बी।

FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं फाल्गुनी पाठक की आवाज में गाए इस गीत के साथ।

आपने ट्यून किया 102.1 मेगाहर्ट्ज़ और इस वक्त आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम के अगले गीत में अभिजीत भट्टाचार्य को।

आपने ट्यून किया है 102.1 MHz और इस वक्त आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत हिमेश रेशमिया की आवाज में।

सोनू निगम की आवाज में गाए इस गीत के साथ ही गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। उसके बाद 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। तो हमारे इन प्रसारणों की कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज सुबह नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका। ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में भारतीय खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। और अब आइए समाचार विस्तार से कर लेते हैं। सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कल नई दिल्ली में हुई एक बैठक में भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। बैठक के बाद श्री दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से इसके लिए माफी की मांग की है।
3: ये माफीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए। महिलाओं के कंटेंट का वो उतारते नहीं है, भारत सरकार के ये नियम बड़े सख्त हैं और इनकी जो पॉलिसी है कि ये जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं। इन सारी चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करनी चाहिए।
2: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक 28 जुलाई को हुई थी जिसमें तृणमूल कांग्रेस के अलग हुए गुट, नवगठित नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसदों ने भी गठबंधन की बैठक में भाग लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही के प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश में पहले आपराधिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी रखने की अनुमति का तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े लोगों से था। एक रिपोर्ट।
4: अदालत नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर 20 जुलाई को और अन्य जगहों पर प्रदर्शन में विद्यार्थियों पर पुलिस की अत्यधिक सख्त कार्रवाई के आरोप से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। प्रदर्शन में घायल पुलिस अधिकारियों के परिवारों ने भी यह आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। पीठ ने कहा कि वह पुलिस अधिकारियों की विशेष जांच टीम गठित करने या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है ताकि पुलिस की अत्यधिक कड़ी कार्रवाई के आरोपों की जांच की जा सके। अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से मैं चाहत।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं।

0: ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा, अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान ये बैठक हुई। विदेश नीति के मुद्दों पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान का आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर समान दृष्टिकोण है।
2: Deeply appreciate that the government and people of
3: हम इस बात की सराहना करते हैं कि उज्बेकिस्तान की सरकार और वहाँ के लोगों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ रुख अपनाया है। आपकी अपनी चुनौतियाँ और आपके अपने अनुभव हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम दोनों ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाई है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और असैन्य विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। कल नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय सैन्य सेवा दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि सैन्य और असैन्य दोनों सेवाएं राष्ट्र सर्वोपरि के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं।
4: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
5: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह इस बैठक का उद्घाटन करेंगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि भागीदारी करेंगे। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। हैदराबाद में होने वाली ये बैठक जून में वर्चुअली रूप से आयोजित पहले ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक के परिणामों पर आधारित है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीति आग्रह करने के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण बताया। वहीं दूसरे चरण में ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमेरिका के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बातचीत की खबरों का भी खंडन क्या है। श्री बगाई ने कहा कि ईरान और ओमान के बीच हाल ही में हुआ समुद्री समझौता केवल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही तक सीमित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है। एक रिपोर्ट।
6: प्राधिकरण ने बताया कि प्रतिबंधित किए गए उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। प्राधिकरण ने कहा कि कंपनी की वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों पर 100% प्राकृतिक, 100% शुद्ध, 100% शुद्धता की गारंटी, 100% जैविक और 100% नारियल पानी जैसे भ्रामक दावे पाए गए हैं। प्राधिकरण के अनुसार 100% के दावे FSS विज्ञापन और दावे विनियम 2018 का उल्लंघन है। डाबर इंडिया ने आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो नोटिस में उल्लिखित बातों की जांच कर रहा है। ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: और अब मौसम का रुख कर लेते हैं। उड़ीसा में प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों में जलस्तर घटने के कारण बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हीराकुंड बांध के 4 और द्वार बंद कर दिए गए हैं।
7: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है क्योंकि मुख्य नदियां में पानी का स्तर कम हो रहा है। हीराकुद बांध अधिकारियों ने 4 और स्लुइस गेट बंद कर दिए हैं और अब बाढ़ का पानी 13 गेटों से नियंत्रित तरीके से छोड़ा जा रहा है। राहत, बचाव और पुनर्वास का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, खासकर बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जिलों में जहां लोग बहुत मुश्किल हालात में है। राज्य सरकार का कहना है कि प्रभावित परिवारों को भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, पशु चिकित्सा सेवाएं, पॉलिथिन सीट और अन्य मदद दी जा रही है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम हो रहा है, कई जिलों में स्कूल फिर से खुल गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने 4 और 5 अगस्त

0: मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने असम से सटे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन मौसमीय परिस्थितियों का प्रभाव असम के कछार, डिमा हसाव, पश्चिम कार्बी आंगलोंग, विश्वनाथ, लखीमपुर, धेमाजी और तिनसुकिया जिलों पर पड़ सकता है। विभाग ने असम से सटे नागालैंड के अधिकांश जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका प्रभाव सराइदेव, शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट जिलों पर पड़ सकता है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जिलों के लोगों से सभी आवश्यक सावधानियां बरतने और सतर्क रहने की अपील की है। कल बाढ़ से संबंधित दो और मौतें दर्ज होने के साथ ही राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना है। विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरलम, माहे, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन के समय तेज वर्षा होने की उम्मीद है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ तूफान की संभावना व्यक्त की गई है। और अब बात खेलों की कर लेते हैं। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आज से दक्षिण कोरिया में शुरू हो रहे BWF सुपर 300 टूर्नामेंट कोरिया मास्टर्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। ये टूर्नामेंट 9 अगस्त तक चलेगा। सभी की निगाहें 17 वर्षीय तन्वी शर्मा पर होंगी, जिन्होंने ताइपे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतकर इस टूर्नामेंट में प्रवेश किया है। तन्वी भारत की महिला एकल टीम का नेतृत्व करेंगी। पुरुष एकल में किदांबी श्रीकांत अमरीका ओपन में उपविजेता रहने और पूरी तरह फिट होकर वापसी कर रहे हैं। पुरुष एकल टीम में श्रीकांत के साथ किरण जॉर्ज, मिथुन मंजुनाथ, थारुन मन्नपल्ली, रौनक चौहान और सनेथ दयानंद शामिल हैं। वहीं महिला युगल में सोनाली सिंह और रितिका ठाकुर के साथ प्रिया कोंजिंग बाम और श्रुति मिश्रा प्रतिस्पर्धा करेंगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद फरहत। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज आने की खबरें आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, नवीन के गढ़ में पीके का चमत्कार। जनसत्ता लिखता है, जीते प्रशांत, विरोधी अशांत। भाजपा के राष्ट्राध्यक्ष का किला ढहा, उपचुनाव में करारी हार। हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का विधेयक पारित। गृहमंत्री अमित शाह के सदन में नहीं आने पर विपक्ष का हंगामा जारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट के शब्द को प्रकाशित किए हैं। छात्रों के प्रदर्शन की आड़ में अपराधी रियायत के हकदार नहीं। ग्लासगो के बाद नजर अहमदाबाद पर। भारत 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों को सिर्फ एक आयोजन के तौर पर नहीं बल्कि 2036 के अहमदाबाद ओलंपिक दावेदारी के लिए मेगा ड्रेस रिहर्सल के रूप में देख रहा है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, अलविदा ग्लासगो, अहमदाबाद को 2030 के गेम्स की मशाल मिली। ईरान से बातचीत शुरू, डोनाल्ड ट्रंप ने टाला संभावित बड़ा सैन्य हमला, लोकसत्य की सुर्खी है। पत्र ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द भी प्रकाशित किए हैं, कूटनीति की राह, बातचीत से बचेगी हजारों जिंदगियां। हिंदुस्तान ने इस विषय पर अपने संपादकीय पन्ने पर एक लेख भी प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, क्या ईरान पर काम करेगी नई अमरीकी रणनीति। विश्लेषण में कहा गया है कि अमरीका और ईरान के बीच जब तक बुनियादी सवालों के जवाब नहीं तलाशे जाते, युद्ध विराम का कोई फैसला अंतिम नहीं माना जाएगा। नवभारत टाइम्स ने देश में अंगदान को लेकर बढ़ रही जागरूकता का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अंगदान बढ़ा, रिकॉर्ड 20,000 से अधिक ट्रांसप्लांट। डिजिटल पोर्टल शुरू होने के बाद 5,00,000 से ज्यादा लोगों ने अंगदान की शपथ ली।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका। ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। जेपीएससी जेएसएससी विवाद की सीबीआई जांच की मांग तेज, भाजपा ने सरकार को घेरा। 7 अगस्त को विधानसभा घेराव करेंगे आक्रोशित छात्र। राज्य के आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों में स्थापित होंगी 11 डेटा एवं एआई लैब। केंद्र सरकार ने रोजगार और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दी मंजूरी। रामगढ़ के लुकैयाटांड में आज दिग्गज नेता स्वर्गीय शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर भव्य कार्यक्रम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे शामिल। देवघर श्रावणी मेला की पहली सोमवारी पर रिकॉर्ड 3,17,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किया जलार्पण। देवघर और बासुकीनाथ के बीच आज से शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। और रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में आज डुरंड कप का बड़ा मुकाबला, जमशेदपुर एफसी और एससी दिल्ली के बीच होगी भिड़ंत। और अब समाचार विस्तार से। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर झारखंड के छात्रों का आंदोलन तेज हो गया है। छात्र संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर आगामी 7 अगस्त को विधानसभा मार्च करने का ऐलान किया है। आंदोलनकारी छात्र परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी की सीबीआई जांच और सुधारों की मांग कर रहे हैं।
1: जब बीएससी का एग्जाम देते हैं राजा लाल, जब बीएससी का एग्जाम देते हैं बाबू वाटिका, जब बीसीए का एग्जाम देते हैं जय प्रकाश मुंडा, निकाल दो एग्जाम पेटेंट में, एक आंदोलन भी आपको करना होगा। कहीं नहीं, मामला खत्म हो रहा है। जब बीएससी का किसी की भी सरकार हो, या हेमंत की सरकार हो, या भाजपा की सरकार हो, या गठबंधन की सरकार हो, जब बीएससी विवाद में रहता है, अब नहीं सहेगा, क्योंकि भारत का युवा जाग किया है।
0: केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने झारखंड में युवाओं के मुद्दों और परीक्षा गड़बड़ियों को लेकर विपक्ष पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भी कहा है कि युवाओं के आंदोलन को देखते हुए इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए।
2: युवा किसी देश की ताकत होते हैं, और उस ताकत को ही अगर आप तोड़ने का प्रयत्न करें, इससे दुखद ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। वही हालत आज झारखंड की है, क्योंकि जेएसएससी या जेपीएससी एक प्रशासनिक दक्षता के साथ कार्य करने वाली टीम होती है, तो वो टीम यदि इस तरीके से आएगा तो वो राज्य को खोखला भी करेगा और राज्य का नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती।
0: झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले में सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने रांची, धनबाद और हजारीबाग सहित 18 ठिकानों पर छापेमारी कर लैपटॉप, एडमिट कार्ड और कई ओएमआर शीट्स बरामद किए हैं। मुख्य आरोपी अभय तिवारी द्वारा कई बड़ी परीक्षाएं पास कराने के दावों की जांच के लिए एसआईटी ने परीक्षा एजेंसियों से रिकॉर्ड मांगे हैं। 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी ने पूर्व चेयरमैन एलख्यांगते से लगातार कल चौथी बार करीब 7 घंटे पूछताछ की। उन पर बिना सदस्यों के हस्ताक्षर के रिजल्ट जारी करने और ब्लैकलिस्टेड कंपनी को काम सौंपने का आरोप है। हालांकि ख्यांगते ने सभी आरोपों को खारिज किया है। केंद्र सरकार ने इंडिया एआई मिशन के तहत झारखंड के आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों में 11 डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया कि 2 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस और 8 एआई फेलोशिप भी स्वीकृत हुई है। इससे छात्रों को रोजगार और नवाचार के अवसर मिलेंगे। रांची के सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस बरियातू में नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। माई भारत की ओर से हुए इस कार्यक्रम में कई स्कूल कॉलेजों के युवाओं ने हिस्सा लिया। अतिथियों ने युवाओं से नशामुक्त समाज बनाने की अपील की। सभी ने नशामुक्ति की शपथ भी ली। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
3: श्रावणी मेले का पावन त्योहार, हर दिल में गूंजे बम बम की पुकार, हर हर महादेव जय भोलेनाथ।
4: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
5: जोहार, सावन आ चुका है।

0: श्रावणी मेला भी प्रारंभ हुआ। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद, जोहार, जय भोले।
1: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्मिक का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड आंदोलनकारी और पद्मभूषण से सम्मानित स्वर्गीय शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर आज रामगढ़ के लुकैयाटांड में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां दिशोम गुरु शिबू सोरेन की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस अवसर पर एक विकास मेले का आयोजन कर परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक मुकेश लोनायत ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर कई एहतियाती कदम उठाए गए हैं।
3: माननीय मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार के इस कार्यक्रम के मद्देनजर विधि व्यवस्था संधारण और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पुलिस और प्रशासन के द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इस क्रम में रूट लाइन, कार्यक्रम स्थल के चारों ओर पुलिस पदाधिकारियों, मजिस्ट्रेट की जो प्रतिनियुक्ति की गई है, रूट इसके अलावा कुछ अलग अलग प्रकार के वाहनों के लिए पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं।
2: देवघर के राजकीय श्रावणी मेला 2026 की पहली सोमवारी पर आस्था का नया रिकॉर्ड बना है। बाबा वैद्यनाथ धाम में रिकॉर्ड 3,17,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया। उपायुक्त सौरभ भुवानिया ने बताया कि 2,00,000 से ज्यादा भक्तों ने बाह्य और 1,00,000 से अधिक ने आंतरिक अर्घा का उपयोग किया।
4: जो मजिस्ट्रेट्स हैं, सहायता केंद्र है, सब अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। पानी और जो भी मेडिकल एड, कोई भी सुविधा है वो हम लोग दे रहे हैं। लास्ट का जो कुछ 1 किलोमीटर बचता है उसमें पेशेंट्स को लूज नहीं करें और बहुत अच्छे से यहाँ पे मंदिर में आके वो जलार्पण करें। और हम लोगों ने भी यहाँ पे क्लियरली मैसेज दिया हुआ है कि जो बिहेवियर है, सब कोई अपने बेस्ट बिहेवियर पे रहेंगे, कोई पेशेंट्स प्रशासन पुलिस से लूज नहीं करेगा।
2: राज्य सरकार आज से देवघर और बासुकीनाथ के बीच बहुप्रतीक्षित हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर रही है। इस सेवा के शुरू होने से श्रावणी मेले में आने वाले तीर्थयात्री अब हवाई मार्ग से बाबा वैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ के सुलभ दर्शन कर सकेंगे। इससे बुजुर्ग और बीमार श्रद्धालुओं को विशेष सुविधा मिलेगी। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने राज्य के पलामू, चतरा और बोकारो सहित कई जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग की ओर से इन इलाकों में वज्रपात और तेज हवाओं की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आज डुरंट कप के मुकाबले में जमशेदपुर एफसी और एस

इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है, वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: मीडियम वेव 546.45।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मानो मेलोडी।

वाकई ऐसे शख्सियत कई कई बार जन्म ले तो इनके चाहने वाले संगीत प्रेमी धनधान्य हो जाए, पर जाने वाले कहां आते हैं दोबारा। आज यह कार्यक्रम समर्पित हम कर रहे हैं संगीत और अभिनय की दुनिया में एक ऐसा नाम जो सदाबहार और हमेशा के लिए अमर हो गया, वो नाम है किशोर कुमार का। दिग्गज सिंगर किशोरदा की आज 97वीं बर्थ एनिवर्सरी है और उन्होंने कई सुपरहिट गाने दिए फिल्म इंडस्ट्री को, लाखों करोड़ों लोगों को दीवाना बनाया, वहीं उन्हें एक भी नेशनल अवार्ड नहीं मिल पाया। हालांकि एक बार उन्हें पुरस्कार मिलने ही वाला था कि आखिरी वक्त पर सिचुएशन बदल गया और उन्हें नेशनल अवार्ड से वंचित रहना पड़ा। दोस्तों, हम आपको बता दें, किशोरदा का जन्म 4 अगस्त सन 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हुआ था। उनका असली नाम था आभास कुमार गांगुली और उनके पिताजी कुंजालाल गांगुली एक प्रसिद्ध वकील और माताजी गौरी देवी गृहिणी थीं। 9 भाई बहनों में सबसे छोटे किशोर बचपन से ही संगीत और हास्य रस दोनों में रुचि रखा करते थे। उन्हें गाने का बहुत शौक था। सिनेमा में किशोर कुमार की पहचान, वो फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखते समय अपनी पहचान बदलकर किशोर कुमार बन गए। हिंदी सिनेमा में उनकी पहचान एक अभिनेता और गायक दोनों के रूप में हुई। उनकी कॉमिक टाइमिंग, स्वभाव और स्वर में अनूठेपन ने सबको चौंका दिया। धीरे धीरे वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और लेखक भी बन गए।

डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और लेखक के तौर पर अपनी काबिलियत दिखा चुके किशोरदा फिल्म दोस्ती, हकीकत, दूर गगन की छांव में जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया और इस फिल्म में सिंगिंग और अभिनय दोनों के साथ साथ निर्देशन के क्षेत्र में भी उन्होंने कमाल दिखाया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई, दर्शकों का खूब प्यार मिला और इसी तरह से उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में गीत गाए, कई सारे फिल्मों का निर्देशन किया, लेखन का कार्य किया और मल्टी टैलेंट के तौर पर वे हम सभी लोगों के दिलों पर राज उन्होंने किया। दिल का दौरा आने के बाद उनकी सेहत में तब सुधार नहीं हुआ, इसके बाद बाकी उम्र में वे दोबारा पूरी तरह सक्रिय नहीं हो पाए और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उनकी बढ़ती चली गई, जिससे उनकी शारीरिक स्थिति बिगड़ती चली गई और 13 अक्टूबर 1987 को 58 साल की उम्र में किशोरदा ने दुनिया को अलविदा कहा और छोड़ गए अनमोल गीतों के तोहफे को संगीत प्रेमियों के लिए। उनका निधन एक लंबी बीमारी और दिल की समस्याओं की वजह से हुआ। वे शारीरिक रूप से तो जा चुके हैं पर संगीत, हास्य और अनूठी आवाज की वजह से वो अपने चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा है।

0: आशा भोसले और किशोर कुमार के गुलसनों में फिल्म यादों की बारात के इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी यही समाप्त होता है। आज का यह कार्यक्रम हम समर्पित कर रहे थे पार्श्व गायक किशोर दा पर। आपने सुना इस प्रोग्राम में प्रेम पुजारी, नया जमाना और यादों की बारात फिल्मों के गाने, और अब इसी के साथ ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। अब आइए हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को। तो कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: सब कुशल मंगल, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें सोनू कक्कर और वंदना सक्सेना की थी, समीर अंजान के बोल थे, और इस गाने के पहले जो गाना आपने सुना था उसे हमने लिया था फिल्म किसी का भाई किसी के जान से। कमल खान और पलक मुछाल की आवाजों में वो गीत आपने सुना था, शब्बीर अहमद के बोल थे। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में अब वक्त है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, तो लिया जाए एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपको सुनवाएंगे गाने।

ब्रेक के बाद फिर स्वागत है। अब आपको चित्रलोक कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं अरमान खान की आवाज में हक फिल्म का ये गाना।

अरमान खान और साथियों की आवाजों में हक फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, जिसे गाया कौशल किशोर ने और विशाल मिश्रा का संगीत था। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आज पार्श्व गायक किशोर कुमार की जन्मतिथि है। महान गायक, अभिनेता, संगीतकार, निर्माता, निर्देशक किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ था। किशोर कुमार ने हिंदी के साथ साथ बंगाली, मराठी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी और कई भाषाओं में गीत गाए। अपनी अनूठी गायकी, चंचल अंदाज और बहुमुखी प्रतिभा से करोड़ों

0: रेखा भारद्वाज की आवाज में गुलजार का लिखा हुआ गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था डेढ़ इश्किया और इस गीत को संगीत से संवारा था विशाल भारद्वाज ने।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की।

पटाखा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे रेखा भारद्वाज की आवाज थी। गुलजार के बोल थे विशाल भारद्वाज का संगीत था। चित्रलोक कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम में एक और बहुत छोटा सा ब्रेक।

ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर हैं। साथियों, आज भारतीय सिनेमा के ऐसे बहुमुखी रचनाकार का जन्मदिन है जिन्होंने निर्देशन, पटकथा लेखन, संगीत निर्देशन और फिल्म निर्माण हर क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाई। विशाल भारद्वाज का जन्म 4 अगस्त उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के शिकारपुर ग्राम में हुआ था। विशाल भारद्वाज ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत संगीतकार के रूप में की थी, लेकिन एक निर्देशक के रूप में एक अलग पहचान बनाई। मकबूल, ओमकारा, कमीने, हैदर और पटाखा जैसी फिल्मों ने उन्हें देश विदेश में विशेष सम्मान दिलाया। उन्हें गॉडमदर और इश्किया के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हम उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर उनके स्वस्थ, सफल और सृजनशील जीवन की मंगल कामना करते हैं। विविध भारती परिवार की ओर से फिल्मकार, संगीतकार विशाल भारद्वाज को जन्मदिन की अनेकों नेक शुभकामनाएं देते हैं। एक और गाना आपको सुनवा रहे हैं रेखा भारद्वाज और साथियों की आवाजें, ओमकारा फिल्म का ये गीत सुनिए। गुलजार के बोल हैं, विशाल भारद्वाज का संगीत है।

विशाल भारद्वाज के संगीत निर्देशन में रेखा भारद्वाज और साथियों का गाया ये गीत अभी आपने सुना। गुलजार ने इस गीत को लिखा था, ओंकारा फिल्म का गीत आपने अभी सुना। और अब लीजिए सुनिए शशि डीजे खुशी की आवाज में लक्ष्मी फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं गगन आहूजा और संगीतकार हैं शशि डीजे खुशी।

इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। आपका हर दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप स्वस्थ सकुशल और समृद्ध रहें। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

ये है विविध भारती। आज की फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है ललित।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है भारतीय सिनेमा के बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, गायक और संगीतकार किशोर कुमार को।

सन 1929 के अगस्त महीने की चौथी तारीख को जन्मे किशोरदा ने तारीख यानी इतिहास में अपना वो स्थान बनाया कि उस ऊंचाई को किसी और कलाकार के लिए छू पाना लगभग नामुमकिन सा है। उनकी टाइमिंग, नाटकीयता, भूमिका की समझ और अदायगी, सब कुछ अद्भुत। सच तो ये है कि किशोरदा अपने आप में अभिनय और गायन की एक संपूर्ण संस्था।

मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में जन्मे किशोर कुमार का वास्तविक नाम था आभास कुमार गांगुली। उन दिनों आभास कुमार गांगुली के बड़े भाई अशोक कुमार हिंदी सिनेमा का एक स्थापित नाम बन चुके थे। परिवार के सदस्य अब नियमित रूप से मुंबई आने जाने लगे थे। मुंबई में किशोरदा की नई पारी की शुरुआत हुई किशोर कुमार के नाम से। 1946 में आई फिल्म शिकारी में उन्होंने पहली बार अभिनय किया। इसके दो बरस बाद सन 1948 में आई फिल्म जिद्दी में उन्हें पार्श्व गायन का मौका मिला।

सन 1951 में किशोर दा ने बॉम्बे टॉकीज की फिल्म आंदोलन में नायक की भूमिका निभाई। इसे निर्देशित किया था फणी मजूमदार ने। इसके बाद सन 1957 में किशोर दा ने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म मुसाफिर में अभिनय किया। यह फिल्म ऋषि दा की बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी। लगभग उसी दौर में फिल्म नौकरी में किशोर दा ने एक गीत गाया जिसे पहले हेमंत कुमार गाने वाले थे, लेकिन बाद में सलिल दा ने फिल्म नौकरी का वो गाना किशोर दा से गवाया।

ये अभिनय यात्रा जारी थी। अभिनय के साथ साथ फिल्मों के लिए गायन भी जारी था। अपने आप पर फिल्माए गए गीत तो उन्होंने गाए ही, वहीं देवानंद जैसे दिग्गज कलाकारों के लिए भी गीत गाए। उस दौर में संगीतकार सचिन देव बर्मन ने उनसे कई फिल्मों में गीत गवाए। उनमें से कुछ फिल्मों के नाम हैं मुनीम जी, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44, फंटूश, 9 2 11 और पेइंग गेस्ट।

किशोरदा की प्रतिभा अनूठी थी। उनकी फिल्में आज हिंदी सिनेमा की अमूल्य निधि हैं। अपने गीतों में भी स्वरों से वो अभिनय किया करते थे।

0: तो अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार।
1: हास्य व्यंग पर किशोरदा की गहरी पकड़ थी, लेकिन गंभीर भूमिकाओं को भी किशोरदा ने बखूबी निभाया। सुनिए उन्हीं पर फिल्माया गया ये

किशोर दा खुद एक मंजे हुए शानदार अभिनेता थे, इसलिए जिन अभिनेताओं के लिए उन्होंने पार्श्व गायन किया उन अभिनेताओं के अंदाज को अपनी गायकी में बड़े असरदार तरीके से उतारा और दिलकश अंदाज में पेश किया। फिर चाहे वो धर्मेंद्र हो, राजेश खन्ना हो या फिर अमिताभ बच्चन।

अपने करियर के शुरुआती दौर में किशोर दा ने गायन को लंबे समय तक गंभीरता से नहीं लिया। सन 1969 में रिलीज हुई फिल्म आराधना। फिल्म आराधना से भारतीय सिनेमा के आकाश में उदित हुए पहले सुपरस्टार के रूप में

फिल्म आराधना, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार सचिन देव बर्मन और गायक किशोर कुमार के लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुई। इस फिल्म से किशोरदा के करियर में एक रचनात्मक बदलाव की भी शुरुआत हुई और बाद के दशकों में फिल्म संगीत की दुनिया में किशोरदा ने गायन की बुलंदियों को छुआ। किशोरदा ने कई दिलचस्प फिल्मों का भी निर्माण किया, इनमें से कुछ के नाम है दूर गगन की छाव में, दूर कराही, दूर वादियों में कहीं, झुमरू, जिंदगी, चलती का नाम गाड़ी, शाबाश डैडी और बढ़ती का नाम दाढ़ी। आज किशोरदा की बनाई फिल्में अभिनय के छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह हैं। किशोरदा की फिल्मों में जहां हास्य का अपना रंग था, वहीं उतनी ही गहरी संवेदना भी। उनकी फिल्म का ये गीत जितना अर्थपूर्ण है, उतना ही मर्मस्पर्शी भी।

0: एक कलाकार के रूप में किशोरदा बेमिसाल थे, हर फन मौला थे। उनके कद्रदानों ने उन्हें नट सम्राट भी कहा। उनकी प्रतिभा के रचनात्मक आयाम एक से कहीं ज्यादा थे। उनके भीतर हास्य व्यंग्य का एक चितेरा, एक दार्शनिक, एक नटखट बच्चा, एक बेहद संवेदनशील इंसान और एक शानदार कलाकार समाहित था, जिसने अपने अभिनय और गीतों से हमें जाने कितनी बार हंसाया और गुदगुदाया।
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ संवरिया, ओए आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ संवरिया, ओए ओए ओ तेरी तिरछी नजरिया
2: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजर।

0: वो गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।
2: 13 अक्टूबर सन 1987 को किशोर दा ने सांसों की सरगम पर अपना अंतिम गीत छेड़ा और फिर चले गए महायात्रा पर।

किशोर दा को अनेक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय फिल्मी गैर फिल्मी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। किशोर दा भारतीय संगीत के अनमोल रत्न थे और रत्न रहेंगे। एक अभिनेता, गायक, संगीतकार और फिल्मकार के रूप में किशोर दा ने भारतीय सिनेमा में जो अमूल्य योगदान दिया है, उसके लिए फिल्म जगत, फिल्मों के दर्शक और उनके गीतों के श्रोता सदैव उनके ऋणी रहेंगे।

0: कोई लौटा दे।
1: श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म जगत के महान कलाकार किशोर कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर कमल शर्मा का, प्रस्तुति रमेश गोखले की।
2: आज के फनकार।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बजने को है। लीजिए प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।
1: टेन नाइन एट सेवन सिक्स

हेलो हजारीबाग। प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेल

लो हजारीबाग और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन की प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों के संग है लो हजारीबाग।

कार्यक्रम हेलो हजारीबाग सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। स्वीकार करें श्वेता का सप्रेम नमस्कार। आसानी से मिलने वाली हर वो चीज हमेशा तक नहीं रहती, और जो हमेशा तक रहती है वो आसानी से नहीं मिलती। इस महान विचार के साथ हम करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत, और आगे आइए सुनते हैं इस गीत को।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: जरूरी संदेशों और गीत के बाद आपका एक बार फिर से कार्यक्रम हेलो हजारीबाग में स्वागत है। दोस्तों, मेहनत का फल मीठा होता है, इस बात को हम सभी जानते हैं, लेकिन सच यह भी है कि जीवन से जुड़े किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए इसका कोई विकल्प नहीं होता। इंसान को अपने सपनों को अपने पसीने यानी कड़ी मेहनत से ही सींचना पड़ता है। यदि आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में मन से मेहनत करने को तैयार रहते हैं तो आप भविष्य में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इससे जरा भी कतराते हैं तो आपकी सफलता पर संशय है। जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता को पाने का मूल आधार कठिन परिश्रम, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास होता है। मेहनत एक ऐसा शब्द है जिस पर यदि व्यक्ति अमल करे तो उसके देखे हुए हर ख्वाब सच होते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बगैर इसके अपने जीवन में कुछ भी पाया हो। मुश्किल का मतलब असंभव नहीं होता है, इसका अर्थ है यह कि आपको इसे आसान बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कड़ी मेहनत वो कीमत है जो हमें मनचाही सफलता को पाने के लिए चुकानी पड़ती है। यदि आप इस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हैं तो आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए पूर्ण समर्पण के साथ मेहनत की चाबी और चाबी को आप घुमाते रहें, सफलता हर दरवाजे पर खुद ब खुद खुलते सफलता के हर दरवाजे खुद ब खुद आपके लिए खुलते चले जाएंगे। और अब कार्यक्रम में आगे सुनवाते हैं आपको एक और गीत।

0: दादी कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले,
1: तेरी समझदारी का फल।
3: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: आपने ट्यून किया है 102.1 मेगाहर्ट्ज़ और इस वक्त आप सुन रहे हैं दैनिक कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। श्रोताओं, यह सवाल हर किसी के मन में आता है कि हम स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ कैसे रखें, फिर चाहे वह युवा हो, महिला हो या व्यस्त कामकाजी व्यक्ति। फिटनेस का मतलब सिर्फ पतला दिखना नहीं होता है, फिटनेस का मतलब है ऊर्जावान रहना, मन शांत रहना और हर दिन बेहतर महसूस करना। आप फिटनेस पर ध्यान देते हैं तो आपका वजन और मोटापा नियंत्रण में रहता है, हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती हैं, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, ऊर्जा और सक्रियता बनी रहती है, पाचन तंत्र में सुधार होता है। और दोस्तों, खुद को फिट रखने के लिए किसी महंगे उपकरण या जिम जाने की जरूरत नहीं होती, जरूरत है तो नियमित योगाभ्यास की। खुली जगह, खुले आसमान के नीचे, ताजी हवा में आप योगा मैट पर जब नियमित रूप से कम आधे घंटे के लिए भी योगा एक्सरसाइज प्रतिदिन करते हैं तो आपके फिटनेस के लिए काफी होता है। योग करने की शुरुआत 15 से 20 मिनट से कीजिए शुरुआत में, और फिर इसे धीरे धीरे समय को बढ़ाते चले जाइए, आधे घंटे और फिर एक घंटे तक आप योगा करने का नियमित अपना रूटीन बनाइए। इससे अनेकों लाभ आप महसूस कर पाएंगे। शरीर में संपूर्ण फिटनेस के लिए सबसे अच्छा योग माना गया है सूर्य नमस्कार को, जो 12 अलग अलग पोजेस के साथ किया जाता है। यह एक कंप्लीट पैकेज कह सकते हैं शारीरिक फिटनेस के लिए। प्रतिदिन इसके 5 से 10 चक्र करने से आपके पूरे शरीर को एक साथ सक्रियता महसूस होती है। यह हृदय गति बढ़ाता है, मांसपेशियों को खींचता है और शरीर को गर्म करता है, रीढ़ को लचीला बनाता है, पाचन शक्ति मजबूत करता है, घुटनों को मजबूत बनाता है, कुल्हों, कमर और जांघों की मांसपेशियों को सक्रिय करता है, पेट की सूजन और गैस की समस्या में मदद करता है। योग सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए बहुत जरूरी है। महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है योग, बच्चों में एकाग्रता को विकसित करता है, मानसिक स्वास्थ्य बढ़ाता है और युवाओं में शारीरिक और दिमागी सक्रियता बढ़ाता है और बुजुर्ग के लिए उनके जोड़ों के दर्द में राहत पहुंचाता है योग और उन्हें जोड़ों को लचीलापन बनाए रखता है। तो इस तरह से योग के महत्व को अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा है, जिसे हम अपना करके अपने जीवन में स्वस्थ रह सकते हैं, मानसिक रूप से खुश रह सकते हैं।

क्योंकि आप जब स्वस्थ रहेंगे तभी आपकी खुशियां भी जो है आपके पास रहेंगी। अस्वस्थ व्यक्ति अक्सर आप देखते हैं उन्हें उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं, चिड़चिड़े से रहते हैं। तो आप इस समस्या से निपटने के लिए हमेशा योग जरूर करें और योग के साथ साथ ही हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर बेहद जरूरी होता है संतुलित आहार। दोस्तों, हमारा स्वास्थ्य या हमारी फिटनेस सिर्फ योग एक्सरसाइज पर ही डिपेंड नहीं करती, हमारे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार को भी अपनाना बहुत जरूरी है। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका रोजाना का खान पान बिल्कुल स्वस्थ तरीके से होता होगा। अनेक लोग घर से बाहर ही भोजन करना पसंद करते हैं। अधिकांश लोग फास्ट फूड और स्ट्रीट फूड्स का सेवन अधिक करते हैं। आप सभी जानते हैं कि घर से बाहर बना किसी भी तरह का भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए उतना फायदेमंद नहीं रहता, हमेशा हमें नुकसान ही पहुंचाता है। बाहर के खाने हमें अक्सर बीमार करते हैं, इसीलिए डॉक्टर और हमारे घर के माता पिता से लेकर बड़े बुजुर्ग बाहर के खानों को खाने के लिए मना करते हैं। डॉक्टर बीमार व्यक्ति को डाइट प्लान बदलने की सलाह देते हैं। आज के समय में संतुलित आहार अपनाने की बेहद आवश्यकता है। हर इंसान के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो संतुलित आहार और उनके लिए जो जरूरी है वे पोषक तत्व किन किन खाद्य पदार्थों में मिल सकते हैं उन्हें वो जाने और खाएं। इसके लिए आपको दिन के तीन मुख्य भोजन जैसे नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना 300 से 350 कैलोरी का शामिल करना जरूरी है अपने डाइट में। इसी के साथ मैदा, चीनी बिल्कुल भी उपयोग ना करें। सफेद चावल का भी उपयोग थोड़ा कम करना चाहिए। अपने भोजन में मोटे अनाजों को ज्यादा से ज्यादा शामिल करें, जिससे आपके शरीर को हर एक तरह के प्रोटीन, फाइबर, पोषक तत्व और न्यूट्रिशंस मिल जाएंगे। पानी जरूरत के हिसाब से जरूर पिएं। डिब्बा बंद या प्रिजर्वेटिव डाले हुए जो खाने मिलते हैं बाजारों में, उन्हें खाने से आप बचें। रसोई घर में मिलने वाले सभी तरह के जो मसाले होते हैं वे भी किसी मेडिसिन से कम नहीं होते। आयुर्वेदिक मेडिसिन आप उन्हें कह सकते हैं, बस आप उन्हें मेडिसिन की तरह ही उपयोग करें तो आपके शरीर को, आपके स्वास्थ्य को वो काफी लाभ पहुंचाते हैं। जरूरत से ज्यादा तेल मसालों का सेवन भी आपको पेट संबंधी कई बीमारियों से ग्रसित कर सकते हैं। हरे पत्तेदार साग सब्जी, फल आदि का सेवन आप जरूर करें। दालें, पनीर, अंडे जैसी चीजें प्रोटीन के अच्छे सोर्स होते हैं, इनका उपयोग आप जरूर करें। इनका इस्तेमाल भी आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो सकता है। और श्रोताओं, बरसात का मौसम चल रहा है तो ऐसे में संक्रामक बीमारियां जो होती हैं वो लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो हरे साग पत्तेदार सब्जियां खाने से बचें इस बरसात के मौसम में, और पानी हमेशा उबाल कर पिएं और सुरक्षित पानी पिएं, क्योंकि कई बार पानी से भी हमें संक्रामक बीमारियां लग जाती हैं, पेट संबंधी बीमारियां और डायरिया होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों का ख्याल रखें, बाहर का खाना खाने से बचें और बासी खाना भी घर पे ज़्यादा रख कर ना खाएं, फ्रिज वाले खाने भी आप ना खाएं। गर्मा गर्म खाने जितना ज़्यादा हो सके आप खाने की कोशिश करें, और जो पानी आसपास गड्ढों में जमे होते हैं या डब्बों में जमे होते हैं उन्हें आप हमेशा निकालने की कोशिश करें, क्योंकि उन्हीं जमे हुए पानी में, बरसात के जमे हुए पानी में डेंगू, मलेरिया, फलेरिया के मच्छर जो हैं वो पनपते हैं और फिर आपको बीमार कर सकते हैं। तो इन सब बातों का आप जरूर ध्यान रखें, साथ ही पर्याप्त नींद जरूर लें, क्योंकि पर्याप्त नींद जो है वो भी हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है। धूप में आप जरूर रहें, इससे आपको जो है विटामिन D3 और डोपामाइन जैसे हार्मोन भी मिलते हैं, जिससे जो आपके मानसिक खुशहाली के लिए जरूरी है, और विटामिन D3 जो है वो आपके हड्डियों की मजबूती के लिए बेहद आवश्यक है। तो इन सब चीज़ों का आप ख्याल रखें, ढक कर खाने को रखें, खुले खाने को आप खाने से परहेज करें।
तो इन सब छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप इस बरसात के मौसम में स्वस्थ रह सकते हैं। इसके साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे कि बरसात के मौसम में खेत खलिहानों में जो काम होते हैं वो काफ़ी

सक्रिय हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो कई लोग खेत खलिहानों में भी काम करते हैं जाकर के मिट्टी और पानी में, तो उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि बरसात के पानी और मिट्टी को मिट्टी में घुसने की वजह से उनके हाथ में, जैसे अभी धान रोपने का समय है तो ऐसे में उनके हाथों और पैरों की उंगलियों में फंगल लग जाता है, जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में पानी लगना कहते हैं। तो वो फंगल जब भी आपके आपको लग जाए तो डॉक्टर से आप जरूर दिखाएं, क्योंकि वो उसमें भी जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो आपके खाने के साथ आपके पेट में जा सकते हैं और आपको और भी बीमार कर सकते हैं। तो उन्हें आप जरूर उनका ध्यान रखें। आप कोशिश करें कि रोपा रोपने के लिए जो धान रोपते हैं आप उसमें जो शूज आते हैं प्लास्टिक के, उन्हें पहन करके, जूते पहन करके आप खेत के अंदर उतरें ताकि आपके पैरों में पानी ना लग पाए। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखें। और अगर आप बीमार पड़ भी जाते हैं तो आप घर में प्राथमिक उपचार करने से ज्यादा बेहतर है कि आप संबंधित डॉक्टर से जरूर दिखाएं ताकि आपका समय पर इलाज हो सके और आपकी खुशियां, आपका स्वास्थ्य बेहतर हो सके आपकी। और साथ ही ये भी हम कहना चाहेंगे श्रोताओं कि बरसात का मौसम चल रहा है तो वज्रपात की घटनाएं भी देखी जाती हैं, तो आप ऐसे पेड़ के नीचे बारिश के समय में ना रहें और खुले जगहों में भी ना रहें। कोशिश करें कि घर के अंदर रहें या फिर वैसी जगहों में ना जाएं जहां बिजली कड़क रही हो, खुले जगह में जो है वो वज्रपात होने की संभावना ज्यादा होती है। इसके साथ ही बारिश का मौसम है तो कई जगह सड़कें टूटी होती हैं और टूटी सड़कों में पानी भरा होता है, तो आप संभल करके अपने वाहनों को चलाएं ताकि आप दुर्घटनाओं से बचे रह सकें। और कोशिश करें कि गाड़ी धीरे धीरे चलाएं, क्योंकि ऐसे मौसम में, बरसात के मौसम में, बारिश की वजह से रोड जो है वो स्लिपरी हो जाते हैं, फिसलन वाले हो जाते हैं। तो इसमें भी अगर आप बहुत स्पीड वाहन चलाते हैं तो इससे आपको दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आइए मिलकर सुनते हैं

आपने ट्यून किया है 102.1 मेगाहर्ट्ज और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। अब आइए जानते हैं आज का इतिहास। इतिहास के पन्नों में दर्ज वो घटनाएं जो महत्वपूर्ण हैं और जिनसे सीख लेकर के आगे वैसी गलतियां दोहराई ना जा सके, इसके लिए ये महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास के पन्नों में दर्ज होती हैं। तो चलिए हम जानते हैं इतिहास के पन्नों में कौन कौन सी घटनाएं हैं। आज की तारीख को सन 1914 ईस्वी में इंग्लैंड द्वारा जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई थी। वर्ष 1999 में आज की तारीख को चीन ने अमेरिकी सेना के विमानों के नियमित उड़ानों को हांगकांग में उतरने की अनुमति देने से इनकार किया था। वर्ष 2001 में आज की तारीख को रूस और उत्तरी कोरिया में सामरिक समझौता किया गया। वर्ष 2004 में आज की तारीख को नासा ने एलिटेक्स सुपर कंप्यूटर केसी को कल्पना चावला नाम दिया। 2007 में आज की तारीख को मंगल ग्रह की खोज के लिए फिनिक्स मार्स लैंडर नामक एक अमेरिकी अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया गया था। वहीं 2008 में आज की तारीख को सरकार ने भारतीय जहाज रानी निगम को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया। और अब आइए जानते हैं किन किन महान हस्तियों ने आज की तारीख को जन्म लिया। 1961 में आज की तारीख को बराक ओबामा, जो अमेरिका के प्रथम अश्वेत और 44वें राष्ट्रपति हुए, इनका जन्म हुआ। 1931 ईस्वी में आज की तारीख को नरेन तमहाने, जो भारतीय क्रिकेटर रहे, इनका भी जन्म हुआ। 1929 को किशोर कुमार, जो भारतीय सिनेमा के सुप्रसिद्ध गायक, अभिनेता, लेखक, निर्देशक और कई सारे प्रसिद्ध गीतों के ये गायक रहे और बहुत सारे इनके टैलेंट जो हैं इतने ज़्यादा थे कि आज भी इनके टक्कर में कोई आ नहीं पाता। और इनकी जो ऊंचाइयां हैं, इनके प्रतिभा की ऊंचाइयां, उन्हें छू पाना आसान नहीं। और अब बताएं कि 1924 ईस्वी में आज ही की तारीख को इंदु प्रकाश पांडे, जो साहित्यकार रहे, इनका भी जन्म हुआ। अब आइए जानते हैं 1845 ईस्वी में फिरोज मेहता, जो भारतीय राजनेता और बंबई नगरपालिका के संविधान के निर्माता रहे, इनका भी जन्म हुआ। 1730 ईस्वी में सदाशिवराव भाऊ, जो भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध एक मराठा वीर थे, इनका भी जन्म हुआ। और

1522 ईस्वी में राणा उदय सिंह मेवाड़ के शासक और महाराणा प्रताप के पिता हुए, इनका भी जन्म हुआ था। और अब आइए जानते हैं आज ही की तारीख को किन किन महान हस्तियों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। 1950 ईस्वी में आज ही की तारीख को 3 बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री रहे एन रंगास्वामी का निधन हो गया था। 1937 ईस्वी में आज ही की तारीख को भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्व के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान काशी प्रसाद जायसवाल का भी निधन हो गया था। आज ही की तारीख को सन 2006 ईस्वी में नंदिनी सतपति उड़ीसा की महिला मुख्यमंत्री रहीं और लेखिका भी थीं, इनका भी निधन हो गया था। और 2020 ईस्वी में आज ही की तारीख को इब्राहिम अलकाजी, जो भारतीय रंगमंच के प्रसिद्ध निर्देशक और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पूर्व निदेशक थे, इनका भी निधन हो गया था। तो दोस्तों, आज है महान पार्श्व गायक किशोरदा की बर्थ एनिवर्सरी, 97वीं बर्थ एनिवर्सरी से संगीत प्रेमी सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके इस जन्म दिवस पर। तो आइए हम भी छोटी सी सेलिब्रेशन के साथ सुनते हैं उनके गाए इस खूबसूरत से गीत को और करते हैं उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अपने रेडियो परिवार की ओर से।

गीत के बाद अब आइए जानते हैं आज के विशेष दिवस के बारे में। तो दोस्तों, आज है विश्व स्तनपान सप्ताह कह सकते हैं, क्योंकि 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक मनाया जाता है विश्व स्तनपान दिवस। श्रोताओं, स्तनपान माँ और नवजात शिशुओं के बीच का एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें दोनों की अपनी पूर्णता महसूस होती है। स्तनपान केवल शिशु के लिए संपूर्ण आहार का स्रोत ही नहीं, बल्कि माँ के बेहतर स्वास्थ्य को का भी सशक्त आधार है। यह प्रसवोत्तर रिकवरी में सहायक होने के साथ साथ स्वास्थ्य वजन बनाए रखने और प्रसवोत्तर अवसाद और स्तन एवं अंडाशय कैंसर के जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व स्तनपान सप्ताह मनाने की शुरुआत वर्ष 1991 में की गई, जो 1 से 7 अगस्त तक प्रतिवर्ष मनाई जाती है। तो स्तनपान दिवस के इस खास अवसर पर हम उन सभी माओं को नमन करते हैं जो अपनी बच्चों के लिए इतने महत्वपूर्ण आहार उन्हें धरती पर आने के साथ ही देती हैं। इसके साथ ही आइए अब जानते हैं आज के मौसम का हाल। दोस्तों, दिन भर आसमान साफ रहने का अनुमान है। तापमान में उतार चढ़ाव दर्ज होती रहेगी और अधिकतम तापमान की बात करें तो आज अधिकतम तापमान हजारीबाग का रहने वाला है 29.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहेगा 24.0 डिग्री सेल्सियस। वहीं कल के अधिकतम तापमान की बात करें तो 30.0 डिग्री अधिकतम सेल्सियस इसका रहने वाला है और न्यूनतम रहेगा 23.0 डिग्री सेल्सियस। वहीं कोडरमा के तापमान की बात करें तो आज कोडरमा का तापमान रहने वाला है 27.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहेगा 24.0 डिग्री सेल्सियस और कल कोडरमा का तापमान अधिकतम रहेगा 30.0 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम रहेगा 23.0 डिग्री सेल्सियस। वहीं आज सूर्यास्त का समय आपको बताएं तो 6:37 पर सूर्यास्त होना है और कल सूर्योदय का समय होगा 5:24 पर। और आर्द्रता की बात करें तो आज अधिकतम आर्द्रता रहने वाली है 80% और न्यूनतम आर्द्रता भी 80% ही रहेगी। वहीं स्थानीय गतिविधियों की बात करें तो योग शिविर का आयोजन किया गया 6:00 झील कैंपस में और सहायक अध्यापकों की बैठक होनी है। पूर्वाहन 11:00 स्थान होगा हिंदू स्कूल मैदान। दुर्गा पूजा समिति की बैठक की जानी है, स्थान होगा बुढ़वा महादेव मंदिर परिसर और समय होगा 5:30 से। तो आइए इन जरूरी जानकारियों के बाद बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

खुश हवा मत वाली फिजा, संसार सुहाना लगता है। मत होश हवा मत वाली फिजा, संसार सुहाना लगता है। कर लेना किसी से प्यार कहीं दिल अपना दीवाना लगता है। मत होश हवा मत वाली।

0: दिल अपना दीवाना।
1: और अब कार्यक्रम में चलते चलते अखबारों की सुर्खियों से आपको करवा रहे हैं रूबरू। श्रोताओं, सावन का पावन महीना चल रहा है और सावन का जो पूरा पावक महीना होता है, पावन महीना होता है, ये पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। श्रावण मास सिखाता है कि विष्णु का पालन, शिव का कल्याण, कृष्ण की धर्म स्थापना, ऋषियों का ज्ञान, नागों के माध्यम से प्रकृति संरक्षण और रक्षाबंधन का सामाजिक उत्तरदायित्व, ये सभी भारतीय संस्कृति के अभिन्न आयाम हैं। प्रत्येक रूप शिव का ही रूप है, समस्त संसार शिवमय है और इसके कण कण में शिव व्याप्त है। तो आप सबों को पावन महीने सावन का की ढेरों शुभकामनाएं। और बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। आपको बता रहे हैं दिशोम गुरु श्रीभु सोरेन, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो के संस्थापक रहे, इनकी आज प्रथम पुण्यतिथि है और पूरा झारखंड इन्हें दे रहा है इनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। वहीं अगली खबर से आपको रूबरू करवाएं तो रंगा, ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार तेज होने से तापमान हो रहा है असंतुलित और समझौता वार्ता पर ट्रंप का दावा ईरान ने खारिज किया, हमले की चेतावनी से पीछे हटने का सिलसिला जारी। मीडिया रिपोर्ट पिछले पांच महीनों में यह कई बार देखने को मिला है कि ट्रंप पहले ईरान पर बड़े सैन्य हमले की चेतावनी देते हैं और बाद में कूटनीतिक संपर्कों का हवाला देकर फैसला टाल देते हैं। ईरान ने भी जुलाई की शुरुआत में संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौता ज्ञापन के विफल होने के बाद से सार्वजनिक रूप से अमेरिका के साथ किसी भी वार्ता से इनकार किया है। वहीं होर्मुज बड़ा विवाद बना है। दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा विवाद का कारण होर्मुज को लेकर बना हुआ है। वाशिंगटन का कहना है कि जून के समझौता ज्ञापन के तहत ईरान को इस रणनीति जल मार्ग को पूरी तरह खोलना था, जबकि तेहरान का दावा है कि समझौते में पोतों की आवाजाही पर उसका अधिकार बरकरार रखा गया है। वहीं रूस ने यूक्रेन पर ग्लाइड बम बरसाए हैं और

हजारीबाग ने हजारीबाग के कराटेकारों ने 11 स्वर्ण सहित 71 मेडल अपने नाम किए हैं और एक बड़ी जीत है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अंतर्राष्ट्रीय कराटे में जिले के कराटेकारों ने लहराया परचम, भारत के अलावा 8 देशों के खिलाड़ियों ने लिया था हिस्सा। वहीं रंगारंग कार्यक्रम के बाद भारत को मिली 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की बैटन। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाया गया और राष्ट्रमंडल का एक पदक राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों के लिए बैटन दिया गया भारत को। और जूनियर राष्ट्रीय हॉकी दिल्ली को हराकर झारखंड क्वाफा में पहुंचा। कोरिया ओपन में तन्वी फिर छा जाने को तैयार और चोटिल बुमराह की जगह आके भारतीय टीम में टेस्ट खेलने वाले बनेंगे कश्मीर के पहले खिलाड़ी। हर्षिता टूर डी फ्रांस फेम्स से जुड़ने वाली बनी पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। और जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में कर्नाटक झारखंड और मध्य प्रदेश जीते। नेशनल बैंक ओपन टेनिस में कामिला रखीमोवा ने वीनस को हराया। वहीं नीरज से भी बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करना गलती थी, ऐसा रोहित ने माना है। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी रोहित यादव ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में फाइनल में श्रीलंका के स्वर्ण पदक विजेता रमेश पथिग रागे के बड़े थ्रो का पीछा करना और नीरज चोपड़ा से भी बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करना गलती थी। तो इन्हीं समाचार जगत

0: अखबारों के समाचार और खेल जगत के समाचारों की सुर्खियों के बाद कार्यक्रम में थोड़ा समय और बच रहा है, तो हम चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और गीत।
1: अभी अलविदा मत कहो।

और अब इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम से विदा लेने का वक्त हो चला। तो दीजिए कार्यक्रम हेलो हजारीबाग से श्वेता को इजाजत, फिर होगी अगले कार्यक्रम में। हम आपको लिए चलेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों की ओर, जिसे रिले करेंगे विविध आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11 बजने को है। अब आइए हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

चित्रा सिंह की आवाज में आपने ये गीत सुना। रंग तरंग कार्यक्रम में हम आपको कुछ गीत गजल नगमे सुनवा रहे हैं और अब दिनेश ठाकुर की रचना, अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की आवाज़ें।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
2: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
0: विविध भारती से रंग तरंग। गुलजार के बोल उस्ताद अमजद अली खान की तर्ज है वादा एल्बम का नाम, साधना सरगम की आवाज़।

मोहब्बत पलकों पे कितने हसीन ख्वाब सजाती है, फूलों से महकते ख्वाब, सितारों से जगमगाते ख्वाब, शबनम से बरसते ख्वाब। फिर कभी यूं भी होता है कि पलकों की डालियों से ख्वाबों के सारे परिंदे उड़ जाते हैं और आँखें हैरान

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
0: पर्वती खान की आवाज, एल्बम का नाम है मिसिंग यू। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा की बैठक दोपहर 2 बजे तक और राज्यसभा दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठा दिया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
1: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति रही। सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने सदन के पटल पर दस्तावेज रखे। आवासन और शहरी मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते। ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: लोकसभा में आज बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल ये विधेयक पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप

0: रूप बनाना है। वित्त मंत्री आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 तथा विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी पेश करेंगी। इस बीच राज्यसभा में आज जन और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस विधेयक को पेश करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीतिक आग्रह के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने होर्मुज जलडमरु मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण और ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किए जाने को दूसरा चरण बताया। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। पुरुष सिंगल्स में भारत के तुषार सुवीर जापान के शोगो ओकावा से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। महिला डबल्स में प्रिया कोनजेंगबांग और श्रुति मिश्रा तथा पुरुष डबल्स में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय आज कोर्ट में उतरेंगे। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे यादों की महफिल।

शैलेंद्र के बोल, किशोर कुमार की आवाज, उन्हीं का संगीत, फिल्म का नाम दूर गगन की छांव में, किशोर कुमार की उदास कहानी, यादों की महफिल।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

0: अमर प्रेम फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में था। आनंद बख्शी की बोल थी आर डी बर्मन की तर्ज। एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गाँव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। मजबूर फिल्म का ये गाना था किशोर कुमार के उदास नगमे में। विविध भारती के कार्यक्रम में यादों की महफिल। इस बार मदन मोहन की तर्ज, किशोर कुमार की आवाज। फिल्म का नाम एक मुट्ठी आसमान।

यादें। कितने रंग हैं, किशोर कुमार की आवाज के एक रंग उदासी का भी है। किशोर कुमार को हमेशा मस्ती से, ऊधम से, शरारत से और कॉमिक अंदाज से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन जिंदगी का एक जरूरी रंग उदासी है और यहां किशोर कुमार खूब खिलते हैं। अनजान और प्रकाश मेहरा के बोल।

इसी के साथ अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम खत्म होता है। इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपने दोस्त यूनुस खान के संग। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सुरीला सफर।

आइए सुने कार्यक्रम सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। किशोर कुमार का जन्मदिन फिल्म संगीत के चाहने वालों के लिए एक बहुत ही अनमोल दिन होता है, और आज के सुरीला सफर कार्यक्रम का मिजाज हमने बिल्कुल अलग रखा है, इसीलिए आज की इबारत बिल्कुल अलग तरह की है। ये इबारत, अरे सुनो सुनो गुणीजनों।

0: मेरा मतलब है सुनिए सुनिए, जरा सी हुई चूक और आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, अपनी तो बच गई बीन, जाना था जापान पहुंच गए चीन। अरे भाई किसी ने कहा था निकलो घर से दुनिया की रौनक देखो, तो बस निकल पड़े टिम्बकटू काठमांडू, रह गए हक्का बक्का, देश छुड़ाए भेष छुड़ाए, क्या क्या न करे ये प्रीत रे। कहीं मिला निराला सुरमा, कहीं प्यारी बिंदु और कहीं भीगी भागी लड़की, पर फिर याद आई गुरुजी की सीख, कुएं में कूद के मर जाना, यार तुम शादी मत करना। तो हमने दिया चकमा ईना मीना डीका को, भले हमें गाना ना आया बचाना ना आया, पर एक रोज हमारी भी दाल गलेगी, तो बढ़ के बोल बेटा बम बम, एक बजे मिलेंगे हम। ये है आज की इबारत और लीजिए एक बजे मिल भी गए हम, लेकर आए हैं किशोर कुमार की फुल मस्ती।
1: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो ए भाई और बहनो, अरे मगन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा, आई का ओ जर्नल सिंह, ओ जर्नल सिंह, अरे
0: भी
1: सुनो
0: भाई। सबको सुनने की बात कह रहे हैं किशोर कुमार इस गाने में, क्या आप बता सकते हैं कि ये जो टुकड़ा हमने बजाया ये किस फिल्म के किस गाने का टुकड़ा था? और अब किशोर की दूसरी मस्ती, ये गाना बहुत कम लोगों ने सुना है,

0: gele gele gele ke gele gele gele ke gele gele gele bam bam ma kuk bam bam ma kuk bam bam ma kuk bam bam ma kuk sil ha ku pagu jan ha ku pagu jan ha ku pagu sil ha ku pagu ram ram si ram salam alaikum pyar karo chup chup khud priyo chup chup than than kut kut kut kut kut kut than than kut kut how do you do bam chik chik cham chik chik bam chik chik cham chik chik bam chik bub chik bam chik bub chik bam chik bub chik bam chik bub chik bad ke bol beta bam bam
1: भाई बढ़ के बोल बेटा बम बम वाला ये गाना, ये सोचकर हैरत होती है कि इसमें गीतकार का कितना योगदान है और किशोर का कितना योगदान।
0: बाबा लोग सुनो, काका लोग सुनो, दादा लोग सुनो, जल्दी जल्दी देखिए कुड़िये ये पुत्र देख भाई इधरा खाली है पिंजरा, नहीं देख भाई इधरा अरे खाली है पिंजरा, पिंजरे के अंदर
1: कौन कौन बता सकता है कि ये किस फिल्म का गाना है।
0: अंदर निकलेगा बंदर यही परिचय है राजा जानी का, बोलो मसाल जवानी दीवानी का। ए चल बेटा चल बेटा बम बम बम बम चीक चीक चाम चीक चीक बम।
1: क्या बात है किशोर कुमार की। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनके लाइव कॉन्सर्ट्स देखे हैं सचमुच में या फिर वीडियो पर, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मस्ती किस तरह की होती थी। लेकिन किशोर कुमार एक बहुत संजीदा आदमी भी थे। किशोर कुमार को सेलिब्रेट करना इसलिए मुश्किल है कि आप किस तरह से उन्हें सेलिब्रेट करेंगे। इतना बड़ा, इतना ज्यादा विस्तृत करियर क्या सुनाएं और क्या नहीं सुनाएं, इसीलिए हमने आज चुना है किशोर कुमार की मस्ती को। लेकिन सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि किशोर कुमार के किस अंदाज के गाने आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। उनके रूमानी गाने, उनके उदास गाने, ऐसे गाने जिनमें जिंदगी का दर्शन है, या ऐसे गाने जो हमने आज चुने हैं बहुत ही ज्यादा धमाकेदार, बहुत ही ज्यादा मस्ती भरे, बल्कि कहें कि ऊधम भरे गाने। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए जरा चलते हैं टिम्बकटू और काठमांडू।
2: गौरी जरा बती यासु नोजी मोरी मोरी
3: दिली ताक ताक ताक।
1: आप सभी को किशोर कुमार के अपने पसंदीदा तीन गानों की लिस्ट बनाकर हमें भेजनी है।
2: चोरी चोरी चोरी
1: जरा देखते हैं कि आपकी पसंद के किशोर के तीन फेवरेट्स कौन से हैं।
2: काकरी माकरी आकरी माकरी काकरी माकरी आकरी माकरी हे हे हे हे।

0: कली, ओ गोरी गोरी कली, मैं आया तेरी गली, कोई क्या करेगा गा गा के गे गे गली जरा टिम्बकटू,
1: काठमांडू गले हू,
0: मैं हूँ लोहा चुंबक तू,
1: कैसे भला बच बच के रहू,
0: गे गे गली जरा

0: नहीं हूँ दीवाना, पलक न गिराना, तू जरा सा उठाना आँखों का पर्दा दादा।
1: चुम्बक तू

0: क्या आपको ये अंदाजा लग सकता है कि ये गाना 65 बरस पुराना है? 65 साल पुराना।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। जेपीएससी परीक्षा विवाद पर घमासान जारी। भाजपा और छात्रों की सीबीआई जांच की मांग के बीच मुख्यमंत्री ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश। दिशोम गुरु शिबु सोरेन की आज पहली पुण्यतिथि। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ ने किया नमन। रामगढ़ में अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री करेंगे प्रतिमा का अनावरण। श्रावणी मेला 2026 की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। आईजी अभियान ने कहा ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से हो रही है 2400 घंटे निगरानी। जमशेदपुर में डिजिटल बीट पुलिसिंग की हाईटेक शुरुआत। 206 बीटों में क्यूआर कोड स्कैन कर गश्त करेंगे पुलिसकर्मी। एसएसपी ने कहा वरिष्ठ अधिकारी करेंगे रियल टाइम मॉनिटरिंग। और मौसम विभाग ने पलामू, चतरा और बोकारो सहित राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर रांची में छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना आज 11वें दिन भी जारी रहा। आंदोलनकारी छात्र परीक्षाओं में कथित धांधली की सीबीआई जांच और आयोग में बड़े प्रशासनिक सुधारों की मांग पर अड़े हुए हैं।
1: हेमंत वन और हेमंत टू सरकार में जितने भी जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाएं हुए हैं वो सब में भ्रष्टाचार हुए हैं और भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण अभय कुमार तिवारी जैसे एजेंट को पकड़ाने से उजागर हुआ है। तो हम लोग मांग करते हैं कि हेमंत वन और हेमंत टू सरकार में जितने भी परीक्षाएं हुए हैं वो सबका सीबीआई से जाँच हो।
0: छात्र

0: नेताओं ने स्पष्ट किया है कि मांगे पूरी होने तक प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। आंदोलन को और तेज करते हुए छात्र संगठनों ने आगामी 7 अगस्त को विधानसभा मार्च का बड़ा ऐलान किया है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आंदोलनरत छात्रों की मांगों को जायज ठहराते हुए कहा कि पिछले 7-8 सालों में आयोग में भारी भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है और इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से होनी चाहिए।
1: जेपीएससी के जो मेंबर हैं वो कांग्रेस के सदस्य हैं, जेपीएससी के जो मेंबर हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य हैं। आप इससे ज्यादा जो है ढफोर सिंह की नीति कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों का क्या कर सकते हैं। हमारी संवेदना उनके साथ। आज जो कांग्रेस विधायक दल का नेता है सीबीआई के रडार पे है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के रिजल्ट सीट को बदलने का वो सबसे बड़ा गुनाहगार है।
0: इधर जेपीएससी 14वीं प्रारंभिक परीक्षा विवाद पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा कदम उठाते हुए उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्या कुमार की अगुवाई में बनने वाली यह समिति आंदोलनरत छात्रों से सीधे संवाद कर 1 से 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस बीच सत्ताधारी झामुमो ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार झारखंड के युवाओं का अहित किसी भी कीमत पर नहीं होने देगी। पार्टी प्रवक्ता विनोद पांडे ने भरोसा दिलाया है कि जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाएगी और गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
2: झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके आंदोलन के साथ है और सरकार को हम लोगों ने बोला भी है। आज हेमंत सोरेन जी सिर्फ इस राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, तो उनका भी दायित्व तो बनता है, उनका भी जो कर्तव्य बनता है वो उसको निभाने का काम कर रहे हैं। जेपीएससी के अंदर में चाहे जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई हो, सख्त से सख्त सजा उनको मिले, इस पक्ष में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है और सरकार।
0: झारखंड आंदोलन के महानायक और पूर्व मुख्यमंत्री दिशम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि आज पूरे राज्य में श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है। मुख्य कार्यक्रम रामगढ़ के नेमरा लुकैयाटांड में आयोजित है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुजी की अदमकद प्रतिमा का अनावरण करेंगे। राज्य के सभी 24 जिलों में भी श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की जा रही हैं। उपराजधानी दुमका के खिजुरिया स्थित आवास पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उनके पुत्र व विधायक बसंत सोरेन और जामा विधायक लुईस मरांडी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उन्हें नमन किया। नेताओं ने दिशम गुरु के जल जंगल और जमीन की रक्षा के संकल्प को आगे बढ़ाने की बात कही।
3: में अगर राजनीतिक चेतना देने का काम किए हैं तो निश्चित रूप से बाबा दिशम गुरु को ही श्रेय जाता है। और आज आदिवासी लोग राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे बढ़े हैं, आर्थिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आदिवासी समाज आगे बढ़ा है।
0: दिशम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर केंद्रीय मंत्रियों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने उनके सामाजिक योगदान को याद किया। संजय सेठ ने गुरुजी के नशा मुक्ति अभियान, समाज कल्याण और झारखंड आंदोलन के जीवन संघर्ष को हर देशवासी के लिए प्रेरणादायक बताया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देवघर के ऐतिहासिक श्रावणी मेला 2026 के सुरक्षित संचालन को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। आईजी अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने रांची में बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम जलार्पण के लिए पूरे मेला क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे निगरानी की जा रही है।
4: का शुभारंभ हो चुका है कि हम लोगों ने लगभग 14,000 फोर्सेस का डेपुटेशन देवघर और दुमका के अंदर किया गया है और इसमें एनडीआरएफ की टीम भी लगी है शिवगंगा के आसपास और सीआरपीएफ की 5 कंपनी लगाई गई हैं जिसमें एक महिला कंपनी है। एक कंपनी को केवल मंदिर में इवैक्यूएशन के लिए लगाया गया है। QRTs काफी बनाई गई है ताकि कोई भी आपातकालीन

0: सिचुएशन हो उसका निपटारा हो सके।
1: जमशेदपुर पुलिस ने अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए क्यूआर कोड आधारित डिजिटल बीट पुलिसिंग सिस्टम की शुरुआत की है। पूर्वी सिंहभूम जिले को कुल 206 शहरी और ग्रामीण बीटों में बांटकर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। एसएसपी एहतिशाम वकारिब ने बताया कि इस हाईटेक व्यवस्था के तहत गश्ती दल चिन्हित स्थानों पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, जिससे वरिष्ठ अधिकारी रियल टाइम में उनकी लोकेशन की डिजिटल मॉनिटरिंग कर सकेंगे।
2: पेट्रोलिंग हमारी चल रही है, उसकी मॉनिटरिंग सिस्टम इन्हांस के लिए डिजिटल बीट पुलिसिंग का शुरुआत किया है और पूरे शहर को और ग्रामीण क्षेत्र को 206 बीट में बांटा गया ताकि हमारी जो गश्ती है उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जाए। 5 साल के आंकड़ा उसका आधार पे क्राइम हॉट स्पॉट की मैप की गई है और जो भी इस तरह का अफेक्टेड जगह है इन सब जगहों पे लगाएंगे।
1: रांची नगर निगम द्वारा जारी किए गए नोटिस का विरोध में अपर बाजार के दुकानदार लामबंद हो गए हैं। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के नेतृत्व में व्यापारियों ने इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया है। चैंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा का कहना है कि नगर निगम का यह फैसला कारोबारियों के हितों के खिलाफ है और इसके विरोध में चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है।
3: व्यापारी के मत से ही इतने सारे रोजगार सृजन होते हैं, इतना सारा जो टैक्स का कलेक्शन होता है, तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार इस फरमान को पूरा करेगी क्योंकि इससे वहां पर व्यापारी दहशत होगी और अभी जो भय का माहौल है तुरंत इस बात को निरस्त करना ही होगा।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 112 अंक गिरकर 78,527 जबकि निफ्टी 239 अंक की गिरावट के साथ 24,535 पर कारोबार कर रहा था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,600 रुपये प्रति 10 ग्राम है जबकि चांदी की कीमत 2,27,000 रुपये प्रति किलो है। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने राज्य के पलामू, चतरा और बोकारो सहित कई जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग की ओर से इन इलाकों में वज्रपात और तेज हवाओं की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जेपीएससी परीक्षा विवाद पर घमासान जारी, भाजपा और छात्रों की सीबीआई जांच की मांग के बीच मुख्यमंत्री ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश। दिशम गुरु शिबू सोरेन की आज पहली पुण्यतिथि, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ ने किया नमन। रामगढ़ में अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री करेंगे प्रतिमा का अनावरण। श्रावणी मेला 2026 की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, आईजी अभियान ने कहा ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से हो रही है 24 घंटे निगरानी। जमशेदपुर में डिजिटल बीट पुलिसिंग की हाईटेक शुरुआत, 206 बीटों में क्यूआर कोड स्कैन कर गश्त करेंगे पुलिसकर्मी। एसएसपी ने कहा वरिष्ठ अधिकारी करेंगे रियल टाइम मॉनिटरिंग। और मौसम विभाग ने पलामू, चतरा और बोकारो सहित राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: दुनिया पागल है अलबत्ता, अरे डाली टूटी फल है कच्चा बाग लगाया पक्का ए बी हक्का।
5: किस फिल्म का है ये गाना ये बताइए।
4: चाहे हम चाहे तुम, कल की है खबर किसको। चाहे हम है, चाहे तुम, कल की है खबर किसको। समझे ये हवा मिली ऐसी नजर किसको। बूम धाम बड़ा बड़ा बूम, आई आधी टूटा पत्ता, डाली टूटी फल है कच्चा बाग लगाया पक्का ए भी हक्का हक्का पक्का। दुनिया पागल हो।

0: धक्का आई आधी टूटा पत्ता डाली टूटी फल है कच्चा बाग लगाया पक्का ए भी हक्का हक्का पक्का दुनिया पागल है अलबत्ता है डाली टूटी फल है कच्चा बाग लगाया पक्का ए भी हक्का मैं हूँ इंसान वो है कुत्ता कहता हूँ पते की सुन
1: ओ सोनिया
0: मैं हूँ इंसान वो है कुत्ता कहता हूँ पते की सुन वो भी काटे मैं भी काटूं यहाँ सबको है अपनी धुन अरे भागो बंबई से कलकत्ता चलते जाना देके धक्का आई आधी टूटा पत्ता डाली टूटी फल है कच्चा बाग लगाया पक्का ए भी हक्का हक्का बक्का दुनिया पागल है अलबत्ता अरे डाली टूटी फल है कच्चा बाग लगाया पक्का ए भी हक्का हक्का बक्का।

0: भाई इस गाने को सुनकर क्या कहेंगे आप? मजरूह सुल्तानपुरी के ये बोल हैं, कितने सारे श्रोताओं ने अपनी बात कही है और अपने जज्बात का इजहार भी किया है। और एक श्रोता है जो कहते हैं कि उनके फेवरेट गाने हैं एक लड़की भीगी बागी सी, अजनबी, तुम जाने पहचाने से लगते और कश्ती का खामोश सफर। एक श्रोता और हैं जिन्हें बिंदु रे बिंदु गाना बहुत पसंद है, ये जो गाना हमने आपको सुनवाया इसके बारे में भी कई श्रोताओं ने अपनी बात कही है। और इसके अलावा किशोर कुमार की गायन में मनोरंजन ही नहीं करते, अपनी आवाज़ के जादू से हम सबके दिलों में जगह बना लेते हैं, ये किसी ने कहा है। वो दुनिया से ज़रूर विदा हो गए मगर उनके गीतों को क्या हम अपने दिल से विदा कर सकते हैं, ये भी एक बात। और इसके अलावा एक और श्रोता लिखती हैं कि किशोर दा के सामने मौजूद होना ये किसी भी कला प्रेमी के लिए जीवन का सबसे बड़ा और जादुई पल हो सकता है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं, लहरों की तरह यादें, मेरा जीवन कुछ काम ना आया, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, ये तमाम गाने। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि खंडवा में हम उनके घर उनके समाधि स्थल तक गए और इन जगहों के दर्शन करने का सौभाग्य हमें मिला है। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि किशोर दा अगर आज होते तो खंडवा में दूध जलेबी का आनंद जरूर लेते। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि अपने घर को लेकर उनका अपना एक अलग सपना था जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपने घर में एक आर्किटेक्ट को बुलाया और कहा कि मेरा एक ऐसा घर बनाओ जिसके हर कमरे में पानी हो और पूरे घर में नाव चलाकर एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाए। आर्किटेक्ट भाग खड़ा हुआ। ये घटना जो है ये बहुत ही दिलचस्प है, पर आज के इस कार्यक्रम में ना जगह है ना सही समय है इसे बताने का। दरअसल उन्होंने उस आर्किटेक्ट से एक तरह का बदला लिया था, उसे सताया था। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। और किशोर दा एक सलाह दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कुएं में कूद के मर जाना, यार तुम शादी मत करना। अब आप लोग विविध भारतीय फेसबुक पेज पर जाकर बताइए कि ये सलाह सही है या नहीं है।
1: कुएं में ठंडा जल में नहाने से गला ठोचरा बैठ गया।

0: पहुंचा मैं उसके बंगले पर। अपने दिल की उमंगें लेकर पहुंचा मैं उसके बंगले पर। जाते ही झुक के सलाम बजाया डैडी को, दिल का बयान सुनाया, भोले भाले डैडी बोले।
1: हाँ जी, अच्छा ख्याल है आपका दीदी, ये मुझको पता अपने बाप का, आपके बाप को चिट्ठी के जरिए बता दूंगा, अच्छा ख्याल है आपका।

0: साथ। कोई बता सकता है कि ये किस फिल्म का गाना है?
1: कहने लगा
2: ये मुंह और मसूर की दाल पे, निकल जा निकल जा निकल जा यहाँ से चंडाल के बच्चे। उसका भाई था बक्सर भारी, उसका भाई

0: मेरा नाम मिस खम्बा।
1: बम्पी बम्पी बम्पी बम्प,
0: कुछ खेल हुआ कुछ मेल हुआ, दिल फेल हुआ हाय हाय रे।
1: बबलू बबलू बबलू बबलू बाबा बबलू बबलू बबलू बाबा बबलू
0: होनोलुलू।
2: कहाँ से पहुंचे और कहाँ चले गए हूनू लुलू, कुएं में कूद के मर जाना, यार तुम शादी मत करना परिवार, फिल्म का ये गाना बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। शैलेंद्र का ये गीत और सलील चौधरी का संगीत, इस गाने के बोल एक कागज पर लिखकर देखिए और जरा सोचिए कि कैसे लिखे गए होंगे ये गाने और कैसे इनकी रिकॉर्डिंग की गई होगी। 1956 में आई थी ये फिल्म और बिमल रॉय की ये फिल्म थी और बिमल रॉय निर्मित इस फिल्म में किशोर कुमार का स्पेशल अपीयरेंस था, ये भी हमारे कुछ श्रोताओं में से किसी एक ने कहा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि किशोरदा किस तरह से किसी भी गाने को मजेदार बना देते हैं कि सुनकर बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि 50-60 साल पहले लड़कियों के लिए अगर शादी ना करनी होती तो भी करनी पड़ती थी, आज की बात कुछ अलग है। एक श्रोता है जिन्होंने सारी बात को समअप कर दिया है कि शादी वो लड्डू है जो खाए पछताए, जो ना खाए पछताए, इसलिए शादी करना ही बेहतर है, यह उनका विचार है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि किशोर कुमार को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतीय सिनेमा के सबसे बहुमुखी और प्रभावशाली कलाकारों में से एक वो माने जाते हैं। एक और श्रोता का कहना यह है कि उनके 3 पसंदीदा गानों को सिलेक्ट करना जरा मुश्किल है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये कहते हैं कि बहुत ही अनोखा कॉम्बिनेशन आज

आपने किया है, पहले तो उदास गाने बजाए और उसके बाद ऐसे मस्ती भरे गाने लगाए कि एक श्रोता कह रही है कि ऐसे गीत लाए हैं जो आज हमने इनमें से कुछ पहली बार सुने हैं। ठीक है भाई, अब जरा ये गाना सुनिए और बताइए रुपहले पर्दे पर इस गाने में कौन कौन नजर आते हैं और किशोर कुमार इस गाने में किसकी बैंड बजा रहे हैं।

0: ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ संवरिया।

0: करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय हाय लटकट रंगीले सावरिया आंखें सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सावरिया।

0: तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय। मुझको बना गए बावरिया, आके सीधी लगी दिल में जैसे कटरिया, ओ सवरिया।

0: गुजरिया
1: ओ गुजरिया
2: ओ सवरिया
1: ओ गुजरिया
2: ओ सवरिया।
3: भाई खत्म हुआ ये हुड़दंग का गाना, हाफ टिकट फिल्म का गाना शैलेंद्र के बोल। और एक श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है कि मध्य प्रदेश के लोग ही नहीं नहीं नहीं ये बात ठीक नहीं है, इस तरह से ना करें क्षेत्रवाद। वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश के लोग ही ऐसा हुड़दंगा कार्यक्रम कर सकते हैं। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं फिल्म हाफ टिकट शैलेंद्र जी के बोल हैं। और हाँ एक चीज आपसे कहनी है कि कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने जोश जोश में सखी सहेली वाली या आज शाम के 4 बजे पिटारा वाले कार्यक्रम में जाके अपने कमेंट कर दिए और किशोर कुमार के फेवरेट गाने वहां चिपका दिए। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने जाके वहां पर आपके कमेंट्स देखे तो मुझे लगा ये कुछ कमेंट्स वहां पर क्यों हैं। तो एक श्रोता लिख रहे हैं कि भाई इस गाने में किशोर कुमार प्राण की बैंड बजाते हैं, क्या तो शानदार मुकाबला है दोनों महान कलाकारों का इस गाने में। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि किशोर कुमार की बहुमुखी प्रतिभा का शानदार उदाहरण है और किशोर कुमार ने ही महिला और पुरुष स्वर में भी गाया है और प्राण के स्वर में भी गाया है। और इसके अलावा और भी तमाम श्रोताओं ने अपनी बातें कही हैं लेकिन आज गाने भी ज्यादा हैं और आप सभी के जज्बात जिस तरह से आ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए हौसला बढ़ाने की भी बात है। और ये भी कि किशोर कुमार के प्रति जो आपका प्रेम है वो कितना ज्यादा है। अब एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि पहले हास्य गीतों का एक कार्यक्रम आया करता था विविध भारती पर, आज के इस कार्यक्रम ने उसकी याद दिला दी है। इसके अलावा एक श्रोता का कहना है कि जब वो हास्य गीत गाते थे तो लगता था उन्होंने गाने को किसी धागे की तरह उलझा दिया है और यही धागा उलझाना उनकी विशेषता थी। अब 2 गाने बैक टू बैक आएंगे, बल्कि गानों के अंश बैक टू बैक आएंगे, आपको इनकी फिल्मों के नाम बताना है।

0: भाई बैक टू बैक दो गाने हमने आपको सुनाए और सभी श्रोताओं ने अपने इन बातों के जवाब दिए। चलती का नाम गाड़ी और पड़ोसन फिल्म के ये गाने। और चलती का नाम गाड़ी के गाने के बारे में एक श्रोता लिखती हैं कि क्या तो एक्सप्रेशन है, मधुबाला के लिए गा रहे हैं पर लगा ऐसा जैसे उनके लिए उन्हें इससे कोई मतलब ही नहीं है। क्या तो शानदार फिल्म है चलती का नाम गाड़ी। कितने बार आपने देखी है जरा बताइएगा तो हम ये अंदाजा लगा पाए कि चलती का नाम गाड़ी हमारे आज सुन रहे श्रोताओं में सबसे ज्यादा कि बार किसने देखी है। एक तो ये बात हो गई और दूसरी बात यह है कि आज जो मैंने इबारत लिखी थी किशोर कुमार के हुड़दंगे गानों के बारे में, क्या कोई गिनकर बता सकता है कि उस पूरी इबारत में कुल कितने गाने समाये हुए हैं। और अब किशोर कुमार का ये बेतहाशा हुड़दंगा गाना, फिल्म का नाम आपको है बताना।
1: निकल के आ घर से, आ घर से, अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से, दुनिया की रौनक देख फिर से, देख ले फिर से, दुनिया की रौनक देख फिर से, देख ले फिर से, होए अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से, अरे भाई।

छोड़ा, कल चांद और तारों में पहुंचेगा एटमी घोड़ा। अरे भाई अरे भाई अरे भाई, निकल के आघर से आघर से, दुनिया की रौनक देख फिर से, देख ले फिर से।

0: मत गा हर भाई निकल के आ घर से आ घर से हर भाई निकल के आ घर से।
1: क्या तो शानदार गाना है नई दिल्ली फिल्म का ये गाना। भाई आज की इबारत पढ़िए और जल्दी से हिसाब लगाकर बताइए कि आज की इबारत में मैंने जो शब्द लिखे हैं गानों को जोड़कर जो इबारत बनाई है उसमें गानों की कुल संख्या कितनी है जरा हम देखें तो कि आप लोग सही सही अंदाजा लगा पाते हैं या नहीं, क्योंकि शब्द शब्द पर गाने समाये हुए हैं। तो कुछ श्रोताओं के जवाब आए हैं, कुल 13 गीत हैं जो कि गलत जवाब है, एक और हैं जिन्होंने 14 गीत लिखा है वो भी गलत जवाब है। तो जरा ध्यान से पढ़िए और आज का ये कार्यक्रम एक कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा तो खत्म हो चुका है। तो एक और श्रोता है जिन्हें 16 गाने इस गाने की इबारत से मिले हैं तो बहुत करीब पहुंच चुके हैं वो। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि भाई घर से बाहर तो आज नहीं निकल सकते क्योंकि आज हम सुरीला सफर सुन रहे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये कहते हैं कि हम तो अभी घर पर ही हैं, निकलेंगे तो रौनक देख लेंगे, घनश्याम भाई का नाम भी है इस गाने में। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि न्यू दिल्ली फिल्म का ये गाना शंकर जयकिशन का संगीत है। एक और श्रोता है जो देर से जुड़े हैं लेकिन इस कार्यक्रम में उनको बिल्कुल मजा ही आ गया है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बारिश भी ऐसा ही कह रही है कि भाई अरे भाई निकल के आ घर से, दुनिया की रौनक देख फिर से। तो ये किशोर कुमार का जादू है। और अब जो गाना आ रहा है वो किचन में खाना पकाते हुए फिल्माया गया गाना है और आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि किचन में खाना पकाते हुए सबसे बड़ा ब्लंडर आपने जो किया था वो क्या था और कब किया था, क्या पका रहे थे आप?
0: फूंक फूंक कर चूल्हा

बोल मेरे दुखिया मन कब तक। ये चूल्हा ये चौका ये झाड़ू ये बर्तन ये आटा बटाटा ये गड़बड़ गुलाटा और ये और वो और घर तेरी की, पर सब दिल हो तन एक समान पंछी काहे होत उदास। एक रोज

चार दिन होंगे गरीबी के, जिस दिन खलास गरम गरम गरम गरम कचौरी पूरी खूब।

भाई बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं और इस तेजी के साथ स्क्रीन स्क्रॉल कर रही है कि समझ नहीं आ रहा किसने क्या लिखा है। एक श्रोता है जो ये कहते हैं क्यों ना रोटियों का हम पेड़ लगा लें, आम तोड़ें, रोटी तोड़ें, रोटी आम खा लें। वाह भाई वाह वाह वाह वाह। यहां मुझे लगता है कि ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि जो शैलेंद्र के बोल कोट किए हैं इन्होंने, क्यों ना रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़ें, रोटी तोड़ें, रोटी आम खा लें, ये किशोर कुमार का गाया हुआ एक गाना है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि ये कौन सा गाना है? जिन्होंने पोस्ट किया वो प्लीज मत बताइएगा। एक और श्रोताएं जो कहती हैं कि 19 गाने हैं आज की इस इबारत में, एक श्रोताएं जो कहती हैं कि आज की इबारत में 20 गाने हैं, एक श्रोता नाराज हैं कि सुरीला सफर की पोस्ट आते ही अपने विचार व्यक्त करता हूं पर आपको अपने सवालों में ही दिलचस्पी रहती है, शायद इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करके हमने गलती कर दी है। भाई आपका कमेंट दिखा नहीं इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं के कमेंट्स शामिल करने की कोशिश करते हैं और देखिए कि लगातार कमेंट्स पढ़ रहे हैं गानों के बीच में। ये कमेंट दिखा और फौरन पढ़ा। एक श्रोता है जिन्होंने गाजर का हलवा बनाया और दूध की बजाय चावल पता नहीं क्या उन्होंने जोड़ दिया और हलवे की बैंड बज गई। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रही हैं कि उन्होंने चाय में नमक डाल दी थी और मेहमानों को परोस भी दी थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि कुछ कुकर में खिचड़ी बन रही थी, गैस चूल्हे पर रखकर भूल गया, उसका ढक्कन उड़ा, खिचड़ी जाकर दीवारों और छत पर लग गई, हे भगवान। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि पहली बार जब आटा गूंधा तो ढेर सारा पानी डाल दिया था और एक ही बार में वो गीला हो गया था। एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि इस गाने के साथ मेरा भी एक किस्सा है। वैसे तो कभी कभी पापा छुट्टी के दिन खाना बना देते थे और उस दिन यही गाना गाते थे, एक रोज हमारी भी दाल गलेगी। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि हमारी दाल तो गल गई है और अब हम रोटी पका रहे हैं, वही वाह। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा है कि भाई 18 गाने आज के इस कार्यक्रम में, आज की इस इबारत में है और ये जो किचन के ब्लंडर्स हैं ये पढ़कर बड़ा ही मजा आ गया। बल्कि एक और मजेदार किस्सा ये हुआ है कि के मुंगोचो घनश्याम जी, इस तरह की जो पंक्ति है अरे भाई निकल क्या घर से वाले गाने में, तो बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जिनका नाम घनश्याम है उनको बड़ा मजा आ गया आज के कार्यक्रम में इस गाने की इस लाइन को सुनकर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और किशोर का एक और हुड़दंगा गाना सुनते हैं। फिल्म का नाम आप बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि आज इतने सारे हुड़दंगे गाने जो हमने बजाए उसमें से आपका पसंदीदा कौन सा गाना था, और अगर कोई भयंकर हुड़दंगा गाना हमने मिस कर दिया तो वो भी बता दीजिए।

0: बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए। एक श्रोता लिखती हैं कि भाई जरूरत है एक श्रीमती की, ये गाना नहीं बजाया गया। एक और श्रोता है जो लिखती हैं, प्रिय प्राणेश्वरी को मिस कर रही हूं, इसके अलावा झुमरू गाना नहीं बजाया गया। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी बात कही है, पर एक श्रोता है जिन्होंने कहा कि क्यों ना रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़े रोटी तोड़े रोटी आम खा लें, ये गाना मुसाफिर फिल्म के गाने की पंक्तियां हैं। मुन्ना बड़ा प्यारा ये गाना है जिसमें इतनी सुंदर पंक्तियां आती हैं। शैलेंद्र लिखते हैं कि एक दिन वो माँ से बोला, क्यों फूकती है चूल्हा, क्यों ना रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़े रोटी तोड़े रोटी आम खा लें, काहे कले लोज लोज तू ये झमेला, अम्मी को आई हंसी, हंस के वो कहने लगी, लाल मेहनत के बिना रोटी किसके घर पर पकी। ये है जादू गीतकारी का, ये है जादू शैलेंद्र का। किशोर कुमार का एक बहुत ही प्यारा गाना और उसकी बहुत प्यारी पंक्ति। शुक्रिया जिस भी किसी श्रोता ने इसका जिक्र किया है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा है कि भाई चलते चलते ये जरूर बता दीजिएगा कि कुल कितने गानों से आपने इबारत सजाई थी। बहुत सारे श्रोता अलग अलग आंकड़े लिख रहे हैं, तो मैं कहूँगा तकरीबन 18 गाने तो मुझे ही नजर आए थे, और आप लोग ढूंढ लीजिएगा क्योंकि अलग अलग शब्दों से भी गाने सज जाते हैं। तो बहुत सारे श्रोताओं को आनंद आ रहा है और खाना पकाते हुए दाल गलेगी जैसे गाने सुनते हुए किसी के दाल चावल बन गए, किसी की रोटी और किसी की हैदराबादी बिरयानी। और कार्यक्रम का आखिरी गाना फिल्म का नाम बताइएगा और साथ में देखिए संगीतकार भी यहां बदल जाते हैं, और ये भी कि इस गाने के जरिए दुनिया को देखने की नई नजर आपको मिलेगी।
1: सुरमा मेरा

दुश्मन जिसे सताए जिसको लगा के जाए जाके नजर मिलाए धोखा कभी न खाए बूढ़ा हो या हो बच्चा क्यों हो न

भाई आज के कार्यक्रम का वक्त यहीं खत्म हुआ। हमने किशोर कुमार को सेलिब्रेट किया और धमाधम सेलिब्रेट किया। हमें उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश आपको बहुत पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया और किशोर कुमार की याद को हम नमन करते हैं। किशोर दास जिंदाबाद।

के लिए त्रिवेणी में आपका स्वागत है। तो आज बातें माँ की। जैसे ही माँ शब्द का उच्चारण करते हैं, हमारे सामने एक ममतामयी मूरत आ जाती है, एक ऐसा रिश्ता जिसको हमने भगवान का दर्जा दिया है, इतने ऊपर स्थापित कर दिया है कि उनसे कभी इंसानों वाली गलतियों की अपेक्षा ही नहीं की जाती। माँ यानी जैसे बच्चे के हंसने, रोने, खाने पीने, डरने, सोने जागने और पूरे दिलो दिमाग का पता होना चाहिए। माँ कभी इस मामले में गलत हो ही नहीं सकती, और अगर वो कभी बच्चे की भावना को ना समझ पाए तो मानो कहर ही टूट पड़ता है, क्योंकि माँ को तो सब कुछ पता होना ही चाहिए, है ना?

माओं पर बच्चों को पूरी तरह जानने का ऐसा दबाव होता है कि माँ खुद को माँ कम बच्चों के पीछे लगा सीआईडी एजेंट ज्यादा समझने लगती है। ऐसा हो भी क्यों ना, बच्चे की हर गलती या आहत भावनाओं के लिए माँ ही जिम्मेदार ठहराई जाती हैं। वहीं अगर बच्चा कोई बात न मानता दिखे तो भी अधिकांश मामलों में माँ ही उसे बिगाड़ने की जिम्मेदार समझी जाती है। इस दबाव का नतीजा ही है कि माएं बच्चों की हर गतिविधि पर किसी जासूस की तरह नजर रखना अपना धर्म समझती हैं। फिर बच्चे के दोस्तों के नाम हो, उनके घर का पता हो या बच्चे का सोशल मीडिया अकाउंट, बच्चे के टिफिन, बोतल, बैग, कपड़े और उनकी पूरी जिंदगी ही माँ की नजरों के स्कैनर से होकर गुजरती है। एक उम्र तक तो ये सब ठीक भी लगता है, लेकिन जब बच्चे युवा हों तब यही बातें उन्हें परेशान करने लगती हैं। इस तरह बच्चों की जिंदगी में मंडराते रहने वाली माओं को हेलीकॉप्टर मॉम की उपाधि भी दी गई है।

बच्चों के जिंदगी में पेरेंट्स की ज्यादा दखल बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित भी करती है। लेकिन यहाँ समझना ये है कि माओं को हर बात पता होने के दबाव ही अक्सर उन्हें इस तरह दखल देते रहने के लिए प्रेरित करता है। पर सामाजिक ढांचे में इन दिनों बदलाव भी हुआ है। कामकाजी जोड़े होने के कारण इन दिनों घर के पुरुष भी हर काम में हाथ बटाते हैं और कहीं कहीं तो पिता भी अब सामाजिक रूप से तय माँ की भूमिका में अपना हिस्सा निभाते हैं। वो बच्चों को नहलाना, डायपर बदलना, सफाई करना, घुमाना, खिलाना, स्कूल के लिए तैयार करना, टिफिन बना देना जैसे कई काम उनके लिए करते हैं। कहना ही होगा कि इस तरह से परिवार में अभिभावकों का आपस में मिलकर काम करना दोनों को ही बच्चों के करीब लाता है। बच्चा भी परिवार में अपने माता पिता को एक टीम की तरह काम करते देख दोनों के साथ समान रूप से जुड़ता है और पिता से केवल डरने या उनका सम्मान करते रहने की बजाय गले लगने और अपने दिल की बात कहने का हौसला भी पाता है। कहीं न कहीं पिता में भी अब उन्हें माँ की तरह की सहजता मिल रही है।

घर के सदस्य एक टीम बन जाएं, तो जीवन का खेल भी आसान हो जाता है। इसी संदेश के साथ दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर, विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित, ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार, तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में

0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर संसद के मॉनसून सत्र को बाधित करने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज सुबह नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन दल ने प्रश्नकाल तथा शून्यकाल के दौरान हंगामा किया।
1: करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक सेशन के ऊपर। सभी सांसद अपने क्षेत्रों से प्रश्न लेकर आते हैं, वो चाहते हैं कि प्रश्न पूछा जाए, मंत्रालय जवाब दे, मगर जब से सदन आरंभ हुआ है क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट में हो नहीं रहा। जीरो आवर के लिए पार्लियामेंट में बाधाएं उत्पन्न की जा रही, लगभग किसी बिल पे चर्चा नहीं हो रही।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में और संशोधन करेगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 आज राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश करते हुए बताया कि इसका उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक कठोर बनाने तथा जन्म और मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में स्थायित्व लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वे आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर दे रही थी। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत गन्ना, अनाज, दलहन, तिलहन और अन्य कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना PLI एक बड़ी सफलता के रूप में उभरी है, जिससे न केवल प्रमुख क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा मिला है बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास को सहायता देने वाले एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में भी सहायता मिली है।
2: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME को कई तरह से लाभ मिला है। सबसे पहले MSME की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया है। उन्हें मिलने वाली सभी सुविधाएं पहले की तरह जारी हैं। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कानून में संशोधन किए गए हैं, जिससे 90 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान संभव हो रहा है। साथ ही उद्यम पोर्टल पर MSME के पंजीकरण होने से उनके लंबित भुगतान का निपटारा भी और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को विवादास्पद बयान के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया। कावेरी जल विवाद को लेकर कल DMK के किसान विरोध प्रदर्शन में श्री उदयनिधि के विवादास्पद भाषण के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। तंजावुर की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप है कि उनके भाषण में महिलाओं के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। आगे की कार्रवाई के लिए उदयनिधि को तंजावुर ले जाया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। भाजपा के राज्यसभा सांसद शिवेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की मंगल मिलन बैठक में वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर चर्चा हुई।
3: संदेश बिल्कुल साफ था, जो हमारे जो 12 साल के काम हुए हैं और पीछे के जो काम हुए उसकी तुलना में देश जो है विकास किया है, और जो लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का आने वाले समय में 2047 का, उस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं। मनसुख भाई जी ने एक एक विषय पर विस्तार से बताने का काम किया, स्पोर्ट्स के बारे में, GDP ग्रोथ के बारे में।
0: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि E20 ईंधन नीति के विरोध में अरविंद केजरीवाल का प्रस्तावित मार्च भारतीय किसानों के हितों के खिलाफ है, जिन्हें इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम से लाभ मिल रहा है।
4: उनका ये विरोध भारत के किसानों के आमदन का विरोध है। जो किसान मक्का पैदा कर रहा है, जो किसान गन्ना पैदा कर रहा है, उसके पास करोड़ों अरबों रुपए जा रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। और ये जो भी मिलाया गया है, जितना भी मिलाया गया है, वो साइंटिफिक तरीके से मिलाया गया है और प्रमाणिक तरीके से हुआ है। इसका किसी भी वाहन पर कोई असर नहीं हो रहा है,

0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधन विधेयक 2026 के अंतर्गत किसी भी राज्य और लाभार्थी को मिलने वाले अनाज में कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये जानकारी दी। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है।
1: सभी हितधारकों ने अपने सुझाव दिए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सार्वभौमिक कवरेज के संदर्भ में देश के 75% परिवारों में 4 से कम लाभार्थी हैं। इन सभी परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है। वहीं लगभग 14% परिवार ऐसे हैं जिनमें केवल एक सदस्य है, ऐसे परिवारों को भी 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है।
0: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थ नियंत्रण के क्षेत्र में 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। वर्ष 2021 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस भारत लाया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने वर्ष 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। गृहमंत्री अमित शाह ने भगोड़ों के खिलाफ 3 सूत्री रणनीति पर बल दिया, जिसमें वैश्विक संपर्क, मजबूत समन्वय और कुशल कूटनीति शामिल है। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले की CBI जांच की मांग करते हुए भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप लगाए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदीप कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। ये समिति छात्रों से बातचीत करेगी और 1 से 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो का खंडन किया है, जिसमें प्रधानमंत्री को पुराने सिक्कों की प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए सरकार अधिकृत खरीदार का समर्थन करते हुए दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और इसे डिजिटल रूप से छेड़छाड़ करके बनाया गया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी सहित प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ओडिशा में बाढ़ के बाद हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। सोमवार रात से महानदी में बाढ़ का पानी कम होने लगा है। हालांकि कई परिवार अभी भी बेघर है क्योंकि निचले इलाकों से पानी पूरी तरह नहीं निकला है। इस बीच हीराकुद बांध प्रशासन पानी का बहाव कम होने के बाद 13 स्लुइस गेटों से नियंत्रित तरीके से बाढ़ का पानी छोड़ रहा है, जिससे जलाशय पर दबाव कम करने में मदद मिल रही है। IMD ने अगले 2 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरलम के 8 जिलों में आज मूसलाधार वर्षा की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: केरलम के 14 जिलों में से 8 जिलों में रेड अलर्ट और 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और बाढ़ के कारण 13,000 से अधिक लोग अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री VD सतीशन ने पथनमथिट्टा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरल, माहे और दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक में तेज वर्षा का अनुमान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर गोलीबारी की और आंसू गैस के गोले दागे। समिति ने सोशल

0: मीडिया प्लेटफॉर्म पर घटनास्थल का फुटेज साझा करते हुए ये जानकारी दी। ये घटनाएं पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की बढ़ती क्रूरता के बीच हुई है। यहां पिछले कुछ दिनों में कथित तौर पर 50 से अधिक लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। होर्मुज दलदमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान की प्रस्तावित शांतिवार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ गई है। एक मालवाहक पोत पर आज होर्मुज दलदमरू मध्य से गुजरते समय मिसाइल से हमला होने की खबर है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के अनुसार ये घटना रणनीतिक जलमार्ग के दक्षिणी किनारे पर ओमान के अल खसाब से लगभग 20 समुद्री मील उत्तर पूर्व में हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का पहला मैच जीत लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने के बाद बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में सबसे पहले फरेब फिल्म का गाना मजरू सुल्तानपुरी के बोल अनिल बिस्वास की तर्ज है।

विविध भारती से आप सुन रही हैं सदाबहार नगमे। अगला गाना फिल्म जालसाज से है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल एन दत्ता की तर्ज, किशोर कुमार के साथ आशा भोसले।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पद्मभूषण दिशम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर आज राज्यभर में विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। इस मौके पर रामगढ़ स्थित उनके पैतृक गांव नेमरा लुकैयाटांड में राज्य स्तरीय श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कई विशिष्ट लोग दिशम गुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोना सोबरन स्कूल परिसर में गुरुजी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कार्यक्रम में गांडीय विधायक कल्पना सोरेन, मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद, विधायक और बड़ी संख्या में झामुमो नेता कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। पाकुड़ में दिशम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि के मौके पर उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया, साथ ही सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय के परिसदन के सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक स्टीफन मरांडी, हेमलाल मुर्मू समेत कई सहयोगी दलों के नेताओं ने शिबू सोरेन की प्रतिमा का अनावरण संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर जिले के प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। शिबू सोरेन की प्रतिमा अनावरण के बाद कृषि उत्पादन बाजार समिति प्रांगण में सर्वदलीय सभा आयोजित की गई, जिसमें गठबंधन दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। मौके पर विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी ने कहा कि जल जंगल जमीन को बचाने, लोगों को महाजनों के चंगुल से मुक्त करने, दबे कुचलों को उनका हक दिलाने और संघर्ष के लिए लोगों को एकजुट करने का काम शिबू सोरेन ने किया, जिसका नतीजा है कि आज भी गुरुजी को लोग श्रद्धा से याद करते हैं।
1: कहां से चले थे? एक गरीब परिवार से। उनके पिताजी की हत्या के बाद जो प्रतिशोध का ज्वाला उनके दिल में उठा, वो पूरे झारखंड में ही नहीं बल्कि बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश सभी जगह ये फैल गया।
0: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। रांची में पिछले 11 दिनों से छात्र धरने पर डटे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: झारखंड की प्रतियोगिता परीक्षाओं में कथित धांधली के विरोध में छात्रों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कल देर शाम रांची में बड़ा फ्लैश मार्च निकालने के बाद छात्र संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर आगामी 7 अगस्त को विधानसभा मार्च का ऐलान किया है। छात्र परीक्षाओं में गड़बड़ी की सीआईबी जांच और प्रशासनिक सुधारों की मांग पर अड़े हुए हैं। इस बीच भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए आयोग में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने पूरे मामले की जाँच केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग की है। दूसरी ओर बढ़ते दबाव के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदीव कुमार की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है, जो छात्रों से संवाद कर 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। इधर सत्ताधारी झामुमो ने भी भरोसा दिलाया है कि सरकार युवाओं का अहित नहीं होने देगी और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं विश्व।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर संसद के मॉनसून सत्र को बाधित करने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज सुबह नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन दल के प्रश्नकाल तथा शून्यकाल के दौरान हंगामा किया। श्री पात्रा ने कहा कि झारखंड में हजारों विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने उनके समर्थन में एक शब्द भी नहीं कहा है, जो पेपर लीक के मामलों पर उसके पक्षपातपूर्ण आक्रोश को दिखा रहा है। रेलवे ने इस वर्ष जुलाई में पिछले वर्ष की तुलना में माल ढुलाई में 9% की वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान 14 करोड़ 13 लाख टन माल की ढुलाई की, जबकि पिछले वर्ष जुलाई में यह 12 करोड़ 97 लाख टन की थी। रेलवे ने

पिछले वर्ष की तुलना में जुलाई में ताप ऊर्जा संयंत्रों में कोयले की मांग में वृद्धि के कारण बिजली संयंत्रों को घरेलू कोयले की आपूर्ति में 20% की वृद्धि हुई थी। पूर्वी सिंहभूम जिले के बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में हुए चर्चित गोलीकांड में घायल युवक ने आज तड़के कोलकाता के एक अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उनकी मौत की खबर से बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने थाने के बाहर सड़क जाम कर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी तथा मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। और जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 आज राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश करते हुए बताया कि इसका उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ही सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। और मेरे सामने हंसती मुस्कुराती सी प्यारी सी हमारी सखी बैठी है
2: आरती श्रीवास्तव। तो सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: कैसी हो?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
1: लग रही हो?
2: जी
1: बिल्कुल। सावन का महीना लग गया है और वो जो चेहरे पर चमक आ जानी चाहिए इस मौसम में वो तुम्हारे चेहरे पर भी दिख रही है।
2: बिल्कुल। और जो शहर है वहाँ पे तो इतना पता नहीं चलता है, लेकिन अगर हम गांव वगैरह में जाएं तो वहाँ पे सावन के साथ में झूले जुड़े होते हैं, साथ में मेहंदी जुड़ी होती है, बहुत सारी चीजें श्रृंगार की जुड़ी होती है महिलाओं के।
1: हाँ, क्योंकि महानगरीय जो व्यवस्था है उसमें आदमी सुबह निकलता है और शाम को आता है, उसे शायद पता ही नहीं चल पाता कि प्रकृति उससे क्या कह रही है ना। लेकिन छोटे शहरों में, गांवों में, ढाणियों में, खलिहानों में, वहां इस बात का भरपूर आनंद उठाया जाता है कि भई श्रावण मास आ गया है या कोई नया महीना आ गया है और उस माह में क्या क्या किया जाना चाहिए। तो अब सावन की जब ऋतु आ गई है तो लोगों के चेहरों पर हंसी आ गई है। आपने जैसा कि कहा झूले झूलने के दिन आ गए हैं और मेहंदी तो वैसे कभी भी लगाई जा सकती है, लेकिन इस श्रावणी तीज पर खासतौर से जब मेहंदी लगाई जाती है और रक्षाबंधन का जब त्योहार आता है इस माह में, तो सोचिए कितना प्यारा समय होता है, वो उत्सव का समय कितना खास होता है।
2: बिल्कुल। ये जो सावन का महीना होता है ना, पूरा उत्सव से ही भरा होता है।
1: हाँ।
2: बढ़िया बढ़िया चीजें बनाई जाती हैं, खाए जाते हैं पकवान अच्छे से अच्छे, और साथ ही जो मन होता है ना एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि हर तरफ हरियाली होती है, पानी बरसने की वजह से हर छोटी छोटी जो जहाँ पे झाड़ियां जो एकदम सूख गई होती है वो भी एकदम हरी भरी हो जाती है, और साथ ही जो खासकर जो महिलाएं वगैरह है वो इसमें बहुत ज्यादा बिजी हो जाती है।
1: हाँ,
2: तरह तरह की उनके कार्यक्रम होते रहते हैं कि आज ऐसे हमें करना है, इस तरह से मनाना है।
1: और पता है इस मौसम में मन का रेगिस्तान भी हरा हो जाता है और दो प्रेमी दिल भी जवान हो जाते हैं।
2: जी बिल्कुल। और सावन के की खासियत यही है कि आपको हरा भरा कर देता है।
1: बिल्कुल। तो आज के विषय बता दें ताकि हम सावन का आनंद थोड़ा सा और उठा लें।
2: बिल्कुल।

0: आज हम लेके आए हैं विषय, आज हम बात करेंगे अफवाहों से रहें सावधान, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अफवाहों की वजह से
1: संबंध खराब हो जाते हैं
0: और जो शांतिपूर्ण माहौल होता है ना वो बिगड़ जाता है।
1: बिल्कुल, और संबंध भी खराब हो जाते हैं जब आप किसी की अफवाह उड़ाते हैं और आपको पता चलता है कि भाई आरती ने मेरे बारे में ये बात कह दी है और वो अफवाह है, तो मेरा तुमसे संबंध खराब होना लाजिमी है।
0: बिल्कुल,
1: है ना। तो ये सब चीजें भी होती है, इसलिए अफवाहों से हमेशा रहें। और कान की कच्चे कहावत है, उसका भरपूर प्रयोग करना चाहिए कि कान की कच्चे कभी ना हो। आपसे किसी ने कोई बात कही या आप तक कोई बात पहुंची तो उसके लिए आप उन लोगों से बात करें कि क्या ऐसा कुछ कहा गया, ऐसा कुछ बात हुई है जो इस तरह से माहौल को बदल रही
0: बिल्कुल
1: है।
0: उसकी आप जांचें से परखें। और साथ ही अगर बहुत बड़ी चीजें हैं, जैसे कि कोई कभी कभी होता है ना कि सोशल मीडिया पे हम कोई चीज मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं, तो ये सब करते समय हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए,
1: रखना पड़ता
0: क्योंकि ये जो चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं।
1: बिल्कुल।
0: और आज हम वैसे बात करेंगे मुहावरों के लिए, मुहावरों की दुनिया में आज हम बात करेंगे। एक से 21 होना,
1: अरे एक से 11 होना तो हमने सुना है,
0: ये अलग है।
1: एक से 21 होना और भी बड़ी बात है।
0: बिल्कुल।
1: तो चलिए इस पर ये हमारे श्रोता, हमारी सखी और सखा इस पर विचार भेजेंगे।
0: बिल्कुल, वो अपने विचार भेजें कि वो इस मुहावरे को किस तरह से समझते हैं,
1: देखते हैं।
0: बिल्कुल। और साथ ही वो किस तरह से इसको अपने जीवन में उतारते हैं, वो क्या समझते हैं इस चीज से, इस मुहावरे से। और साथ ही हम बात करेंगे हल्की फुल्की बातें के अंतर्गत बचपन की जो यादगार हमारी शरारत होती है। वैसे तो बचपन ही यादगार रहता है पूरा, लेकिन कुछ शरारतें ऐसी होती है ना जो बिल्कुल याद रह जाती है।
1: तो कई बार हमारे माता पिता भी बताते हैं कि पता है जब भी छोटी थी, ये जब छोटा था तो बचपन में ऐसे करता था, इसने ऐसे कर दिया, है ना। तो बच्चों की बहुत सारी शरारतें हमें याद रह जाती हैं।
0: बिल्कुल, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। अपने अपने आप शरारतें हमें बिल्कुल साझा करने में हिचकिचाइए नहीं, क्योंकि हम उसको सबके साथ में बातें करेंगे, हम भी अपनी शरारतें बताएंगे तो अच्छा लगता है ना एक दूसरे के बारे में जानना।
1: यहाँ आरती में एक बात कह देना चाहती हूँ श्रोताओं से, हमारी सखियों और सखाओं से, कि वो बचपन की यादगार शरारत पर बंद नहीं लिखा कि भी बचपन में शरारत करते हैं, ये नहीं। आपने क्या शरारत की आपको याद है, या आपके बच्चे क्या शरारत करते हैं,
0: बिल्कुल
1: ये आप लिख सकते हैं।
0: अपना अपना बचपन या अपने बच्चों का बचपन, आप किसी का भी, या अपने पोते पोतियों का बचपन,
1: या आपके पड़ोस के बच्चे हैं, या कोई आपके घर में बच्चा आया है उसकी कोई याद आपको कि वो बच्चा इतना शरारती था और अब देखिए वो बड़ा होकर इतना डिसेंट बन गया है।
0: जी बिल्कुल। और आज हम सखी विशेष के अंतर्गत बात करेंगे मल्लिका सदानी जी की, जो संस्थापक है मॉम्स कंपनी की, उनके बारे में बात करेंगे।
1: इनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब सावन
0: को एंजॉय आनंद उठाते हैं।
1: हाँ चलें करें।
0: बिल्कुल।

0: तो कितना प्यारा गीत, सावन तो आ गया है। और खैर, सावन का इंतजार हम सभी को रहता भी है। और जब मौसम की बात चल रही थी तो हमें लगा कि आरती का जो चेहरा है वो बिल्कुल गुलाबी हो गया था। सावन की फुहारों से बहुत ही खुश नजर आ रही थी। लेकिन हाँ, कभी कभी क्या होता है आरती कि हम प्रकृति से बहुत खुश होते हैं, प्रकृति के माहौल में रमे होते हैं, लेकिन अचानक कई बार हमें लगता है कि कुछ ऐसी बातें जिंदगी में हमने सुन ली हैं या कुछ ऐसी बातों से घिर गए हैं जो सच नहीं होती हैं, झूठ के करीब होती हैं, जिन्हें हम अफवाह का नाम भी दे सकते हैं
1: जी।
0: तो और हम दुखी भी हो जाते हैं,
1: बिल्कुल,
0: कि अरे हम किस दुनिया में फंस गए, या ये क्या हम सुन रहे हैं अपने बारे में या किसी और के बारे में,
1: बिल्कुल,
0: तो हमारा मन थोड़ा सा उद्विलित हो जाता है।
1: बिल्कुल। और वैसे भी ये जो युग है वो संचार का युग है, और मोबाइल फोन हो या सोशल मीडिया हो, और इससे कोई भी जानकारी जो है वो छुपी नहीं रहती है, और पल भर में कोई भी जानकारी, वो चाहे वो सच हो या झूठ हो, पूरी दुनिया में फैल जाती है। और लेकिन इस आधुनिक सुविधा के साथ में एक बड़ी समस्या ये भी है कि हम जो अफवाहें, उससे बच नहीं पाते हैं। हमें जितनी सुविधा मिलती है फोन के जरिए, हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, पूरी दुनिया तक पहुंच बना सकते हैं, लेकिन वो पहुंच कभी कभी जो है ना, हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान वाली भी बन जाती है, क्योंकि उससे अफवाहें फैलने का डर रहता है, और अफवाहें जब फैलती हैं तो बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं, कुछ कभी कभी दंगे भड़क जाते हैं या उस तरीके की चीजें होती हैं,
0: बिल्कुल सही कहा,
1: ऐसे हादसे हो जाते हैं
0: कि बिना सत्यता के जो फैलाई गई झूठी या भ्रामक जो जानकारियां हैं वो केवल न केवल लोगों को भ्रमित करती है, बल्कि कई बार हमारे मन में भय, तनाव, हिंसा और अविश्वास का कारण भी बन जाती है। और अफवाहें जो है अक्सर जो है आधी अधूरी जानकारी कहें या झूठे संदेश हैं या संपादित तस्वीरें हैं या पुराने वीडियो या मनगढ़ंत कहानियों के रूप में फैलाई जाती है।
1: बिल्कुल। और इस तरह से उनको दिखाया जाता है या बताया जाता है कि वो पहली नजर में हमें एकदम सच लगती हैं, और लोग बिना जांच पड़ताल किए इन्हें आगे भेज देते हैं, और देखते ही देखते एक झूठ लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। और अफवाहों का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो समाज की एकता और आपसी विश्वास को भी कमजोर करती हैं।
0: बिल्कुल। कई बार किसी व्यक्ति की बात करें, समुदाय की या संस्था के बारे में जब गलत जानकारी फैलाकर उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई जाती है, तो स्वास्थ्य, प्राकृतिक आपदा, कानून व्यवस्था का या आर्थिक मामलों से जुड़ी अफवाहें लोगों में घबराहट और गलत निर्णयों को जन्म भी दे सकती हैं। आरती,
1: बिल्कुल। और इस डिजिटल युग में देश के हर नागरिक की अपनी खुद की एक जिम्मेदारी है कि वो एक जागरूक और जिम्मेदार इंटरनेट उपयोगकर्ता बने। कोई भी संदेश, वीडियो या समाचार मिलने पर उसे तुरंत आगे भेजने के बजाय उसके स्रोत की विश्वसनीयता को अच्छी तरीके से आप पहले जांच लें, परख लें, उसके बाद ही उसको आप आगे भेजें।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि अगर किसी समाचार की पुष्टि विश्वसनीय समाचार माध्यमों से या संबंधित सरकारी विभागों से नहीं होती है तो उसे आगे नहीं भेजना है। हम क्या करते हैं, तुरंत आगे भेज देते हैं। हमें लगता है पता नहीं हम क्या भेजकर क्या संदेश दे देंगे।

0: क्या क्रांति ऐसी बना देंगे, लेकिन सनसनी फैलाने वाले जो शीर्षक हैं, भावनात्मक संदेश हैं, हमें इनसे सावधान रहना चाहिए। और ये बहुत जरूरी है कि आधिकारिक जो वेबसाइट्स हैं और विश्वसनीय समाचार स्रोत हैं, उनसे हम पुष्टि करें कि भाई ये जो न्यूज है, ये जो समाचार है, ये जो संदेश हमें भेजा गया है, वो सही है भी या नहीं।
1: बिल्कुल, और क्योंकि ये भ्रामक जो खबरें होती हैं उससे समाज में डर फैलता है, अराजकता, और साथ ही कई बार कानून व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाता है कि किस तरह से हम उस जगह को शांति उसको बना के रखें। तो जरूरी है कि हम इस तरीके की अफवाहों से बचें और फैलाने का काम ना करें उनको।
0: हाँ, आपको पता है इस तरह की अफवाहों से कई बार नफरत का माहौल पैदा हो जाता है। हम इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं और हमें पसंद भी है कि हम एक अच्छा माहौल अपने आसपास बना के रखें, लेकिन इस तरह की अफवाहों से कई बार नफरत पैदा हो जाती है लोगों के मनों में। इससे हमें बहुत बचना चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी सी सावधानी जो है समाज को बहुत सारी परेशानियों से बचा सकती है। इसलिए न तो खुद अफवाहों पर विश्वास करें और न ही इन्हें फैलाने का हम खुद माध्यम बने। और जो भ्रामक खबरें हमें मिलती हैं उससे समाज में डर और अराजकता बिल्कुल नहीं फैलानी है। कई बार ऐसी बातें कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ा संकट भी खड़ा कर देती है।
1: बिल्कुल, और हमारे जो साथी हैं वो भी बहुत कुछ लिख रहे हैं इसके बारे में। तो हम एक हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि सत्य के विपरीत असत्य में गिने जाने वाले अफवाहें फैलती नहीं है, अभी तो ऐसा लगता है कि वो फैलाई जा रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी अफवाह के मूल तक पहुंचने की आवश्यकता पड़ती है और उनके स्वरूप के तह तक जानने के लिए हर एक को अपनी बौद्धिक क्षमता और विवेक का प्रयोग करना चाहिए और उसके अनुसार ही आचरण करना अपेक्षित है और ऐसी अफवाहों से बचना ही श्रेयकर है।
0: बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि किसी भी खबर या संदेश को आगे भेजने से पहले उनके विश्वसनीय स्रोत की जांच जरूर करें। सकारात्मक दृष्टिकोण अफवाहें अक्सर समाज में अशांति और तनाव पैदा कर देती हैं। इनसे दूर रहकर मानसिक शांति बनी रह सकती है। एक जागरूक नागरिक के रूप में बिना सोचे समझे किसी भी वीडियो, फोटो या टेक्स्ट को शेयर करने से हमें बचना चाहिए। गलत और भ्रामक जानकारी फैलाना कानूनन अपराध है, जिसके लिए जेल या जुर्माना हो सकता है।
1: बिल्कुल, एक हमारे साथी जो कहते हैं कि सावधान रहिए और किसी भी संदेश या खबर को आगे भेजने से पहले उसकी पुष्टि जरूर करें, सरकारी वेबसाइट्स या भरोसेमंद समाचार चैनल की जानकारी की सत्यता परखें और बिना सोचे समझे किसी भी बात पर गुस्सा ना करें या डरे नहीं। जिस खबर के सच होने का पक्का सबूत हो और ना हो उसको आगे ना भेजें।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक श्रोता लिखते हैं कि सावधान रहना अच्छी बात है, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा सावधान रहने लगते हैं तो स्थिति जटिल हो जाती है। ज्यादा सावधानी रखना आपको परेशान भी करता है और आपको चिंता भी देता है। लेकिन हाँ, अफवाहों से रहें सावधान भाई। सत्य के विपरीत असत्य में गिने जाने वाली अफवाहें फैलती नहीं, अपितु ऐसा लगता है कि वो फैलाई जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी अफवाह के मूल तक पहुंचने की जरूरत पड़ती है और उनके स्वरूप के तह तक जानने के लिए हर एक को अपने बौद्धिक क्षमता के विकास का भी ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें हम तक पहुंचाई हैं।
1: बिल्कुल, और हमारे साथी जो कहते हैं कि अपने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और जो अफवाहें हैं वो अक्सर समाज में अशांति और तनाव पैदा करती हैं और एक जागरूक नागरिक के रूप में बिना सोचे समझे किसी भी वीडियो, फोटो या टेक्स्ट को शेयर करने से बचना चाहिए और गलत और भ्रामक जानकारी फैलाना कानून अपराध है, जिसके लिए जेल भी हो सकती है और आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
0: बिल्कुल सही कहा है। तो हमारे श्रोताओं ने अपनी राय हम तक पहुंचाई और वाकई अफवाहें फैलाना बहुत ही बड़ा एक अपराध है जो समाज में गलत माहौल पैदा कर देता है। चलिए, हम तो गीत संगीत के जरिए एक अच्छा माहौल पैदा करते हैं। हाँ, इस कार्यक्रम में
1: गीत सुनते हैं।

0: आरती, आज तुम पूरी तरह से सावन में भिगोने वाली हो। सावन की जो बरसात है वो स्टूडियो में भी होने लग रही है ना
1: जी। और अब हम बात करते हैं अपने अगले विषय की, जो है सखी विशेष, जिसके अंतर्गत हम किसी एक महिला की बात करते हैं जिन्होंने अपने बलबूते पे अपनी एक पहचान बनाई है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मल्लिका सदानी जी की।
0: तो एक बात मैं कहना चाहती हूँ, हम किसी एक महिला की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन इस एक महिला के बहाने हम उन हजारों महिलाओं को सैल्यूट भी कर लेते हैं जो इस तरह से अपने आप को हिम्मत के साथ आगे बढ़ा रही हैं।
1: बिल्कुल। और आज हम एक ऐसी ही महिला के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने बेटी को स्किन की बीमारी से बचाने के लिए, यानी अपनी बेटी को त्वचा की बीमारी से बचाने के लिए एक कंपनी की शुरुआत की, और आज वो कंपनी करोड़ों की बन गई है। इन्होंने ये बात सच कर दिखाई है कि जब बच्चों के ऊपर कुछ परेशानी आती है तो माँ बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी लड़कर रास्ता निकाल लेती है।
0: क्या बात है, बहुत खूब बात कही आपने। और माँ तो हर तकलीफ की दवा है, माँ से बड़ा कौन हो सकता है। और जब हम बात कर रहे हैं मिडिल क्लास परिवार में जन्मी मल्लिका सदानी की, एक सैन्य परिवार में थी वो, पली बड़ी। मल्लिका का जो जीवन था आरती, अनुशासन से बंधा हुआ था, और उनके पिता जो एक मेजर जनरल थे, उन्होंने उनमें एकाग्रता और दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करने की शक्ति का संचार किया, और गृहिणी माँ ने शिक्षा को सर्वोपरि माना भी
1: जी। और उन्होंने राजस्थान के कोटा से 12वीं की, और उसके बाद फिर पुणे के कॉलेज से इंजीनियरिंग पूरी की। इसके बाद वो एमबीए करने मुंबई चली गई, और एमबीए करने के बाद एक जाने माने बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर उनकी नौकरी लग गई। उसके बाद 2008 में उनकी शादी मोहित सदानी से हुई, और शादी के बाद वो पति के साथ लंदन शिफ्ट हो गई।
0: हाँ, लेकिन जब उनकी बेटी एक साल की थी तब साल 2012 में वो इंडिया वापस भी आ गई। भारत पहुंचकर उन्होंने ध्यान दिया कि उनकी बेटी को अति संवेदनशील त्वचा होने की वजह से समस्याएं होने लगी हैं, और इसके बाद कुछ समय तक उन्होंने अपनी बेटी के लिए लंदन से ही उत्पाद मंगवाए, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था
1: जी। और क्योंकि लंदन से आने वाले को दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद लेना एक बड़ी चुनौती से कम नहीं था। जब उनकी बेटी जो थी, उसका छोटी बेटी का जन्म हुआ, तब उसे सांस की बीमारी होने के कारण कई उत्पादों का वो इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी।
0: हाँ।
1: और अपनी बेटी के लिए उन्होंने कई सारे उत्पादों को परख कर देखा जिनमें खुशबू ना आती हो, जिनकी खुशबू उनकी बेटी को के उनकी बीमारी को और ना बढ़ाए।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहा। हाँ, हाँ।
1: जी।
0: और हालांकि उन्हें ऐसे उत्पाद नहीं मिले, लेकिन उन्होंने खुद नए उत्पाद बनाने का निर्णय ले लिया ऐसी स्थिति में, और ऐसे उत्पाद जिनमें हानिकारक रसायन नहीं हो और जो बच्चों के लिए एकदम सुरक्षित हो। इसके लिए उन्होंने लगातार शोध करना शुरू किया, साथ ही इस शोध कार्य के लिए वो दुनिया भर की कई वैज्ञानिकों से भी मिली।
1: बिल्कुल। और लगातार शोध और वैज्ञानिकों के सुझाव को प्राप्त करने में उन्हें 2 साल का समय लग गया, और साल 2016 में उन्होंने अपने पति के साथ स्किन केयर ब्रांड

0: की शुरुआत की, जिसका नाम उन्होंने रखा था अमीशी कंज्यूमर टेक्नोलॉजी, लेकिन 2017 में इसका नाम बदलकर द मॉम्स कंपनी कर दिया गया। और उनकी कंपनी के द्वारा बच्चों की स्किन को ध्यान में रखकर ऐसे उत्पाद बनाए जाते हैं जिनमें हानिकारक रसायन ना हो,
1: जो पूरी तरह से प्राकृतिक हो ना?
0: जी बिल्कुल, और ताकि बच्चों की जो स्किन है, जो उनकी त्वचा है, जो बहुत ज्यादा एकदम मासूम त्वचा होती है, वो प्रभावित ना हो। मल्लिका सदानी को उनके नवाचार और नेतृत्व के लिए अनेक सम्मान मिले, जिनमें प्रमुख है टाइम्स शी अनलिमिटेड एंटरप्रेन्योर अवार्ड, बिजनेस वर्ल्ड 40 अंडर 40 वुमेन एंटरप्रेन्योर, और साथ ही मॉम्स कंपनी को फोर्ब्स इंडिया बेस्ट D2C ब्रांड सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए।
1: क्या बात है। और महिला मल्लिका सदानी का जो बैंकर से एक सफल उद्यमी का सफर था, वो आसान नहीं था आरती, इतना मुश्किल काम था, और पहले से जो ब्रांड्स थे उनके बीच अपनी पहचान बनाने जैसी कई चुनौतियों का उन्होंने सामना किया, लेकिन इन सबके बाद भी सफल महिला उद्यमी का खिताब उनके नाम हुआ और आज उनका नाम देश की सफल महिलाओं में लिया जाता है और आज वो महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है।
0: बिल्कुल, अपने बच्चों के लिए जो उन्होंने शुरुआत करी थी आज वो बहुत ज्यादा फल फूल रही है।
1: सोचिए कितने बच्चों को इससे लाभ हुआ है ना, कितनी माताएं अपने बच्चों को उस बीमारी से बचा पाएंगी जिस बीमारी से इन्होंने अपनी बेटी के लिए इतना बड़ा शोध किया और इतनी बड़ी सफल उद्यमी बन गई। चलिए गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल।
2: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
3: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
2: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
3: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
2: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: तो आरती तुम चौंक गई ना?
0: क्योंकि गीत गीत गीत गीत आप एकदम से आपने मुझे चौंका दिया।
1: हाँ, लेकिन ये महत्वपूर्ण संदेश था जिसे हमें बजाना बहुत जरूरी था और हमने सोचा पहले इसे बजा लेते और अब सुनते हैं गीत।
0: जी।

0: तो इस अंतराल के बाद हमारी सभी सखियों और सखाओं का एक बार फिर से स्वागत है।
1: जी, और अब हम बात करें थोड़ी बचपन की।
0: अरे, बचपन की बातें तो हम हमेशा ही करते हैं।
1: वो बचपन का जमाना जब हम शरारतें किया करते थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सही कहा आपने। और आज तो आपने एक इतना खास विषय हमारे श्रोताओं के लिए चुना है कि हल्की फुल्की बातें भी हो जाएंगी और बचपन की यादें भी ताजा हो जाएंगी, है ना।
1: और हमारे साथी भी तो कितने अपने बचपन की जो किस्से हैं वो हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, साझा करें उन्होंने बहुत
0: तो
1: सारे।
0: आपने उनसे अनुरोध किया था ना कि भाई आप इस पर निबंध नहीं लिखेंगे बल्कि ये बताएंगे कि बचपन में हम क्या शरारतें किया करते थे या हमारे बच्चों ने क्या क्या शरारतें की। तो उन्होंने लिखकर आपको दिया है, पढ़ते हैं हम क्या हमारे श्रोता चाहते हैं, आज क्या लिखा है उन्होंने हमारे लिए।
1: तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि बचपन की यादगार शरारत। भाई, बचपन तो हर गम से बेगाना होता है और हम उस बेगानेपन में स्वयं को देख भी कहां पाते हैं। और वैसे भी कोई भी अभिनेता या और अपने अभिनय को अभिनय करते समय देख भी पाता है भला। अरे, उस काल में ही नहीं अपितु हर काल में अभिनेता के अभिनय को दूसरे ही देखते हैं। इस दृष्टिकोण से हम लोग जब अपने बाल बच्चों के अभिनय को देखते हैं तो उसमें स्वयं को ढूंढते हैं। ये तो सही कह रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि अब आप सबको अपने बचपन की दिलचस्प और मजेदार यादगार किस्सा बताता हूँ। हुआ यूं कि मैं स्कूल जाने से बहुत कतराता था। बड़ी मुश्किल से माँ हाथ पकड़कर स्कूल छोड़ भी आती तो स्कूल में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। जल्दी से घंटी बजे और छुट्टी हो, बस इस बात का इंतजार रहता था। एक दिन तो हद ही हो गई, समय जैसे ठहर ही गया, घंटी बजे ना छुट्टी हो। तो मेरे मन में एक विचार आया कि मैं छुट्टी होने से पहले ही बस्ता लेकर चुपके चुपके कक्षा से बाहर निकलता हूँ और स्कूल की घंटी और लकड़ी की हथौड़ी जो जमीन पर पड़ी थी उठाई और अपने स्कूल के बैग में रख के घर ले आया और अपने घर पहुंचकर घंटी निकालकर बजाने लगा। मेरी माँ ने ये सब देखा तो हैरान होकर पूछा, ये सब क्या है, ये स्कूल की घंटी घर क्यों ले आए। मैंने बताया कि स्कूल की घंटी मतलब छुट्टी हो ही नहीं रही थी, स्कूल वाले इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, ये बेकार जमीन पर पड़ी थी तो मैं उसे उठाकर अपने घर ले आया हूँ। ये सुनते ही माँ ने घंटी की तरह मुझे भी बजाना शुरू कर दिया और घंटी को वापिस स्कूल छोड़कर माँ मेरे द्वारा की गई शरारत के लिए अध्यापकों से क्षमा मांगकर घर को लौट आई।
1: भाई, बहुत बढ़िया शरारत है। तो और हमारे साथी जो लिखते हैं कि बचपन में तो हमने काफी शरारतें की हैं, किस किस के बारे में बताऊं। पर एक बार की बात है, मेरी मम्मी हम बच्चों को दादाजी के पास छोड़कर दादी माँ और बुआ के साथ मूवी देखने चली गई और हम लोगों को बचपन से ही फिल्म देखने का बहुत क्रेज रहा है। बस क्या था, हम लोग दादाजी को परेशान करना हमने शुरू कर दिया। और तो और, मैंने अपनी बुआ का एक दुपट्टा लिया और अपने गले में बांध कर दादाजी को डराने लगी कि अगर मुझे फिल्म नहीं ले जाएंगे तो मैं उससे अपने आप को बांध लूंगी। हालांकि दुपट्टा बहुत ढीला था, ढीला ही बांधता, पर दादाजी तो डर गए। फिर उन्होंने प्रॉमिस किया कि कल मैं तुम लोगों को फिल्म दिखाने लेकर जाऊंगा। फिर जब मम्मी आई तो मेरे दादाजी बोले, लो संभालो अपने बदमाश बच्चों को। लेकिन दूसरे दिन दादाजी हम लोगों को फिल्म दिखाने ले गए।
0: और वो एक श्रोता लिखती है कि साल 1962 के आसपास की बात

0: सिला चलता रहा। कुछ दिनों के बाद हमारी शरारत की शिकायत पिताजी तक पहुंच गई। अच्छा। उन्होंने हम सभी बच्चों को साथ बुलाकर कड़ी डांट के साथ जो धुलाई की वो आज भी याद है। भाई पहले तो माता पिता धुलाई कर दिया
1: बिल्कुल आराम से
0: और बच्चे भी खा लिया करते थे। हमने भी बहुत
1: ये मार खाई
0: धुलाई हुई है हमारी भी। लेकिन मुझे याद है कि थोड़े समय बाद हम फिर से बच्चे बन जाते थे। कभी भी नाराज नहीं हुए, ना हमें माता पिता पर कभी गुस्सा आया।
1: बिल्कुल। अब एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बचपन की यादगार शरारत मैं भी बता ही देता हूँ। बचपन में मैं और मेरे घर के पास एक चाचा हम उम्र हुआ करते थे। मैंने अपने छोटे भाई के साथ प्लान बनाया कि आज रात में जब चाचा सो जाएंगे तो उनकी चारपाई के पास भूत बनकर जाएंगे और उनको डराएंगे। गर्मी के दिनों में हम अक्सर घर के बाहर चारपाई डालकर सोया करते थे। रात को मैंने अपने छोटे भाई से कहा कि मैं अपने चेहरे पर लाइट जलाकर आऊंगा, तुम उनकी चारपाई हिला देना, नीचे से लगेगा कि कोई भूत आ गया। लेकिन जैसे ही मैं दूर से सिर्फ अपने चेहरे पर लाइट जलाकर चाचा की चारपाई के पास जाने लगा तो मेरे छोटे भाई ने कोई हरकत नहीं की, वो चुपचाप बैठा रहा। मैं जब पास पहुंचा तो उससे पूछा कि तुमने चारपाई को हिलाया क्यों नहीं, तो छोटे भाई ने कहा कि आपको देखकर मैं खुद ही बहुत डर गया था, लगा कि सच में सामने भूत आ गया है। उस समय उसका डरा और सहमा हुआ चेहरा देखने लायक था। उस समय मुझे बहुत तेज हंसी आ गई और सच में बचपन की घटना मुझे अभी तक याद है।
0: हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, कई बार हम कोई ऐसा स्वांग रच लेते हैं लेकिन हमारे छोटे भाई बहन जो होते हैं डर जाते हैं ना। हाँ एक लिखते हैं हमारे श्रोता कि हल्की फुल्की बातें बचपन की यादगार बात ये है कि मैंने एक शर्त की थी बचपन में जो बाद में मुझे और मेरे माता पिता दोनों को ही तकलीफ दे गई। एक जो मेरी गलती नहीं थी, एक जिसमें मेरी गलती थी, तो मैं आपको वो बताती हूँ जिसमें मेरी गलती ये थी, जिसमें मेरी गलती नहीं थी, वही दोनों बातें बता रही है। उसमें ये हुआ कि मेरे पेट में अचानक से सीटी बजते बजते सीटी घुसे पेट के अंदर, लेकिन मतलब इस तरह का कोई उनको दर्द हुआ होगा, लेकिन भगवान की कृपा थी कि मैं बच गई। और एक जिसमें मेरी गलती थी कि मेरे ड्रेस में कुछ मोती लगे हुए थे, तो एक दिन हमें कहीं जाना था, ड्रेस पहनी हुई थी, मम्मी तैयार हो रही थी और मैंने क्या किया कि ड्रेस की मोती को निकालकर नाक में घुसा लिया और उसके कारण कई प्रकार के मतलब दिक्कत हो गई। नाक के अंदर जाकर वो फंस गया, मोती अटक गया कहीं और नाक के द्वारा हमें पता चला कि सब कुछ ठीक तो है, लेकिन उस समय मेरे माता पिता बहुत डर गए और आज भी मुझे ये बात याद आती है। बच्चे इस तरह का करते थे, पहले पेंसिल घुसा लेते थे, बर्तन नाक के अंदर डाल लेते थे, ना सिक्का भी कई बार गिटक जाते थे बच्चे, 1 रुपए का 50 पैसे का सिक्का या चवन्नी जिसे हम 25 पैसे कहते थे ना, कई बच्चे निगल गए। ऐसी स्थितियां भी कई बार स्कूल्स में टीचर्स को फेस करनी पड़ती है।
1: तो ये कभी कभी शरारतें बहुत भारी पड़ जाती
0: हैं। हाँ शरारतें भी और कई बार नासमझी में भी बच्चा कर देता है और उसका भुगतान माता पिता को करना पड़ता है।
1: एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि बचपन की वो बात याद आती है जब हम किसी के बागान और अहाते में फूल फल तोड़ लेते थे। सरकारी जो क्वार्टर होते थे उसमें बहुत सारे बगीचे में फूल लगे होते थे। हम लोग किसी के घर जन्मदिन में गए, सब लोग भीतर में कुछ तैयारी चल कर रहे थे और हम लोगों ने भर भर के फूल तोड़ लिए। अब उन फूलों को कैसे लेकर जाए, उसे हम लोगों ने क्यारी में ही छुपा दिया। चलने के समय जब हमारे जो गार्जियन जो साथ में थे तो हम उसको नहीं ले पाए। दूसरे दिन बाबूजी जब शाम के टाइम में ऑफिस से लौटे तो उन्होंने शिकायत की, बच्चों ने फलाने जी के यहाँ से बहुत फूल और फल तोड़ के बर्बाद किए हैं। मार तो नहीं पड़ी बट डांट बहुत पड़ी और बाबूजी ने कहा कि तुम लोग कहीं भी ले जाने लायक नहीं हो। उसके बाद से हम कहीं जाते भी कोई जान पहचान फंक्शन में तो एक या दो भाई बहन नहीं जाते, मतलब सब लोग नहीं जाते थे क्योंकि सारे भाई बहन जब इकट्ठा हो जाते हैं ना तो शरारतें
0: तांडव हो जाता है एक तरह से सभी बच्चों का। तो और माता पिता वाकई कहते थे कि भी नाक कटा दी तुमने ना,
1: यही करते हैं ना कि सबको मत लेके जाओ, एक सिर्फ
0: लेके जाओ और उस घर में जो पीछे वाले बच्चे रोआ करते थे ना, वो भी दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता है आरती
1: कि हमें नहीं लेके
0: हमें नहीं लेके गए हैं। और कई बच्चे तो देखा सड़क पर ही लेट जाते थे जिद के कारण, ऐसे बच्चे भी देखे हैं जहाँ माता पिता बड़े शर्मिंदा होते थे कि भी बच्चे क्या क्या हरकत कर लेते हैं, लेकिन ये बचपन है। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी बुआ का घर मेरे घर के ही पास था, उनका बेटा मेरे बराबर ही था, हमारे माता पिता ने हम दोनों को एक ही स्कूल में नाम लिखा दिया। हम दोनों का ही पढ़ने में मन नहीं लगता था, क्लास की खिड़की बड़ी और सीधी थोड़ा नीची थी, जब टीचर पढ़ा रही होती थी ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह करके तब हम दोनों उस खिड़की से बाहर निकल जाते थे, फिर इधर उधर घूमते थे, पकड़े जाने पर डांट खाते थे। वैसे भी हम दोनों अक्सर ऐसे ही बाहर बिना बताए निकल कर घूमा करते और फिर बहुत डांट खाया करते थे। लेकिन अब आपको लगता होगा ना कि वो शरारत आपको महंगी भी पड़ गई होगी, आपने पढ़ाई में ध्यान
1: कभी कभी डांट भी पड़ी होगी, कभी कभी मार भी
0: पड़ी होगी
1: जी। अच्छा मंदाकिनी जी, हम लोगों ने बचपन की बातें बहुत की, एक गीत सुने,
0: चलिए सुन लेते हैं।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय।
3: तो हमारे और श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती?
4: बहुत कुछ लिख रहे हैं। एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि एक पड़ोसी दादाजी के जी घर के बाहर ठेला गाड़ी पर रात को सोते थे। देर रात हम मोहल्ले के बच्चे जो होते थे उनका ठेला गाड़ी धकेल कर दूर छोड़कर आ जाते थे और सुबह नींद खुलती थी तो दादाजी ठेला गाड़ी वापस धकेल कर घर पर लाते और हमें बहुत ज्यादा बोलते थे।
3: बच्चे मन के सच्चे है ना, यूं ही नहीं कहा गया। बच्चे इतनी शरारत करने के बाद, जब भी कल परसों एक छोटी सी बच्ची से मिली, वो थोड़ी देर पहले तो बहुत तेज रोती भी आई और जस्ट 5 मिनट बाद वो उतनी ही तेजी

0: मस्ती भी आई। तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि देखिए बच्चे वाकई अद्भुत होते हैं, और तभी कहा गया है कि बच्चे मन के सच्चे, उन्हें पता ही नहीं कि अभी मैं पल पहले क्या कर रही थी 2 मिनट पहले और अब मैं किस रूप में आई हूँ। एक श्रोता लिखती है कि मुझे आज भी याद है, मम्मी जब भी बाहर जाती थी कहीं तो हमें जाने को बोलती थी, लेकिन हम सभी भाई बहन उनके साथ नहीं जाते थे। ऐसा इसलिए कि हम अकेले घर पर रहकर सभी अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ घर घर खेलते थे। लेकिन एक दिन खेल खेल में हमारे पड़ोस के एक बच्चे को मेरे बड़े भैया से आंख में कैंची लग गई। माँ तो घर में थी नहीं, अड़ोस पड़ोस के सभी लोग उन्हें हॉस्पिटल ले गए। समय रहते इलाज हुआ और आंख बच गई। माँ घर आई और सुना हम सभी भाई बहनों की समूह में कुटाई हुई, लेकिन जब पापा आए तो मेरा भाई जिसकी कैंची लगी थी उसकी एक्स्ट्रा कुटाई हुई। ये बात भी सही है, आज जब ये बातें याद आती है तो उस बच्चे को कैंची लगने वाली बात से दिल धक से रह जाता है।
1: जी बस बहुत ही ज्यादा कभी कभी खतरनाक हो जाती है।
0: हाँ, ये बात तो आरती हमारे साथ भी होती थी कि जब हम खेलते थे और गिर के आते थे तो हमारी माँ 2 थप्पड़ और लगाती थी, कितना मना किया था तुम्हें, फिर भी तुम कहना नहीं मानती।
1: बिल्कुल,
0: तो ये सब चीजें बचपन की हैं। और क्या लिखते हैं श्रोता?
1: एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि 2 या 3 में पढ़ रहा था, गाँव के खेतों की पगडंडियों से स्कूल का रास्ता था और बड़े भाई साहब के साथ स्कूल जाते थे। माँ ने बताया कि एक बार स्कूल से घर आया तो मेरे दाहिने पैर का नाखून उखड़ा हुआ था और बहते खून को देखकर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो तब मैंने अपने तोतले अंदाज में कहा भैया कहे दौड़ तो दौड़ा और गिर गया।
0: बिल्कुल, बचपन में तो गिरना और उठना यही है। और एक श्रोता लिखते हैं, उन्होंने लिखा है कि बचपन के दिन भी क्या दिन थे, न कोई फिक्र थी ना जिम्मेदारी थी, बस हर वक्त कोई न कोई नई शरारत सूझती रहती थी। आज बचपन की उन्हीं खट्टी मीठी यादों की गलियों में फिर से घूम आते हैं। घंटी बजाओ और भाग जाओ, डिंग डोंग डिच, ये हम सबका सबसे पसंदीदा खेल हुआ करता था। दोपहर के समय जब पूरा मोहल्ला सो रहा होता था तब दबे पांव किसी के घर जाना, जोर से घंटी बजा देना और फिर सांस रोककर ऐसे भागना जैसे पीछे पुलिस पड़ी हो। छुपकर मकान मालिक का गुस्सा देखना अलग ही रोमांच देता था और नकली भूत का डर जो था डराना, कंबल या सफेद चादर उड़कर छोटे भाई बहनों को डराना, दोस्तों को डराना, कभी कभी खुद ही उस माहौल से डरकर मम्मी के पीछे छुप जाना, और स्कूल में चौक और डस्टर की चोरी, क्लास खत्म होते ही ब्लैक बोर्ड साफ करने वाला डस्टर छुपा देना या रंग बिरंग चौक के जो है जेब में भर लेना, तो लगता है जैसे बहुत बड़ा जो है खजाना हमारे हाथ में लग गया हो। तो ये बचपन की यादें इन्होंने साझा की है।
1: बिल्कुल, अब हम बचपन की यादों से बाहर निकले, थोड़ा
0: निकलना पड़ेगा और हमें मुहावरों की दुनिया में जाना पड़ेगा।
1: बिल्कुल, क्योंकि हमने आज का मुहावरा रखा था 1 से 21 होना, अब 1 से 11 होना तो हमने बहुत सुना है।
0: बिल्कुल।
1: अब हम लेकर आए 1 से 21 होना।
0: हाँ,
1: तो यानी कि हमने उन्नति करी ना।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं,
1: ये उन्नति तो है। 1 से 21 होना यानी कि उन्नति करना।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है?
1: हमारे श्रोता भी बहुत कुछ लिख रहे हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि 1 से 21 होना अर्थ है बढ़ना, उन्नति करना या फलना फूलना, बहुत अधिक प्रगति करना या संख्या लाभ में वृद्धि करना। आम दैनिक जीवन में इसका उपयोग, इसे आशीर्वाद के रूप में, तरक्की के रूप में करते हैं। और जैसे कि तुम पर कृपा बनी रहे, 1 से 21 हो, जब से उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया है 1 से 21 हो गया है उनका व्यापार, तो यानी कि उन्नति करते जाने को कहते हैं 1 से 21 हो जाना।
0: हाँ, बहुत अच्छा एक मुहावरा आप लेकर आई है हमारे श्रोताओं के लिए। अक्सर क्या होता है 1 और 1 11 का तो हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन 1 21 होने वाली जो बात है, 1 से 21 होना वाला, ये जो बहुत कम प्रयोग में आता है लेकिन इसका जो अर्थ है वो उतना ही गहरा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हर मुहावरे का उपयोग, इस खास मुहावरे का उपयोग तब किया जाता है जब 2 चीजों में मुकाबला हो और एक चीज दूसरी चीज से हर महीने में श्रेष्ठ हो, हर मायने में श्रेष्ठ हो, तब इस चीज को दर्शाने के लिए इस मुहावरे का उपयोग किया जाता है। और हम सबकी जिंदगी में कई बार होता है, लेकिन मेरा कहना है कि इस मुहावरे का उपयोग हमें करना चाहिए जब एक दूसरे के बीच कभी कोई तुलना नहीं करनी हो, बल्कि उसे बढ़कर ही कहना हो, वही कि जब उन्नति करनी हो तब इसका प्रयोग किया जाता है।
1: बिल्कुल, एक हमारे साथी जो कहते हैं कि 1 से 21 होना, भाई ये भी कोई मुहावरा है? हाँ। और अगर है भी तो पहली बार सुन रहे हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ 1 और 1 11 या फिर 9 2 11 जैसे मुहावरे चलते हैं यहाँ। और 1 और 1 11 का तात्पर्य संघ शक्ति से ही है, क्योंकि मतलब कि शक्ति में, यानी कि 1 और 1 मिलता है तो 11 बन जाते हैं, तो वो शक्ति बन जाती है। तो 1 से 21 होना भी आप नया जो मुहावरा है आप सुन लीजिए, नया नहीं है ये। हाँ, पुराना ही मुहावरा है।
0: हाँ,
1: लेकिन हमने सुना कम है।
0: हाँ,
1: ये प्रयोग कम होता है,
0: कम प्रयोग में आता है, इसलिए हमें थोड़ा आश्चर्य हो रहा है कि भी 1 और 1 11 होना तो हमने सुना है, या हम 9 2 11 भी जानते हैं, लेकिन ये 21 होना क्या है? 1 से 21 होना
1: जैसे
0: तो मतलब
1: एक है, 1 से सीधे हम पहुंच गए, यानी कि उन्नति कर ली हमने।
0: बिल्कुल सही बात है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि 1 का 21 हो जाना यानी संख्या स्थिति में बड़ा फायदा होना, उन्नति करना, फलना फूलना या किसी स्थिति में अचानक बहुत सुधार होना, व्यापार में

0: सही फैसला लेने से मोहन का कारोबार कुछ ही दिनों में 1 से 21 हो गया। इन्होंने उसका प्रयोग करके भी बता दिया है, जैसे हम अपनी कॉपी में लिखा करते थे वैसे ही इन्होंने भी बताया है कि ये ऐसे प्रयोग में आता है मुहावरा।
1: एक और साथी जो इसी तरह से बात बता रहे हैं कि इसका मतलब है आशीर्वाद रूप से कहा जाता है इसे, और आप अपने जीवन में खूब प्रगति करें, खूब आगे बढ़ें और एक एक मतलब करके आप 21 गुना ज्यादा प्रगति करें, यानी कि और ज्यादा बढ़ोतरी करें।
0: हाँ, वही एक श्रोता लिखते हैं कि मुहावरा 1 से 21 होना का अर्थ है बहुत अधिक लाभ होना, तरक्की करना या गिनती में बढ़ जाना। ये मुहावरा गणितीय और व्यवहारिक संख्या बल पर आधारित है, जहाँ संख्या एक अकेलेपन और कमजोरी को दर्शाती है, वही 21 एक बड़ी और शुभ संख्या मानी जाती है। जब कोई व्यक्ति या संस्था अपनी स्थिति को बहुत कम समय में कई गुना बेहतर कर लेता है तो उसे 1 से 21 होना कहा जाता है।
1: जी बिल्कुल, और हम और भी हमारे जो साथी हैं वो भी इसी तरीके की बात कह रहे हैं कि उन्नति करना इसका मतलब है, आशीर्वाद देने में इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है कि 1 से 21 हो जाए, यानी कि आप अपने जीवन में उन्नति करते रहें। इसी तरीके की बातें लिखी है हमारे बाकी साथियों ने भी। अब एक गीत सुने।
0: हाँ, गीत सुनेंगे, लेकिन हमारे श्रोता जो कहना चाह रहे हैं वो कह देते हैं और कार्यक्रम का आखिरी गीत होगा ये आरती।
1: जी, बात तो सही कही आपने।
0: तो देखिए, हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि जब एक ही चीज दूसरी चीज से हर महीने में लिख रखा है हमारे श्रोता, हर मायने में श्रेष्ठ हो, तब इस बात को दर्शाने के लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है 1 से 21 होना। और वहीं हमारे श्रोता जिन्होंने अभी हमारा पिछला सेगमेंट था ना, हल्की फुल्की बातें में बचपन की यादगार जो शरारत, उसमें भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी शरारतें अभी तक हमें लिख भेज रहे हैं। वो लिखते हैं, पढ़ दूं तुम कहो तो?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: वो लिखते हैं कि हमारी बेटी का भी यही हाल था। एक दिन हमने बहुत कुछ बनाया, ननंद आने वाली थी और सबको समझा दिया कि ये सब एकदम सर्व करेंगे तभी पता चलेगा, पर बेटी कहां मानने वाली थी, आते ही बता दिया। और एक बार हम दूध रखकर भूल गए और बर्तन भी थोड़ा जल गया, तो हमने बच्चों से कहा कि पापा को आते ही ऐसी बात नहीं बताएंगे, पर क्या उसने आते ही बताया पापा, ऐसा हो गया। और तो और मम्मी को भी ये बताने के लिए उन्होंने मन बना लिया। तो इस तरह की शरारतें हम बचपन में,
1: अक्सर ऐसा होता है जब हम बच्चों को कोई बात मना करते हैं ना कि ये बात आपको नहीं कहनी है, तब तो वो जरूर उस बात को कहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी शैतानियां तो बहुत है, लेकिन बात है गर्मी की छुट्टियों की, जब हमारे घर के बड़े आराम किया करते थे और हम सब दोस्त पास के एक झरने में नहाने भाग जाते थे, और वहां नहाने के लिए सब अपने कपड़े उतारते, पानी में कूदते, तभी मैं और मेरा दोस्त उनके कपड़े उठा के भाग जाते थे और आधा किलोमीटर उनको दौड़ा दौड़ा के ही कपड़े दिया करते थे।
1: एक छोटा सा एक हमें संदेश भेजा तो वो भी हम पढ़ देते हैं। एक हमारे साथी जो कहते हैं कि जब मैं छोटा सा था, 6-7 साल का रहा होगा, तो उस समय मैं स्कूल बंक करके, स्कूल को अपने पीरियड छोड़ करके मैं अपने नेबर के हाउस में, अपने पड़ोसी के घर में जाकर छुप जाता था, वहां पे मतलब बैठा रहता था, वहां नहीं जाता था, स्कूल नहीं जाता था। तो इस तरीके की शरारतें भी हैं।
0: बाकी बहुत आज मन खुश,
1: और आज वो एंजॉय कर रहे हैं अपना रिटायरमेंट, सोचिए।
0: अच्छा, आज वो अपना मतलब उनका रिटायरमेंट हो गया है और वो बचपन की यादों को भी ताजा कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: बहुत खूब। तो चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है आरती, सुन लेते हैं गीत।
1: हाँ।

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आरती, अभी देखिए हमारे एक श्रोता लिखती है, हमारी सखी, कि आज विषयों पर बढ़िया जानकारियां मधुर गीतों के साथ, बढ़िया प्रस्तुति के साथ सखी सहेली कार्यक्रम आपने पेश किया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देती हैं।
3: बिल्कुल। और एक हम अपने साथी का छोटा सा भर देते हैं, उन्होंने अपनी शरारत जो लिखी है, लिखती है कि बचपन की शरारती कितनी मासूम होती है, इसका सबसे प्यारा किस्सा हमारी बेटी का है। जब वो स्कूल जाती थी तो कई बार बस वाले भैया से कह देती, हमारी छोटी बहन आज स्कूल नहीं जा रही है, आप चलिए। असल में स्कूल बस हमारे घर से थोड़ी दूर एक मोड़ पर आती, हमारी बड़ी बेटी पहले ही वहां पहुंच जाती और हम छोटी बेटी को पीछे पीछे लेकर आते। उसकी ये छोटी सी शरारत में बार बार हंसा देती थी और आज भी जब वो याद आती है तो चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है।
2: बिल्कुल सही कहा आरती, बचपन की जो बातें हैं वो कभी भी हमें हंसा देती हैं और गुदगुदा देती हैं। लेकिन अब वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम और हंसें और गुदगुदाएं। तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी
3: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति।
2: नमस्कार।
3: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पाकुड़ में दिशम गुरु शिबु सोरेन की पहली पुण्यतिथि के मौके पर उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया, साथ ही सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय के परिसदन के सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक स्टीफन मरांडी, हेमलाल मुर्मू समेत कई सहयोगी दलों के नेताओं ने शिबु सोरेन की प्रतिमा का अनावरण संयुक्त रूप से किया। पद्मश्री दिशम गुरु शिबु सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर आज हजारीबाग के बरही चौक में भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले के सबसे प्रमुख बरही चौक का नामकरण दिशम गुरु शिबु सोरेन चौक के रूप में किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि अलग झारखंड राज्य के निर्माण में शिबु सोरेन का योगदान ऐतिहासिक रहा है और हजारीबाग से उनका विशेष जुड़ाव था। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 आज राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश करते हुए बताया कि इसका उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। नया विधेयक के अनुसार यदि किसी जन्म या मृत्यु की सूचना 2 वर्ष से अधिक समय बाद रजिस्ट्रार को दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। रेलवे ने इस वर्ष जुलाई में पिछले वर्ष की तुलना में माल ढुलाई में 9% की वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान 14,13,00,000 टन माल की ढुलाई की, जबकि पिछले वर्ष जुलाई में यह 12,97,00,000 टन की थी। रेलवे ने पिछले वर्ष की तुलना में जुलाई में ताप ऊर्जा संयंत्रों में कोयले की मांग में वृद्धि के कारण बिजली संयंत्रों को घरेलू कोयले की आपूर्ति में 20% की वृद्धि हुई थी। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हाँ जी,
2: है ना, फिर 78 आरपीएम का एक रिकॉर्ड दिखा। फिल्म थी यास्मीन,
1: वाह,
2: 1955।
1: मुझे पता भी नहीं है, वो तो मैंने ब्लाइंड निकाल दिया। और आप मतलब आप एनसाइक्लोपीडिया है, इसलिए आपने मुझे समझाया कि ये यास्मीन है, तो इसका जो ये गाना है हम सुन सकते हैं।
2: बिल्कुल, आज के इस प्रोग्राम में वो गाना भी हम जरूर बजाएंगे, लेकिन पहले अभी जरा यादों की तरफ चलते हैं। आप कहाँ पैदा हुई थी और बचपन कहाँ बीता आपका?
1: मैं एक्चुअली पुणे में पैदा हुई थी
2: जी,
1: और मैंने कुछ साल पहले एक मराठी फिल्म की, डॉक्टर रखमाबाई, जो इंडिया की फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर हैं
2: जी,
1: उनकी जीवन पर, और मैंने डॉक्टर रखमाबाई का किरदार निभाया। तो लोगों को ऐसा लगा कि मैं शायद, मतलब है मेरा नाम चैटर्जी लेकिन मैं महाराष्ट्रियन ही हूँ, क्योंकि वो मराठी में फिल्म थी और पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मुझे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला। लेकिन मेरी पैदाइश पुणे की हुई, उसके बाद हम लोग बाहर चले गए जब मैं 6-7 महीने की थी
2: जी, जी।
1: हम लोग, मेरे पिताजी जो है उनको सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स में काम मिला, तो हम जापान में थे, कीनिया में थे, इंग्लैंड में थे, ऑस्ट्रेलिया में थे, अलग अलग बाहर देशों में। उसके बाद हम दिल्ली आए, और तो मैं अपने आप को दिल्ली वाली मानती हूँ, क्योंकि जो मेजर मेरा जो चंक है ना, जो आपका एजुकेशन है, टीनेज इयर्स है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये सब जो है मैंने दिल्ली में किया।
2: तो दिल्ली जो है वहां दिल बसता है आपका। एक मजेदार बात ये है कि ये जो हमारे बनने के दिन होते हैं, जब टीनेज के बाद इंटरेस्ट शुरू होते हैं और जिंदगी की एक थोड़ी सी राह कहीं दिखती है या ख्वाब बनने शुरू होते हैं, जाहिर है आप दिल्ली में थी और ये बहुत मजेदार जमाना था 80s 90s का। मैं जानना चाहता हूं उन सुहाने दिनों की यादें आपसे।
1: तो ऑब्वियसली दिल्ली मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल है, क्योंकि वहां से मुझे हर चीज, जो शिक्षा है वो सिर्फ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं, उससे पहले मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में मैंने हफीज अहमद खान साहब से, शांति हिरानंद जी से तालीम ली। उससे पहले बचपन से मम्मी ने मुझे गंधर्व महाविद्यालय मुझे भेजते थे हिंदुस्तानी क्लासिकल का जो बेस है वो सीखने के लिए। और म्यूजिक से जो है इंडियन कल्चर का एक जो वास्ट मतलब समुंदर है, वो जो पोएट्री है उसका पूरा इंट्रोडक्शन मेरे लिए म्यूजिक के साथ शुरू हुआ। और जब मैं कॉलेज में थी, स्कूल में थी, तो उस समय क्या होता था, स्पिक मके करके एक प्रोग्राम होती थी जहां बड़े बड़े आर्टिस्ट, मतलब

0: बहुत ही मजेदार बातें चल रही हैं। आपने बताया कि पहले तो आपको जो बुनियादी शास्त्रीय संगीत है वो सिखाने के लिए गंधर्व भेजा गया, और उसके बाद आपने अपने गुरु के साथ तालीम ली। वो कैसे दिन थे और कितनी दिलचस्पी बढ़ रही थी म्यूजिक में आपकी?
1: हाँ, म्यूजिक में तो बढ़ ही रही थी। इसके साथ साथ मेरे मतलब हफीज अहमद खान साहब, उन्होंने हिस्ट्री में एमए किया हुआ था, तो वो हमेशा बहुत सारे किस्से भी सुनाते थे।
0: हिस्ट्री में एमए क्लासिकल म्यूजिक सिखाने वाले, वाह
1: या तो वो मतलब क्लासिकल म्यूजिक की हिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंट्स की हिस्ट्री, लैंग्वेज का जो कंट्रीब्यूशन है, फिर जो हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में जो मिश्रण होता है लैंग्वेजेस का, कि ब्रज में शुरू होके उर्दू के कपलेट्स थाई में जाती है, ये सब जो चीजें हैं, इन सब चीजों को लेकर जो चर्चा बातें होती थी, तो बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस था। फिर मैं शांति हीरानंद जी के पास सीखने गई ठुमरी दादरा में स्पेशलाइज करने के लिए, और शांति जी बेगम अख्तर की शागिर्द रह चुकी थी। और शांति जी ने एक बार मुझे बहुत कमाल की चीज कही, उस समय मैं मतलब स्कूल और कॉलेज में ही थी, तो गाना मैं बहुत अच्छे से गाती थी और वो मुझे समझाने की कोशिश करते थे कि भाव क्या है, और वो उस समय नहीं समझ में आता था इतना
0: मजेदार है ये।
1: बहुत साल बाद मुझे एक बात उनकी समझ में आई कि उन्होंने ये कहा कि क्योंकि तब उनकी उम्र हो चुकी थी, जब गाती थी मैं तो तब पिया नहीं था, क्योंकि ठुमरी दादरा में हर मतलब बंदिश में यही बात होती है कि द एकिंग पेन ऑफ सेपरेशन, पिया जो है वो छोड़ के चला गया। तो वो कहते थे कि जब पिया था तो गाना मतलब सीख रहे थे, और अब गाना आता है तो पिया के बारे में मतलब क्यों, उम्र हो चुकी है तो अब वो पेन रहा नहीं है। तो दोनों साथ में हुआ नहीं कभी। शी यूज्ड टू यू नो सी दैट,
0: उस समय
1: या वी आई नेवर अंडरस्टूड दैट, मच लेटर आई अंडरस्टूड कि भाव जो है वो मतलब कहां से आती है, कि आप जिंदगी में कुछ चीजें सहन करते हो, दर्द आता है, तभी आप कुछ क्रिएट कर पाते हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो स्टोरी टेलिंग हो, चाहे वो फिल्म हो,

0: का क्रिएशन जो है, कल एक्चुअली मैं कैफी आजमी साहब के एक इवेंट पे गई थी जहाँ उनके सेंटेनरी पे पोस्टल स्टैम्प रिलीज हुआ, और जावेद साहब यही कह रहे थे कि हम ट्रेजेडीज के बारे में बात कर रहे थे, और मैंने कहा सैराट इतनी बड़ी ट्रेजेडी फिल्म है लेकिन फिर भी हिट हुई है, एंड ही सेड कि नहीं, ट्रेजेडीज हमेशा होती है क्योंकि पेन से लोग रिलेट करते हैं ना, एंड वही चीज हम बात करते हैं, जब तक आपको जिंदगी में पेन नहीं मिलेगा आप क्रिएट नहीं कर पाओगे, ये क्रिएशन की ट्रेजेडी है।
1: क्या बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है। मैं वापस दिल्ली वाले दिनों की तरफ जा रहा हूं। शांति हीरानंद से जब आप सीख रही थी तो वो तो हिंदुस्तानी बंदिशें सीख रही होंगी, तो कोई बंदिश याद है?
0: बिल्कुल तो मुझे जैसे मांड सिखाती थी, तो मुझे
1: वाह वाह वाह,
0: तो मैं एक सावन की ही कोशिश में, हाँ

0: क्या बात है, मैं तो यही कहूंगा कि सचमुच सावन की बदरिया घिर घिर आए और खूब घिर घिर आए।
1: बिल्कुल, ये हमारी ख्वाहिश है।
0: बिल्कुल, यहाँ एक गाने की जगह बनाई जाए।
1: हाँ
0: सुनते हैं।

0: संगीत चल रहा था तो अभिनय की तरफ रुझान कैसे हुआ था?
1: एक्चुअली संगीत के वजह से हुआ
0: जी,
1: क्योंकि स्कूल में फिर कॉलेज में जहां भी हम लोगों के म्यूजिकल प्लेज होते थे वो मुझे इसलिए कास्ट कर लिया जाता था कि मैं गा सकती हूँ।
0: वाह, और अलग से गाने की परफॉर्मेंसेस नहीं करती थी?
1: नहीं, वो तो कॉलेज में एक्चुअली मैं गाना ही मतलब रेंडेवू IIT के जो फेस्टिवल्स थे, फिर बिट्स पिलानी में, सब में मैं मतलब कॉलेज को रिप्रेजेंट करती थी गाने में। और स्कूल में जब थी तो मैं वेस्टर्न म्यूजिक भी बहुत गाती थी, विटनी ह्यूस्टन। मुझे इतने छोटे छोटे ऐसे कर्ली ऐसे बाल थे और सब मुझे कहते थे कि यू नो इंडियन विटनी ह्यूस्टन।
0: क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। तो वेस्टर्न से

0: कनेक्शन रहा और
1: मराया कैरी, विटनी ह्यूस्टन, ये सब गाती थी मैं।
0: वाह वाह वाह। पहली बार अभिनय कब किया था?
1: स्कूल में। स्कूल के जो हाउस कंपटीशन के प्लेज नहीं होते थे और दुर्गा पूजा।
0: वाह वाह, ये तो बहुत महत्व।
1: बंगाली जो क्या होता है कि मतलब वो पूरा महीना जो हम लोग रिहर्सल करके फिर दुर्गा पूजा में परफॉर्मेंस। तो मेरा एक्चुअली पहला नाटक जिसमें मैंने मेन रोल मतलब सोलो रोल किया फुल प्ले में, वो दुर्गा पूजा का एक नाटक था, वो बंगाली में था।
0: अरे वाह वाह, तब क्या उम्र रही होगी आपकी?
1: 10 साल।
0: क्या बात है। हाँ, इतना सारा
1: म्यूजिक उससे पहले से चल रहा था जिंदगी में, बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई मतलब हाँ एक्टिंग का इंट्रोडक्शन हुआ।
0: और कब ये लगा कि इसे करियर चॉइस के रूप में रखा जा सकता है?
1: ये बाय एक्सीडेंट हुआ ऑनेस्टली, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी।
0: और आप तो केमिस्ट्री पढ़ रही थी।
1: जी ऐसा कभी नहीं सोचा था कि परफॉर्मिंग आर्ट्स को प्रोफेशन बनाऊंगी, क्योंकि क्या होता है इंडियन मिडिल क्लास होम्स में कि आप ये सब हॉबीज रखो, लेकिन प्रोफेशन, क्योंकि मेरे फादर भी इंजीनियर और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थे और माय मदर यूज्ड टू टीच, तो वो उनका यही था कि हाँ मतलब आप कल्चरली एक वेल राउंडेड एजुकेशन आपका होना चाहिए और ये हॉबीज हो सकती है, लेकिन प्रोफेशन तो आपकी साइंस या इंजीनियरिंग यही कुछ होगा। तो ये ना बाय एक्सीडेंट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं म्यूजिक को या एक्टिंग को प्रोफेशनली करूं कुछ। लेकिन जब मैं कॉलेज में थी तो एक बहुत बड़ा जर्मन प्रोडक्शन यहाँ पे मतलब आया था इंडिया में और उन लोगों ने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जो उनके प्रोडक्शन का पार्ट, और मैं सिलेक्ट हुई थी। और उस समय मतलब बहुत नामी नामी एक्टर्स जो एनएसडी के ग्रेजुएट्स हैं एंड ऑल, वो पार्ट थे उस प्रोडक्शन का।
0: वाह।
1: तो दैट एक्चुअली चेंज्ड माय मतलब दिमाग खराब हो गया।
0: अच्छी खासी लड़की जो एकेडमिक्स में जा रही थी,
1: मतलब साइंस की जो है बैंड बज गई।
0: क्योंकि आप तो केमिस्ट्री पढ़ रही थी।
1: बिल्कुल। और वो उस वर्कशॉप के बाद फिर मैंने बैरी जॉन के साथ और एक वर्कशॉप कर, और कांड हो गया, मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में समर वेकेशन में और एक वर्कशॉप किया और उसमें और इतना ज्यादा मजा आया, मतलब ठंड, एक तो मुझे ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है।
0: अच्छा।
1: ठंड में किसी कोल्ड यूनिवर्सिटी में यूएस में जाके मैं लैब में बैठ के रिसर्च करूंगी, और ये देखो मतलब स्टेज पे हम गाना गा रहे हैं और एक्टिंग, क्या मजा है।
0: वाह वाह। जब ये बात घर वालों को पता चली तो क्या रिएक्शन थे? टीचर मम्मी जी और कॉरपोरेट पापा,
1: उनको मतलब हार्ट अटैक आया। और उसका पूरा, लेकिन मैं बिगड़ चुकी थी तब तक।
0: तब तक तो काम पूरा।
1: और द थिंग वाज कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है वो 100% स्कॉलरशिप, तो इसीलिए मेरे पिताजी और मम्मी ये नहीं कह सकते थे कि तुम्हारे एजुकेशन के लिए हम तुमको पैसे नहीं देंगे।
0: पैसे तो वहाँ ऑलरेडी आ रहे थे।
1: तो वो फुल स्कॉलरशिप मुझे मिल रहा है, लेकिन मेरी बहन की जिंदगी बंद हो गई। कहती एक बिगड़ गई है, दूसरे को नहीं बिगड़ने देंगे।
0: तो वो सीधी राह पे चली गई।
1: अरे वो अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है।
0: क्या बात है। हाँ, क्या बात है।
1: हाँ, वो मतलब शी इज एक्सट्रीमली ब्राइट एंड वो कमाल की है, बट वो भरतनाट्यम सीख रही थी, उसने रंगेतरम किया, लीला सैमसन जो बहुत ही नामी और कला क्षेत्र के हेड भी रह चुके हैं, उस समय वो दिल्ली में थे और उनसे सीख रही थी और बहुत सीरियसली डांसर बनना चाहती थी, और मतलब लेकिन वो अभी भी कहती है कि अरे तुमने दीदी को करने दिया लेकिन मुझे नहीं।
0: क्या बात है, क्या कितनी सुनहरी यादें हैं लेकिन इन तमाम चीजों की, कि आप जिंदगी में पढ़ते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं और फिर होता कुछ और है।
1: और फिर एनएसडी के बाद मेरे पिताजी हर 2 साल में ये कहते थे कि अच्छा चलो ये हो गया, अभी तुम एमबीए कर लो, ये बहुत इंटरेस्टिंग मिक्सचर है कि केमिस्ट्री के बाद तुमने यू नो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और इन सब में तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और मैं एक्चुअली जीमैट के लिए पढ़ती भी थी।
0: अच्छा।
1: जैसे मैं सीरियसली कोई एग्जाम देने बैठूंगी ऐसा लगता था कि अभी बैठ जाऊं, एक बहुत अच्छी फिल्म मिल जाती थी। फिर पापा को मैं कहती थी अरे मॉम पापा अभी देखो ये मिल गया है, अब ये करते हैं। फिर मैं लंदन शिफ्ट हो गई थी बीच में 5 साल के लिए, ब्रिक लेन करके एक फिल्म की मैंने, और उसमें मुझे ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट।
2: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 4:30 होने को हैं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की आज की कड़ी।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
0: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सुविचार जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल और प्रियंका जी ने। लिखते हैं,
2: कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है लेकिन झुकने के बाद भरकर ही बाहर निकलती है। जीवन का गणित भी कुछ ऐसा ही है, जो विनम्रता से झुकता है वो अवश्य कुछ न कुछ लेकर ही उठता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर और प्रेरणादायी विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर का।
2: और अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़ता बाजार से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी का। वो लिखते हैं,
0: जय गुरुदेव, जय गुरुकुल, उमंग टीम को पल पल बंदगी, विमलेश मैडम जी और अजीत साहेब जी, जय जोहार बंदगी जी। उमंग कार्यक्रम है लाखों में एक, आप हमारे गुरु के समान हो, हर सप्ताह नई नई जानकारी हमें सिखलाते हो, अहो भाग्य हमारा। उमंग कार्यक्रम एक पाठशाला है जिसे सुनकर जीने की कला हमें आ जाती है। इस सप्ताह बहुत ही खूबसूरत गीत, कविता, फूलों से नित हंसना सीखो, खेल गीत, भारत प्यारा, टिम टिम तारा आपने सुनाया, ये सभी गीत हमें बहुत पसंद आए। धन्यवाद साहेब जी।
2: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्रेरणादायक संदेश भेजने के लिए।
0: अगला संदेश हमें मिला है माँ बम्बलेश्वरी धाम सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी।
0: और कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल कुमारी।
2: और राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कार्य जी।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। जैसा हर बार हम निवेदन करते हैं आज भी करेंगे कि उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए लगातार।
2: जी
0: एक बार फिर से स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी क्या है हमारी आज की चर्चा का विषय?
2: अजी जी आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रभावित कर रहा है। चलिए मैं श्रोताओं को कुछ संकेत देती हूँ।
0: जी
2: अंदाजा लगाना है कि हम किस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं।
0: जी तो विमलेश जी आपने कहा मैं संकेत देती हूँ तो संकेत दीजिए।
2: मेरे संकेत कुछ प्रश्नों में छिपे हुए हैं। पहला प्रश्न है, श्रोताओं क्या आपने कभी अपने मोबाइल से कोई प्रश्न पूछा है और देखा है कि तुरंत उत्तर मिल गया? क्या आपने मोबाइल या कंप्यूटर को कोई पोस्टर बनाने की कमांड दी और देखा कि तुरंत आपके लिए पोस्टर बनकर तैयार हो गया? यदि हाँ तो बताइए कैसे संभव हो पाया।
0: या फिर श्रोताओं क्या आपने मोबाइल या कंप्यूटर में किसी भाषा का अनुवाद कुछ ही सेकंड्स में होते देखा है? भला ये कैसे संभव हो जाता है?
2: अजीत जी यदि हमारे श्रोता मित्रों का ये अंदाजा है कि AI या कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संभव हो पाता है तो एकदम सही है। जी हाँ हमारी आज की चर्चा का विषय है कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बता दें कि इसका आविष्कार अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी ने 1955 में किया था। लेकिन अजीत जी ये प्रश्न उठता है कि कृत्रिम

0: सकती है।
1: शिक्षा के क्षेत्र में AI विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा सकता है।
0: और विमलेश जी, इतना ही नहीं, ये कठिन विषयों को भी सरल भाषा में समझा सकता है
1: जी।
0: अभ्यास प्रश्न तैयार कर सकता है और नई भाषा सीखने में भी सहायता कर सकता है
1: जी।
0: इससे सीखना अधिक रोचक और व्यक्तिगत बन जाता है।
1: ये सब बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन श्रोताओं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं
0: जी।
1: हर नई तकनीक की तरह AI के साथ भी कुछ चुनौतियां जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी चुनौती है गलत या भ्रामक जानकारी
0: जी।
1: AI कभी कभी ऐसा उत्तर दे सकता है जो सुनने में तो सही लगे, लेकिन पूरी तरह से सही न हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी की विश्वसनीय स्रोतों से अवश्य जांच कर लेनी चाहिए
0: जी। बिल्कुल सही श्रोता। और दूसरी एक और बहुत बड़ी चुनौती
1: जी,
0: वो चुनौती नकल करने की प्रवृत्ति
1: जी।
0: विद्यार्थी भी कई बार अपना गृह कार्य, प्रोजेक्ट या निबंध पूरी तरह AI से बनवा लेते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत हानिकारक है
1: जी,
0: क्योंकि इससे उनकी अपनी सोचने, लिखने और समस्या समाधान की क्षमता प्रभावित हो सकती है और आजकल ऐसा होने भी लगा है।
1: तो श्रोता मित्रों, हमें याद रखना चाहिए कि AI सीखने का साधन है, सीखने का विकल्प नहीं
0: जी।
1: तो अब बात करते हैं कि AI का जिम्मेदारी से उपयोग कैसे करें। सबसे पहली बात, AI का उपयोग सीखने के लिए करें, केवल उत्तर पाने के लिए नहीं। यदि कोई विषय समझ में ना आए तो आप AI से कहें कि वो सरल भाषा में विषय को समझाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समझने के बाद आप उसे अपने शब्दों में लिखें
0: जी, ये बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हमें एक और बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि AI से मिली जानकारी का मिलान विश्वसनीय पुस्तकों, शिक्षकों या प्रामाणिक स्रोतों से जरूर करें
1: जी।
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात, AI पर आश्रित ना हो जाएं।
1: बिल्कुल,
0: अपनी रचनात्मकता को बनाए रखें। चित्र बनाना, कविता लिखना, कहानी गढ़ना और नए विचार सोचना, ये सब मानव की विशेष क्षमताएं हैं
1: जी। हाँ श्रोता मित्रों, AI का उद्देश्य आपकी जगह सोचना नहीं, लेकिन आपको एक बेहतर ढंग से सोचने में सहायता प्रदान करना है
0: जी।
1: AI हमारी सहायता कर सकता है, लेकिन हमारी कल्पना शक्ति का स्थान नहीं ले सकता। ये सच है कि हर नई तकनीक अपने साथ अवसर भी लाती है और जिम्मेदारी भी
0: जी। हाँ, जैसे एक उदाहरण लीजिए, जिस प्रकार बिजली का सही उपयोग हमारे जीवन को आसान बनाता है
1: बिल्कुल,
0: और गलत उपयोग नुकसान पहुंचा सकता है
1: जी।
0: इसी प्रकार AI भी एक बेहद शक्तिशाली साधन है, लेकिन इसका लाभ तभी मिलेगा जब हम इसका उपयोग समझदारी, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करेंगे। आइए हम इस तकनीक से डरे नहीं, बल्कि उसे समझें, उससे सीखें, उसका उपयोग समाज और देश के विकास के लिए करें।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: तो श्रोताओ, आज का हमारा प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI का आविष्कार किसने किया था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI का आविष्कार किसने किया था।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: यूट्यूब में जाकर टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
1: और एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम, शीर्षक है पेड़ की बात।
1: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम महान भौतिक और वनस्पति विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बसु के एक विज्ञान लेख पर आधारित है, जिसमें उन्होंने पेड़ पौधों के बारे में बड़ी रोचक जानकारी दी है।
0: पेड़ की बात।
2: साथियों नमस्कार, हम सब प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के बारे में जानते हैं। उनका बचपन प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से प्रेम करते हुए उनकी शिक्षा आरंभ हुई। जीव विज्ञान, भौतिकी और वनस्पति विज्ञान में उनकी महारत थी। उन्होंने बांग्ला भाषा में बच्चों के लिए बहुत सी विज्ञान कथाएं और लेख भी लिखे। जगदीश चंद्र बसु ने कई विज्ञान कथाएं लिखी हैं, जिनमें से निरुद्देशेर गोल्पो यानी लापता की कहानी 1896 में लिखी गई। और बाद में

0: 1921 में पलटक तूफान यानी भगोड़ा समुद्री तूफान के रूप में प्रकाशित की गई, जो बांग्ला विज्ञान कथा साहित्य की शुरुआती कृतियों में से एक है। उन्हीं विज्ञान लेखों में से एक रोचक लेख है पेड़ की बात। जगदीश चंद्र बसु को बच्चों से बहुत प्रेम था। उन्होंने अपने घर में भी प्रयोगशाला बना रखी थी। छुट्टियों के दिनों में उनके पास बहुत से बच्चे विज्ञान के प्रश्नों के साथ आते रहते थे। एक दिन कुछ बच्चों ने सोचा कि क्यों ना उनके पास चलें? तो आइए दोस्तों, हम भी चलते हैं बच्चों के साथ सर जगदीश चंद्र बसु के पास और सुनते हैं ये विज्ञान वार्तालाप।
1: चलो चलो
2: सर से हम पेड़ पौधों के बारे में पूछेंगे।
3: नमस्कार सर।
4: नमस्कार। और इतने सारे बच्चे तो अब जरा अपना इंट्रोडक्शन दो।
5: सर मैं इशिता। मैं हूँ चेताली।
6: मैं शुभेंदु।
7: और मेरा नाम है इंदु।
8: और मैं सोमेश।
4: बहुत अच्छा। तो बच्चों ये बताओ कि तुम लोगों का आना कैसे हुआ?
5: सर हम आपसे पेड़ पौधों के बारे में जानना चाहते हैं।
4: देखो पेड़ बनने की कहानी सबसे पहले शुरू होती है बीज से।
6: जी सर, मैंने अपने खेत में बीज को बोते हुए देखा है।
8: सर फिर क्या होता है?
4: फिर होता यह है बच्चों कि बीज मिट्टी में पड़ा रहता है लंबे समय तक। जैसे ही वर्षा की बूंदें पड़ती हैं और मिट्टी थोड़ी गीली हो जाती है ना, बीज मानो सोचता है।
8: बीज सोचता है? क्या सोचता है?
4: वो सोचता है अब मिट्टी में पड़े रहने का समय नहीं है। उसे लगता है मानो प्रकृति उसे बड़े प्यार से पुकार रही हो, जैसे
9: उठो उठ जाओ, अब सोने का समय नहीं है, बाहर निकलो, सूर्य को देखो, अपने आसपास देखो, सब कुछ कितना सुंदर है।
5: वाह कितनी सुंदर बात है।
4: अच्छा एक बहुत मजेदार बात तुम लोगों को बताता हूँ बच्चों। देखो जब अंकुर फूटेगा और डालियां निकलेंगी तो जड़ हमेशा नीचे की ओर ही जाएगी और तना ऊपर की ओर ही उठेगा। जानते हो एक बार मैंने एक प्रयोग किया था। एक गमले में क्या था बताओ?
3: पौधा।
4: शाबाश। परीक्षण करने के लिए मैंने कुछ दिनों तक पौधे को उल्टा लटकाए रखा।
3: उल्टा?
4: हाँ उल्टा। और जानते हो क्या हुआ? पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर।
8: फिर क्या हुआ?
4: फिर दो तीन दिनों के बाद मैं क्या देखता हूँ कि उसकी सारी पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की ओर उठाई और जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। ऐसा लगा जैसे पौधे को भी प्रकृति का ये भेद मालूम हो गया हो। है ना रोचक बात?
6: ये तो बड़ी रोचक बात है सर। सर एक बात बताइए, क्या पेड़ पौधे भी भोजन करते हैं?
4: हाँ क्यों नहीं। देखो हमें जिस प्रकार भोजन की जरूरत होती है ना, हमारे दांत होते हैं, है ना?
5: जी सर।
4: इसलिए हम भोजन को चबा चबा कर खाते हैं। लेकिन पेड़ पौधों के दांत नहीं होते, इसलिए वो केवल तरल द्रव्य या वायु से ही भोजन ग्रहण करते हैं। वो जड़ के द्वारा मिट्टी से रसपान करते हैं।
5: रसपान कैसे करते?
4: एक उदाहरण देता हूँ। जैसे पानी में चीनी डालने पर चीनी घुल जाती है ना?
5: जी सर।
4: वैसे ही मिट्टी में पानी डालने पर उसमें मिट्टी के बहुत से पोषक तत्व घुल जाते हैं। पेड़ पौधे उसी पोषक तत्व को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं।
5: अच्छा अब समझ आया।
4: तो अब इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए चलो चलते हैं अपनी प्रयोगशाला में।
3: जी सर। हाँ,
5: यहाँ तो कितने सारे पत्ते बीज पौधे के तने रखे हुए हैं। अरे कितनी बड़ी प्रयोगशाला है।
10: यहाँ पे तो बहुत तरह के पत्ते हैं।
8: ये तो बहुत सुंदर पत्ते हैं, बिल्कुल हरे हरे।
7: देखो इतना बड़ा पेड़।
6: अरे उधर देखो सूखे पत्ते भी हैं।
3: अरे यहाँ तो कितने सारे पेड़ पौधे हैं।
5: और ये मशीन क्या है? चलो चलो सर से पूछते हैं।
4: इसे

0: कहते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र यानी माइक्रोस्कोप।
1: माइक्रोस्कोप,
0: हाँ। अब इसका कमाल देखो। इशिता तुम इधर आओ बेटा। हाँ देखो।
2: जी सर।
0: हाँ देखो, अब मैंने क्या किया कि इस माइक्रोस्कोप के इस लेंस के ऊपर पौधे के इस तने को रखा। हाँ आओ देखो, देखो बेटा देखो, इसमें देखो क्या दिखाई दे रहा है।
1: अरे वाह, मुझे तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नलियां दिखाई पड़ रही है।
0: शाबाश।
1: हाँ नलियां तो मुझे भी दिखाई पड़ रही है इसमें।
3: मुझे भी देखना है। सर मैं भी देखूं?
0: हाँ आओ आओ,
1: मुझे भी देखना है।
0: देखो क्या दिखाई दिया।
1: इसमें तो बहुत सारी नलियां हैं।
0: शाबाश, बिल्कुल सही, लाखों पाइप हैं।
1: पाइप?
0: हाँ, यानी जड़ मिट्टी से जिस पोषक तत्व को सोखती है ना, वो पोषक तत्व इन्हीं पाइपों के द्वारा पूरे पेड़ तक पहुँचते हैं।
3: अच्छा, तो ये बात है।
0: अब देखो जैसे हमारी नसें होती है ना, बिल्कुल यही बात है।
1: सर पौधे वायु और सूर्य के प्रकाश से भी भोजन ग्रहण करते हैं, वो कैसे?
0: वृक्ष के पत्ते हवा से आहार यानी अपना भोजन ग्रहण करते हैं। क्या कभी तुम लोगों ने सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से पत्तों को देखा है?
1: नहीं सर।
0: और अब देखते हैं पत्ते को। कौन सा पत्ता लें? ये वाला पत्ता लेते हैं और इसे मैं यहाँ पर रखता हूँ माइक्रोस्कोप के इस लेंस के ऊपर। हाँ अब देखो कौन देखेगा सबसे पहले। शुभेंद्रु तुम देखो, क्या दिखाई दिया।
1: अरे वाह, कितना अद्भुत है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इस पत्ते में अनगिनत छोटे छोटे मुंह हैं।
0: बिल्कुल ठीक। तो बच्चों पत्तों के इन्हीं छोटे छोटे मुखों और जड़ों से पेड़ पौधे हवा से नमी ग्रहण करते हैं और सभी पोषक तत्वों को इकट्ठा करके अपना भोजन तैयार करते हैं। और जानते हो इसे क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। अच्छा चलो बच्चों अब एक और प्रयोग करते हैं। तैयार हो तुम लोग सब लोग?
1: जी सर।
0: तो अब सभी लोग बिल्कुल सावधान मुद्रा में खड़े हो जाओ ऐसे। हाँ शाबाश। और अब सब लोग एक लंबी सांस लो और अब छोड़ो। अब बच्चों ये बताओ कि तुमने सांस लेते समय क्या लिया और सांस छोड़ते समय क्या छोड़ा। इशिता तुम बताओ।
2: सर टीचर बताती है कि हम सांस लेते समय मुख्य रूप से ऑक्सीजन लेते हैं।
0: शाबाश। और शुभेंदु तुम बताओ हम सांस छोड़ते समय क्या छोड़ते हैं।
1: सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
0: हाँ
1: लेकिन सर ये तो जहरीली होती है।
0: बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। देखो बेटा मनुष्य ही नहीं पृथ्वी के सभी सांस लेने वाले जीव जंतु ऐसा ही करते हैं। अच्छा अब जरा सोचो अगर ये जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो क्या होगा?
2: पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो जाएगा।
0: सही कहा तुमने, शाबाश। लेकिन बेटा जरा विधाता की करुणा और चमत्कार तो देखो। जो गैस हम जीव जंतुओं के लिए जहर है पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतया शुद्ध कर देते हैं यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं जिससे हमारा जीवन चलता है।
1: यानी यदि पेड़ पौधे नहीं होते तो
4: हम भी नहीं होते।
0: शाबाश। तो बताओ बच्चों कैसी लगी आज की बातचीत?
1: बहुत बढ़िया।
0: अब से एक काम जरूर करना।
1: क्या सर?
0: जब भी किसी पेड़ पौधे को देखना ना तो उसे बोलना
4: थैंक यू जी।
0: शाबाश।
5: तो साथियों अब हम किसी भी पेड़ या पौधे को देखकर धन्यवाद तो जरूर कहेंगे लेकिन सिर्फ धन्यवाद से ही काम नहीं चलेगा। बात तो तब है जब हम सिर्फ धन्यवाद ही ना कहें बल्कि उनका पूरा ख्याल भी रखें क्योंकि वो हैं तो हम हैं।
6: पेड़ की बात। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम साथी की सहायता।

0: एक बालक था, उसकी उम्र 11 वर्ष थी। एक दिन वो अपने पिताजी के पास गया और बोला,
1: पिताजी मुझे 5-7 रुपए दे दीजिए।
0: पिताजी ने कहा,
2: 5-7 रुपए? तुम ये रुपए किस लिए मांग रहे हो?
0: बालक बोला,
1: मुझे इन रुपयों की जरूरत है।

0: पिताजी ने बालक को 5 रुपए दे दिए, लेकिन वो जानना चाहते थे कि बालक रुपए किस काम में खर्च करेगा। वो चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। बालक सीधा अपने साथी के घर गया। वो उसे बुला लाया। फिर दोनों बाजार की ओर चल पड़े। पिताजी भी उनके पीछे पीछे गए। बाजार में पुस्तकों की एक दुकान थी। वहां दोनों रुक गए। बालक ने कुछ पुस्तकें खरीदी और अपने साथी को दे दी। साथी को इन पुस्तकों की बहुत जरूरत थी। पिताजी सब कुछ समझ गए। वे प्रसन्न थे कि उनके बेटे ने अपने साथी की मदद की। पिताजी ने बालक को बुलाया। वे प्यार से बोले,
1: बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। साथियों की सहायता करना बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हें पुस्तकें खरीदते देख लिया था।
0: इस बालक का नाम था चितरंजन दास। चितरंजन दास ने देश की बहुत सेवा की। लोग इन्हें देश बंधु चितरंजन दास कहने लगे।

अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संपादक संयुक्ता लूदरा और सत्येंद्र वर्मा। कार्यक्रम निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर। कलाकार नीरज यादव, अर्जुमन अली खां और मिताली। ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साथी की सहायता। CIET NCERT presents English rhymes and songs.
1: Friends, we present to you the song Five Little Ducks.

0: आर अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु
0: चेतना
1: और मुकुल के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की आज की कड़ी। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। प्रादेशिक मुख्य समाचार के लिए अगला प्रसारण हमारे रांची केंद्र से।

प्रादेशिक मुख्य समाचार। नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज पद्म भूषण से सम्मानित झारखंड आंदोलन के महानायक और दिशोम गुरु शिव सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर मोरहाबाद स्थित उनके आवास पहुंचकर उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर दिवंगत दिशोम गुरु की धर्मपत्नी रूपी सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन समेत परिवार के अन्य सदस्यों ने भी उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके संघर्षपूर्ण जीवन, योगदान तथा आदर्शों को याद किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने

0: आज सरायकेला टाउन हॉल में पद्मभूषण देशम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल हुए। झारखंड में 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर आज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो के निर्देश पर सूबे के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन किया गया। इसी क्रम में खूंटी समाहरणालय के सामने जिलाध्यक्ष कुमार ब्रज किशोर की अध्यक्षता में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम के कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण और संवैधानिक धरना प्रदर्शन आयोजित कर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पलामू जिले में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की बहाली लिखित परीक्षा के आधार पर कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला ने बताया कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति मैट्रिक के अंकों के आधार पर न कराकर लिखित परीक्षा के आधार पर कराई जाए और परीक्षा का सिलेबस और तिथि जल्द घोषित की जाए। सरायकेला खरसावां जिले के तिरुलडीह थाना क्षेत्र के सपादा स्थित एक गैस गोदाम से हुई एलपीजी सिलेंडर चोरी मामले में पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:02 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: इवनिंग मेलोडी कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं फिल्म कटी पतंग का गीत, आवाज किशोर कुमार की।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। फिल्म का नाम है पिया का घर।

लता मंगेशकर और येसुदास की आवाज में आप सुन रहे थे फिल्म त्रिशूल का गीत। इवनिंग मेलोडी कार्यक्रम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से पेश किया जा रहा है। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म सनम तेरी कसम का गीत, आवाज किशोर कुमार की।

और इवनिंग मेलोडी कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म शर्मीली का गीत।

किशोर कुमार की आवाज में फिल्म शर्मीली के इस गीत के साथ ही आज का इवनिंग मेलोडी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:30 होने को है, आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती बारी।

0: कार्यक्रम खेतीबाड़ी सुने वाले सभी किसान भाई बहन के कार्यक्रम में स्वागत हन और नहमता देने से जोहार प्रणाम और आदाब। तो कैसन हा तू सभन, उम्मीद करो ही है कि बेस होबा। और आज जो है खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम बात करबे माटी और पानी के संरक्षण, जे कि टिकाऊ खेती के कुंजी भी हो है। और जरूरी संदेश भी सुनेबे, साथे एगो बढ़िया सा गीत। ओकर बाद जे बात करबे उ है कम पानी में हमीन कौन तरी से ज़्यादा मुनाफा ले सको हिए, ज़्यादा खेती कर सको हिए। और साथ ही कहला कि जे बात हम कर रही है वो कहला कि ड्रिप और स्प्रिंकल विधि जो हो है एकर बारे में हम बात करबे आगे भी। और फिर जे जानकारी होते वो है किसान के अनुभव उनकरे जुबानी, और उकर बात होते मौसम के जानकारी और बाजार के भाव। और फिर आखिर में है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से जुड़ल जानकारी। तो देखला किसान भाई बहन भाई, इतना सारा जे जानकारी भरल बातचीत लेके आएले ही है कार्यक्रम में, और आगो बातचीत भी करबे। लेकिन कार्यक्रम के शुरुआत में काहे न एगो गीत सुनल जाए भाई, इतना बढ़िया बारिश होले है अब धर, जे कि किसान सबन के कहला कि मन एकदम हरियर हो जाए है बारिश देख के। काहे कि बारिश होते तबे जाके फसल भी बढ़िया होते। तो भाई जब मन अगर बढ़िया है तो ऐसन में एगो बढ़िया सा गीत हो जाए और साथ ही एगो जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

तो गरजत बरसत सावन आयो रे, कितना बढ़िया कितना बढ़िया ई गीत हले किसान बाबा ना। तो इनके बेस लगले कि नहीं लगले जरूर बताइए। और देख ला कि ई जरूरी संदेश और ई गीत के बाद एक बार फिर से हाजिर ही है कार्यक्रम में। और तुहिन संगे बात करे ले चाहबे कि आज के समय में जो है माटी और पानी के संरक्षण जो है बहुत जरूरी है, यानी कि एकर बचाव जो है कि बहुत जरूरी हो गले है। लगातार देखला कि जंगल झाड़ के कटाई हो लगल है जेकर असर जो है सीधा बारिश पर हो है। पहले तो याद कर बा कि भाई इतना ज़्यादा बारिश हो हेले कि झड़ लगाओ हेले, भाई सप्ताह सप्ताह भर के झड़ लगाओ हेले, एकदम दिन रात पानी पानी पानी, मतलब धूप भी सही से नहीं निकलो हेले। तो वो इतना पानी और कहला कि जब भाई जे रोपा के खेत और सब जगह तो कहला कि भरल रहो हेले, कुआं कुआं में तो कहला कि एकदम ऊपर तक पानी रहो हेले, कि मतलब लगो हेले जैसे कि हाथ से मतलब खाली बाल्टी ऐसे डाल के और मग से एकदम आराम से निकाल लेबे। लेकिन अब धर तू देख ला कि कहाँ वो चीज़ देखेल नहीं मिलो है। तो जे चीज़ पहले हम इनके देखे ले मिलो हेले कि भाई इतना ज़्यादा पानी कुआं में एकदम भरल भरल पानी रहो हेले, आज वो सब चीज़ नहीं है। अभी तो देख ला कि जे बरसात होले है तो भाई अगर रात में गदगदा के पानी दे दिल के तो फिर दिन में नहीं है, दिन में एकदम कड़ा रौद है। अगर दिन में एक घंटा या आधा घंटा पानी दे दिल के तो फिर ओकर बाद फिर शांत हो गले। तो इस सब असर इस सब कहला कि कहीं ना कहीं हमिनिये के जे काम के असर है, या कहला कि जे हमिन गलती कर ले ही है ओकरे ये असर है। क्या कि लगातार हमिन जैसे कि जंगल झाड़ काट ले ही है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगले है, घर है बड़ा बड़ा बन ले है, तो आबादी इतना ज़्यादा है कि मतलब लोग रह ले जगह चाहिए तो उकर लेल भी। और फैक्ट्री सबसे ज़्यादा देख ले कि बड़ बड़ फैक्ट्री लगले हैं तो एकर लेल एकदम जंगल धीरे धीरे खत्म हो लगल है। तो हम इनके इस सब चीज़ पर ध्यान दिए के हैं कि जितना पेड़ अगर कटो लगल है तो उतना हम इनके लगावे के भी है। काहे कि पेड़ पौधा हम इन लगेबे तबे जाके हम इन है कि पर्यावरण के सुरक्षित रख सको ही है। और पर्यावरण सुरक्षित रहते है तो भाई हम इनके माटी सब चीज सुरक्षित रहते है, बढ़िया रहते है और हम इन भी बढ़िया रहबे। तब देखला कि जे अगर बारिश पर असर जहां हो गले किसान भाई बहन तो एकर असर सीधे एकदम कृषि पर आ जाए है। और कृषि पर तू देखला ज़्यादा से ज़्यादा तू रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशी के जे लगातार इस्तेमाल हो लगल है, एकर से का हो है कि माटी के उपजाऊ क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है। और जब तक माटी बेस नहीं रहता है तब तक उत्पादन भी बेस कैसे, मतलब कहला कि उत्पादन बेस कैसे होते है? अगर मान ला कि घर के मुखिया जेकर कमाई से घर चलो है अगर वही बीमार हो जाते तब फिर घरवा कैसे चलते है? सोचे वाला बात है। तो वही लखे हम इनके माटी भी, माटी एक मुखिया की तरी है, अगर माटी बीमार हो जाते तो बढ़िया फसल उत्पादन नहीं हम इन ले सको ही है। तो ये बहुत ही गहराई से सोचे वाला बात है कि माटी जे हम इनके किसान सभिन के एक आमदनी के जरिया है, अगर वो बेस नहीं रहता है बीमार हो जाता है या आगे वाला समय में आवे वाला समय में जो है बंजर हो भी सको है। काहे कि आज के समय में इतना ज़्यादा रासायनिक खाद और कीटनाशी के इस्तेमाल होले है, मतलब हम ई कहे ले चाहो ये किसान भाई बहन कि देखला आज के समय में केकरो से पूछे से बस ये चीज़ है कि का डालो है तो रसायन डीएपी और यूरिया, तो डीएपी और यूरिया ऐसा नहीं जैसे कि सबके दिमाग में और जबान में वे बैठ गए है डीएपी और यूरिया। तो पहले ये चीज़ नहीं हले, अब हम इनके समय फिर से आ गए है कि हम इनके परम

परंपरागत खेती के दिने चले के है। और ये चीज तुहिन के कहल चाहिए कि तू सभी फुर्सत से बैठ के तनी आँख मूंद के और याद कर बहा कि हम इनके दादा परदादा के समय या फिर हम इनके अपन बचपन के तो समय लेला, जब हम इन छोटे लिए तभी हम इनके छोट मोट बीमारी एकदम मतलब हम इन तो जानो भी नहीं लिए कि भाई का है छोट मोट बीमारी, अगर तनी मनी सर्दी खांसी हो गए तो तुरते ठीक भी हो जा है ले। या फिर पेट दर्द तो कभी वैसन हमरा तो याद नहीं है छोट में, तो वैसने चीज़ हम इनके देखे के हैं कि भाई जे उस समय छोट मोट बीमारी कोसो दूर रहो हेले, काहे कि उस समय खेती में खाली गोबर खाद के इस्तेमाल हो हेले और पौधा भी जो है बहुत ज़्यादा कला पौधा में कीट व्याधि या फिर कोई तरीके रोग हो गए बहुत कम लगो हेले, तो ये सब चीज़ देखे के है और समझे के है। यानी कि कहला कि उस समय पूरा तरी से रासायनिक मुक्त खेती हले और अब धर तो कहीं न कहीं तो देखला कि गोबरों डला है और रासायनिक खादों डला है, जैविक कीटनाशी भी डला है तो रासायनिक कीटनाशी भी डला है, दोनों चीज होले तो ऐसा नहीं है, एगो चीज करे के है और एगो चीज में खाली जैविक खाद और जैविक कीटनाशी के इस्तेमाल करे के है। अगर हम इनके अपन माटी के बचावे के है, अपन आप के बचावे के है, अपन पर्यावरण के बचावे के है, तो हम इनके जरूरत है जैविक खेती करे के और परंपरागत तरीके से खेती करे के। अब देखला कि हम इन अगर देखबे तो पहले के समय में जो है हम इनके दादा परदादा हले या बड़ बुजुर्ग के तू देखला तो उ सभी ने 100 साल से ऊपर तक जियो हलथिन, तो काहे उ किन के खान पियन बढ़िया हले और खाली 100 साल से ऊपर जिए के भी नए हैं किसान भाई बहन, मतलब तंदुरुस्ती भी वही हले खटखट एकदम 100 साल होए के बाद भी खटखट, कोई मतलब केकरो सहारा की जरूरत नहीं होए ले, तो ये सब चीज देखे के है। और आज के समय में 70-80 साल होते होते कहला कितना तरीके बीमारी ढूक जाए है, 70-80 साल ही काहे ले कहिए हमें ये चीज कह सको ये कि आज के जन्मते के साथ का है बच्चा के पेट में दर्द हो ले है, डॉक्टर पास ले गए लिए तब एक गैस हो गए है, गैस के शिकायत हो गए है। अब सोच ला जन्मल बच्चा के गैस के शिकायत काहे, ये सब चीज हम इनके बहुत ही गहराई से सोचे के है किसान भाई बहन कि एकर कारण है का, जन्मल बच्चा जो हो है वो का खेल के। और आज के समय में मतलब कहला खेले कूदे वाला बच्चा जे दिन भर दौड़ो है खेलो है उखिन के पेट में दर्द, डॉक्टर पास ले जा तो गैस हो गए है, तो ये गैस है का, कहाँ से आए है, काहे सबके पेट में दर्द और गैस हो ले है, तो ये सब चीज सोचे के है। अगर हम इन लगाओ ही है अपन खेत में तो कहीं ना कहीं देख ला बेचे ला हम इन चाहो ही है, तो वही हम इन भी तो खा ही है ना, तो हम इन के ये चीज संभले के है कि खाली हम इन आमदनी लिए ले नए लगाइए, हम इन के वो चीज खाए के भी है और अपन माटी के भी सुरक्षित रखे के, सबसे जरूरी है माटी के सुरक्षित रखे के। आज हम इन रासायनिक खाद रासायनिक कीटनाशी के डाल के बढ़िया हम इन फसल ले लिए, बढ़िया तो कहला नए है उकर स्वाद उतना बढ़िया नए हो है, जे कि जैविक खेती से उपजल साग सब्जी के स्वाद हो है वो रासायनिक खाद वाला जे हो है साग सब्जी उकर स्वाद एकदम बेस्वाद हो गए है, कोई स्वाद नहीं लगो है, तो ये सब चीज समझा तुहिन। और सभी किसान भाई बहन से एक विनती है कि भाई अपन माटी के बचा है और बचाव एक तरीका है कि रासायनिक खाद और कीटनाशी के पूरा तरीके से छोड़ दे, तुहिन बहुत फायदा होता है, हम इनके माटी भी बढ़िया रहता है, हम इन भी बढ़िया रहते रहे, हम इनके जो गोरु डांगर है वो भी बढ़िया रहते है, मतलब सब चीज बढ़िया हो जाते। और देखला कार्यक्रम में हम इन आगू भी बनल रहे हम और बहुत सारा बातचीत करबे और अब धर सुनाऊ एगो जरूरी संदेश।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: आर देखला ये जरूरी संदेश के बाद एक बार फिर से हम हाजिर ये कार्यक्रम में और बात करबे की भाई कर से पहले बात कर लेलिए पानी के बचत के बारे में। तब पानी के बचत हम इन एक तरह से आर कर सको हिए वो है कि जो सिंचाई हम इन करो हिए अपन खेत में बारी में, तो उस सिंचाई के तरीका हम इनके बदले के है, यानी कि कह सको ये सूक्ष्म सिंचाई। अब सूक्ष्म सिंचाई का है, यह है ड्रिप इरिगेशन, जेकरा की टपक बूंद सिंचाई भी कहल जा है, और स्प्रिंकल सिंचाई जेकरा की फौवारा विधि भी कहल जा है। तो एकर से हो का है कि जैसे पहले हम इन पानी मतलब पटाओ हे लिए अपन खेत बारी में, तो एर और दोंग बनो हिले, तो दोंग से का है पानी जा है और हर झोरा में पानी ओकरा में पहुँचो हिले, और हर जगह जगह मतलब ओकर में आदमी खड़ा करे ले परोले कि भाई पानी काटे के है ओकरा कहो हिले खड़ाओ काटे के, कि मतलब एक झोरा में चल गेले पानी तो ओकरा बंद करके दूसर झोरा में खोले के है। तो ओकर में एकदम मतलब आदमी खड़ा रहे के बहुत जरूरी हले, और पानी भी बहुत ज्यादा लगो हले कि भाई जितना रास्ता से कच्चा कच्चा नाली से अगर पानी जा लगल है तो वो तो बहुत ज्यादा पानी तो कहला माटी में सोख ले इधर ये, तो पानी जब ज्यादा भरपूर रहते तबे न। लेकिन आज के समय में पानी के मतलब जो है लेयर बहुत कम हो गए है, तो वही हिसाब से हम इनके पानी के बचावे के भी है। लेकिन पानी के बचावे के साथ साथ हम इनके जो है कृषि भी बढ़िया करे के, बढ़िया उत्पादन लिए के है। तो एक लेल हम इन कर सको हिए कि कम सिंचाई में बढ़िया उपज कैसे ले सको हिए, तो हम इनके चाहिए कि ड्रिप सिंचाई जे कि टपक बूंद सिंचाई है, तो एकरा तो बहुत किसान भाभी जानो भी है, लगभग जानो है, लेकिन एकर फायदा मतलब सब कोई नहीं उठेले है। तो एकर में का है कि पाइप रहो है जे कि कतार जे में सब्जी लगो है ना, जैसे कि लाइन लाइन करके जे साग सब्जी लगो है, जैसे कि पत्ता गोभी हो गले, फूल गोभी हो गले, इस टाइप के जे भी सब्जी कतार में लगो है, जे भी फसल ओकरे में ई ज्यादा बढ़िया काम करो है। लाइन से पाइप का एक जाला बिछल रहो है, वो पाइप में जगह जगह पे कुछ कुछ दूरी में छोट छोट छेद रहो है। तब एक बार अगर मोटर चालू करे से का है कि पूरा में सब पाइप में पानी दौड़ जा है, और बूंद बूंद करके पौधा के जड़ के पास पानी मिल जा है, और पौधा के जितना पानी के जरूरत हो है उतना पानी मिल जाए, और अनचाहा पानी जैसे कि इधर उधर जाके जे बर्बाद हो ले, तो इकन में बहुत कम बर्बाद हो है, कहीं अगर लीकेज है तब जाके बर्बाद हो ना, तो एकदम नए के बराबर। आ तू देख ला कि अगर पौधा के जड़ के पास पानी मिले तो नमी भी उतने भर में है, दूसर जगह तो है नहीं, और नमी मिलते तबे घास पात उगते, तो इकर में घास पात भी बहुत कम उगो है। और ड्रिप इरिगेशन अगर कहला कि जे मल्चिंग विधि से खेती हो है ना, मल्चिंग सिस्टम वो और ड्रिप इरिगेशन के दोनों के एक साथ मिला के अगर काम करल जाए, खेती करल जाए, तो ई बड़ी बेस फायदा एकर में हो है, और हम इनके चीज करे के भी है। एकर में समय भी बचो है, लेबर खर्च भी बचा है, और साथे जो है कि बहुत तरीका से एकर में फायदा है, घास पात तो उगबे नहीं करो तो लेबर खर्च भी बच जा है, और बढ़िया से मतलब मल्चिंग विधि में कहला कि एक बार जो है एकर मेड़ तैयार करल जा है और प्लास्टिक सीट ढक दियल जा है, तो उकर में कहा है कि खाद के जे नमी उकर जे गुण हो है वो काफी समय तक बरकरार रहो है, और एक बार अगर ये बना दियल जाए तो अच्छा खासा मतलब कहलत कि दो फसल तीन फसल चार फसल तक भी एकर में लियल जा सको है। तब देखला कि तो हो गले ड्रिप सिंचाई के बारे में, और स्प्रिंकल सिंचाई वो है एक फव्वारा सिंचाई भी कहल जाए है। एकर में जैसे कि धान हो गले, गेहूं है, दलहनी फसल है, तेलहनी फसल है, तो इस सब फसल में का हो है कि सब कतार में नहीं लगो है, तो ऐसन फसल एकर में अगर जैसे कि जो समय पानी के जरूरत हो है और उस समय बारिश नहीं हो ले, तब उस समय जीवन रक्षक सिंचाई एकर से करल जाए है। और अब देखला कि कार्यक्रम में मैं बातचीत तो बहुत हो गले, आगू भी कार्यक्रम में बनल रह पे, और हम मिले लिए एगो किसान दिलीप कुमार से जे कि धान के खेती कर लेते हैं, तो इनकर से कुछ बातचीत हो ले है, तो सुना ही है यही बातचीत कि भाई का ये बतलती है इनकर जे अपन खेती बाड़ी में अनुभव है इनकरे जुबानी हमें सुनो ही है। किसान भाइयों, हमें इस वक्त है पकरार गांव में और हमारे सामने है एक किसान। आपका नाम?
2: दिलीप कुमार।
1: और अभी आप धान की खेती कर रहे हैं ना, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपका बिहन हो गया है, तैयार हो गया है,
2: तैयार हो गया,
1: लेकिन फिर भी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बिहन आप किस समय किए थे?
2: जून में किए थे।
1: जून में ना?
2: हाँ।
1: तो उसकी खेत की तैयारी आप किस तरह से किए थे, कैसे बिहन करते हैं, उसका तरीका क्या है, वो आप बताइए।
2: हम लोग पहले हल से जुताई किए, हल से जुताई किए पहला फरवरी में
1: जी,
2: दूसरा किए जून में
1: जी,
2: दो मरतबे किए।
1: हाँ।
2: तीसरा मरतबे में उसमें बिहन तैयार करके खेत को छींट दिए
1: जी। अब बिहन कौन सा लिए है बीज?
2: फ्रंट लाइन 51-52
1: जी,
2: उसको फ्रंट लाइन को बिचड़ा कर दिए और ऊपर से छींट दिए, DAP डाल दिए
1: जी जी,
2: और उसके बाद अभी यूरिया डाल दिए दो तीन दिन पहले, उसके बाद कल से अब रोपा लगेगा
1: जी, तो
2: पानी पटा करके रोपा शुरू कर देंगे।
1: और जब आप बिहन करते हैं तो उस समय गोबर डालते हैं क्या?
2: पहले डाले थे
1: जुताई करने के समय।
2: हाँ,
1: ना
2: हाँ, जुताई के पहले
1: डाले थे।
2: हाँ।
1: और उसके बाद उसको डालने के बाद तब जुताई किए।
2: हाँ।
1: और बिहन जैसे आपका तैयार हो गया है तो कितना मतलब बड़ा हो जाता है बिहन, एक बित्ता डेढ़ बित्ता कितना बड़ा?
2: समय के अनुसार पानी नहीं रहेगा तो डेढ़ बित्ता भी हो जाता है
1: जी। तो मतलब कैसे?
2: अभी रोपने लायक ठीक है।
1: रोपने लायक हो गया, तो ये कैसे आप जान रहे कि अभी रोपने लायक हो गया है, कितना बड़ा?
2: मैंने कि 15-20 दिन के अंदर अंदर रोप देना चाहिए।
1: अच्छा, मतलब बिहन किए हैं तो 15-20 दिन के अंदर
2: 2500 दिन हो जाता है।
1: 25 दिन
2: मतलब पानी पानी की जैसा सुविधा रहा
1: जी जी, तो उतना दिन के अंदर रोप देना चाहिए।
2: हाँ।
1: तो इसे रोपा करने का क्या तरीका है, खेत की तैयारी कैसे करते हैं, ढलान होना चाहिए, समतल होना चाहिए, ये चीज आप बताइए।
2: ये तो जमीन एक जैसा यहाँ पे तो है नहीं
1: जी जी,
2: ऊंचा नीचा तो है
1: जी,
2: तो कोई हल बैल से जुतता है, कोई मशीन से भी जुतता है
1: जी,
2: कोई ट्रैक्टर से भी जुतता है, सब एक जैसा का साधन नहीं है
1: जी,
2: जिसका जैसा साधन हुआ वैसा ही के अनुसार अपना लगाता है।
1: तो कितने जुताई करते हैं खेत की तैयारी करने के लिए?
2: 3 दिन।
1: 3 जुताई करते हैं?
2: 3 जुताई।
1: और उसके बाद उसमें क्या डालते हैं?
2: लगाने के पहले DAP डालते हैं
1: जी,
2: उसके बाद 15-20 दिन के अंदर यूरिया डाल देते हैं
1: और
2: दवा भी डाल देते हैं कीड़ा लगने के चलते
1: जी। और रोपा करने से पहले जो खेत में पानी होता है।
2: हाँ।
1: जैसे कि एक मतलब थोड़ा पानी होना चाहिए तभी ना रोपा होता।
2: हाँ,
1: तो
2: हाँ।
1: वो कितना पानी होना चाहिए खेत में?
2: कितना नहीं हो भी पानी रहेगा, समतल रहेगा और रोपने लायक रहता है तो भी रोप देता है, पानी ज्यादा रहता है तो उसको निकाल दिया जाता है।
1: मतलब सही क्या होता है, कितना पानी सही होता है?
2: मिनिमम इतना पानी होना चाहिए,
1: एक उंगली इतना ना?
2: एक उंगली,
1: तो एक उंगली इतना पानी होना चाहिए तब रोपा करते हैं। रोपा करने का तरीका क्या है, मतलब खेतों से जब उसे उखाड़ते हैं और जैसे बिचड़ा आपका जो तैयार है वहाँ से आपका उखाड़ने का तरीका क्या है और फिर खेत में किस तरह से आप ले जाते हैं, और उखाड़ने के बाद कितना समय के अंदर उसे रोप देना चाहिए?
2: उसको अंदर तुरंत कबाड़िए, खेत में लगा दीजिए।
1: अच्छा, मतलब उखाड़ने के बाद जैसे होता है ना कि उखाड़े और पानी रहता है खेत में तो जड़ धो दिए उसका।

0: तो क्या सही होता है वो बताइए।
1: जाड़े हम लोग धोते नहीं है
0: जी, जी
1: खेत में कबाड़े और खेत में दूसरा खेत में लगा दिए रोपने के लिए।
0: अच्छा,
1: तो आदमी लोग रहता है तो वही सब रोप देते हैं मजदूरा सब।
0: तो कितना कितना दूरी में रोपते हैं और एक साथ कितना पौधा लगाते हैं?
1: एक ही धान लगता है,
0: एक धान ना एक
1: हाँ,
0: साथ में
1: हाँ।
0: और दूरी क्या होता है?
1: दूरी इतना
0: एक एक बित्ता,
1: एक एक बित्ता।
0: और उसके बाद फिर क्या इसमें ध्यान रखते हैं कि पौधा जो है सही से बढ़े और उसमें जो आपका बाइल जो होता है उसका वो सही है?
1: सही मैंने समय पर रोपाने के बाद बाल अच्छा आता है
0: जी,
1: और समय के पीछे रुपयेगा तो बाल तो नहीं आएगा
0: जी जी। और सिंचाई की क्या व्यवस्था रखते हैं? जैसे कि
1: यहाँ पे तो कोई सिंचाई का व्यवस्था है नहीं,
0: और अगर ज्यादा बारिश हो गया तब क्या करते हैं?
1: तो कोई उपाय नहीं है, वो सही बारिश
0: पानी
1: में
0: निकालने का कुछ व्यवस्था?
1: सब अपने निकल जाता है,
0: निकल जाता है ना, वो चीज आप पहले से बनाए रखते हैं कि अगर ज्यादा
1: ऐसा यहाँ का जमीने है
0: कि
1: कोई निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा ना आपको रोकने का जरूरत पड़ेगा
0: जी जी।
1: सब यहाँ पे ढलकान जमीन है
0: जी। आप बस मतलब जो बारिश का पानी है
1: उसी
0: पे
1: निर्भर है,
0: आपका निर्भर है कि जितना बारिश हो जाए और उतना ही हो जाए। ऐसा नहीं है कि अगर बारिश ज्यादा समय तक नहीं हो तो कुछ सिंचाई की व्यवस्था रखते है?
1: कोई सिंचाई का व्यवस्था नहीं, थोड़ा बहुत है तो नदी नाला तालाब से कोई पटा करके।
0: और इसमें है कि जब कितना समय लगता है आपका ये धान तैयार हो जाने में?
1: 120 दिन,
0: 120
1: दिन,
0: 120 से 130 दिन लगता है। और उसके बाद है जैसे कि जब बाली आता है तो बाली में दाना अच्छा भरे, वो खखरी नहीं हो, बहुत सारा होता है ना कि खखरी हो जाता है,
1: मौसम के अनुसार से खखरी हो जाता है।
0: अच्छा,
1: हवा चलने लगता है फूटने के समय में तो खखरी पड़ेगा।
0: अच्छा,
1: और हवा नहीं चलेगा तो बाली में दाना अच्छा आएगा।
0: अच्छा, और कितना समय में मतलब कैसे वो आप देख रहे कि भाई बाली बढ़िया है, उसकी देख रेख के लिए फिर क्या करते हैं और फिर कीटनाशक वगैरह का छिड़काव करते हैं क्या बाद में?
1: एक ही बार रोपा के बाद।
0: अच्छा, रोपा के समय में करते है ना,
1: रोपा के बाद होता है, मैंने कि अब उसमें कीड़ा लगने वाला है तो दवा डाल देता है कीटनाशक। अच्छा, दवा
0: जैसे कि घास वगैरह हो जाता है तो फसल हमारा खराब होने लगता है, उसका बढ़वार कम हो जाता है, तो वो घास निकालने के लिए आप क्या करते हैं?
1: दवा डालते हैं।
0: अच्छा, कब डालते हैं दवा?
1: अभी रोपा ही के टाइम में डालते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं।
0: अच्छा, मतलब हाथ से निकालने का कोई ये नहीं है, दवा पहले ही डालते है ना?
2: कौन सा रोपने के लिए
1: दान रुपने।
2: उसी से।
0: तो दिलीप जी, आपने अपना कीमती समय देकर इतने अच्छे से धान की खेती के बारे में बताया, अपने अनुभव को और भी किसान भाइयों के साथ हमारे साथ साझा किया, इसके लिए तो देख ले कि यही जानकारी के साथ कार्यक्रम खेती बाड़ी से जाए के समय हो गए है। तमरा नाहमता के अनुमति द जोहार।

0: समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड आंदोलन के महानायक और पद्म भूषण से सम्मानित दिशम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर मोरहाबादी स्थित उनके आवास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शिबू सोरेन के परिवार के सदस्यों ने भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके संघर्षपूर्ण जीवन और योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिबू सोरेन का संघर्ष, विचार और आदर्श सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे तथा उन्होंने अपना जीवन आदिवासियों, मूलवासियों और वंचितों के अधिकारों के लिए समर्पित किया। रांची में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य किया जा चुका है। कल 5 अगस्त को राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार द्वारा संशोधित मतदाता सूची के मसौदे का प्रकाशन किया जाएगा। 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक दावे प्रस्तुत करने के लिए समय दिया जाएगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज जमशेदपुर में मीडिया से बात करते हुए झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड में लंबे समय से परीक्षाओं को लेकर सवाल उठते रहे हैं और छात्र लगातार पारदर्शी जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार को छात्रों की आवाज सुननी चाहिए।

झारखंड में 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर आज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो के निर्देश पर सूबे के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन किया गया। और चतरा जिले में पुलिस ने दो युवकों को देसी पिस्तौल और कई कारतूस तथा अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया है। ये दोनों भाकपा माओवादी संगठन के जोनल कमांडर मनोहर गंजू के निर्देश पर भुयांडी घाटी में फायरिंग कर मालवाहक वाहनों में आगजनी की घटना को अंजाम देकर इलाके में दहशत फैलाने जा रहे थे। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:02 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवाणी।

0: युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा साथियों को मासूम का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में भी हम कई प्रकार की जानकारी भरी बातें आपसे करेंगे और साथ ही साथ आपका मनोरंजन भी करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करें इससे पहले आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: युवा दोस्तों, जीवन में तनाव का होना एक नियमित और साधारण सी क्रिया है। समस्या तब खड़ी हो जाती है जब ये तनाव लगातार बना रहे, और जब ऐसी स्थिति आती है तो ऐसे में आवश्यकता होती है उस तनाव को कैसे कम किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए। वैसे ये तनाव की जो क्रिया होती है वो भी क्षणिक और लंबे अंतराल वाली होती है, और इनका निराकरण भी अलग अलग तरीके से किया जाना चाहिए। अगर क्षणिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है तो कुछ बातें हैं जो इससे आपको राहत देती हैं।

0: इसमें एक क्रिया है 4 7 8 सांस लेने की, यानी कहने का तात्पर्य है 4 सेकंड सांस अंदर, 7 सेकंड रोकना और 8 सेकंड में बाहर करना। इस क्रिया को 3 बार दोहराया जाए तो दिमाग शांत होता है। इसके अलावा ग्राउंडिंग की क्रिया होती है, जैसे चीजों को छुएं, आवाज सुने, महक महसूस करें, चीज का स्वाद ले, तो इससे भी तत्काल तनाव में कमी आती है। इसके अलावा पानी पीने से, कुछ समय टहलने से भी तनाव काफी हद तक कम होता है। अक्सर दोस्तों कुछ ऐसी आदतें हैं जो तनाव को कम कर सकती हैं, जैसे नींद। 7-8 घंटे अगर नींद आ जाती है तो इससे तनाव में आवश्यक कमी होती है। इसके अलावा फोन या सोशल मीडिया से भी ब्रेक लेना, यह भी एक तनाव को कम करने की क्रिया है। बात करना दोस्त परिवार या किसी भरोसेमंद इंसान से मन की बात शेयर करना, यह भी आधा बोझ को हल्का कर देता है। कभी कभी लेखनी से भी ये होता है, कागज पर आप अगर उसे उतार दें तो इससे दिमाग का बोझ कम होता है। इसके अलावा बड़ा टास्क देखकर भी दबाव बढ़ता है, ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि उसे छोटे छोटे हिस्से में बांट दें। इसके अलावा सोच बदलने से भी तनाव काफी हद तक कम किया जाता है। ऐसे में कौन सी बात हमारे नियंत्रण में है उसकी एक लिस्ट बनाई जानी चाहिए, जो नहीं है उसे छोड़ देना चाहिए और जो है उस पर ही फोकस करना चाहिए। और अगर 2 हफ्ते या उससे ज्यादा ये लक्षण तनाव की के लक्षण रहे तो किसी विशेषज्ञ चिकित्सक या काउंसलर से बातचीत करना चाहिए, उनका परामर्श लेना चाहिए। निश्चित रूप से इन सब बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो काफी हद तक तनाव को कम किया जा सकता है। और युवा दोस्तों अब आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: Nothing is impossible. Bye bye.

नथिंग इज इम्पॉसिबल, कहता हूँ मैं सच बिल्कुल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कहता हूँ मैं सच बिल्कुल। आओ यारो डांस करें, रिदम पे रोमांस करें, आओ यारो डांस करें, रिदम पे रोमांस।

0: जो मेरी जान,
1: कहता हूँ मैं सच कुल, नथिंग इज इम्पॉसिबल।

0: युवा दोस्तों, अलग अलग युग में अलग अलग तकनीक का विकास होता रहा है। तकनीक के बदलते युग में वर्तमान में कंप्यूटर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी विषय पर आज हम आपको एक भेंटवार्ता सुनवा रहे हैं। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, इनसे बातचीत कर रहे हैं अशोक कुमार। तो आइए सुनते हैं इस भेंटवार्ता का पुनर्प्रसारण, तकनीक के बदलते युग में कंप्यूटर की भूमिका।
1: श्रोताओं, आज के युववाणी कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर एप्लीकेशन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी को। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। साथ ही सर
2: नमस्कार। सर नमस्कार
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने कहा सर कि कंप्यूटर एप्लीकेशन देखते हैं, तो इसी से संबंधित हमारा आज का जो टॉपिक है इसी विषय पर आधारित है कि तकनीक के बदलते युग में कंप्यूटर की क्या भूमिका है। जाहिर से बात है कि कंप्यूटर का जब आविष्कार हुआ था तो लोग समझते थे पता नहीं इसमें काम करना आसान होगा या कठिन होगा, है ना। तो लगा कि मैनुअल से सीधे वो कंप्यूटर की ओर जा रहे थे तो लग रहा था कि जो है तो बहुत टफ है, बहुत दिक्कत है। लेकिन जब उस कंप्यूटर से काम करना शुरू किया तो लगा कि ये तो काफ़ी अच्छा है। जहाँ बहुत सारे ढेर सारे हिसाब किताब रखने पड़ते थे, है ना, कागज, ये सारा आप कंप्यूटर में आपका सेव रहता है। एक क्लिक के साथ सारा सब कुछ आप देख
2: सब कुछ मिल जाता है,
1: सब कुछ मिल जाता है जी। तो बहुत ही आसान है। तो अभी क्या है कि तकनीक में परिवर्तन आ रहा है बदलते युग में। तो कंप्यूटर जाहिर से बात है पहले भी था, अभी भी है, अब भविष्य में भी रहेगा। तो क्या क्या संभावनाएं हैं कि और बदलाव हो रहा है, किस बदलाव और उसको किस प्रकार से जो है एडजस्टमेंट हमारे साथ होगा जी, इसके विषय में थोड़ा सा विस्तार।
2: एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग कहते हैं कंप्यूटर, हम लोग भी जब पढ़ा करते थे तो एक बात आती थी कि कंप्यूटर का एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है, प्रयोग कहाँ कहाँ है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग ये कह सकते हैं कि शायद दुनिया का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो कंप्यूटर के बगैर किया जा सकता
1: जी, बिल्कुल
2: आज
1: सही।
2: आज इसका हर चीज में उपयोग है, हर चीज में इसका एप्लीकेशन है। तो हम लोग जनरली क्या देखते हैं कि कुछ ऐसे आविष्कार, मीन्स जो हम लोग बात करते हैं कि कंप्यूटर, आज का जो कंप्यूटर का प्रयोग है बदलते तकनीकी युग में या टेक्नोलॉजी युग में, तो हम लोग कहें कि ऐसे जनरली हम

0: देखते हैं कि ऐसे 9 टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस हैं जिसने दुनिया के पूरे परिदृश्य को बदल करके रख दिया। जैसे हम लोग सुनने के लिए सुनते हैं कि सबसे पहला हम लोग बात करते हैं कि टेलीफोन हुआ,
1: हाँ जी,
0: प्रिंटिंग प्रेस हुआ,
1: हाँ जी,
0: इसके बाद स्टीम इंजन हुआ, बल्ब हुआ, एरोप्लेन हुआ, इसी कड़ी में एक कंप्यूटर आया। ठीक है, तो कंप्यूटर जब आया तो उस समय लगा था कि एक अलग फील्ड है। जैसे हम लोग बात करते थे कि ये भौतिकी का, भौतिक विज्ञान का क्षेत्र है, ये रसायन विज्ञान का क्षेत्र है, लेकिन जब कंप्यूटर आया तो लगा कंप्यूटर विज्ञान एक अलग क्षेत्र है। लेकिन आज के समय में आप देखिए तो शायद कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: और अभी जो रिसेंट समय चल रहा है जिसमें कि कंप्यूटर में एक और एडवांस स्टेज में जा करके जो हम लोग आए दिन सुनते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तो ऐसा किया कि कंप्यूटर के पूरे, मतलब कंप्यूटर के द्वारा पूरे दुनिया के परिदृश्य को ही बदल दिया।
1: सही
0: है, मतलब मनुष्य की जो हम लोग बोलते थे कि मनुष्य का एक अपनी जो कृत्रिम बौद्धिकता जो हम लोग बात करते हैं कि उसका अपना इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर ने एक टर्म उसमें आर्टिफिशियल ऐड करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य के उस बौद्धिक क्षमता को भी खुद से एनालाइज करने लगा, खुद से बनाने लगा, खुद से अब समझने लगा और खुद से मनुष्य को ही उसका समाधान भी देने लगा, सॉल्यूशन भी देने लगा।
1: लेकिन ये हमें चाहिए जो AI पद्धति का यूज कर रहे हैं वो उसका उपयोग करें, बहुत को उसका दुरुपयोग भी कर देते हैं, कहां का फोटो किस किसको अटैचमेंट करके उसको बदनाम कर देते हैं, तो ये भी थोड़ा सा
0: है, परेशानी का सबब है। उसमें क्या है कि हर चीज का ना, जैसे हर टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी आइंस्टाइन ने मान लीजिए कि एटम को दिया था, न्यूक्लियर एनर्जी को दिया था, तो ये सोच थी कि एक ऐसी एनर्जी है जो दुनिया को इतनी ऊर्जा देगी कि बिजली की कमी, ये सारी चीज की कमी नहीं रह जाएगी। लेकिन लोगों ने क्या किया, उसका एक गलत तरीके से इस्तेमाल करके न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिए, ठीक है, जो पूरा विनाश का कारण हो सकता है। ठीक उसी तरह AI का बहुत उपयोग है अगर उसको रचनात्मक तरीके से, कंस्ट्रक्टिव तरीके से अगर यूज किया जाए तो यूज है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, अगर उसको डिस्ट्रक्टिव तरीके से लोग सोचने लगे तब तो उसका बहुत ही बड़ा दुरुपयोग किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप बैठे हैं आज यहाँ हजारीबाग में, ठीक है, और आपको AI के थ्रू क्या अभी आपका फोटो, आपका वीडियो बना दिया कि नहीं, तो व्यक्ति जो है थे और ये काम कर रहे थे,
1: यही दुरुपयोग,
0: ये उसका दुरुपयोग है। किसी के भी फोटो को मॉर्फ कर लेना, व्यक्ति नहीं है उसको वहां पे प्रेजेंट कर देना, जो व्यक्ति नहीं कुछ कर रहा है उसको उस चीज में इन्वॉल्व करके दिखा देना, कुछ दुरुपयोग है। लेकिन अगर इसका रचनात्मक तरीके से यूज किया जाए तो AI वरदान साबित हो सकता है समाज के विकास में, देश के विकास में और पूरे विश्व के विकास में।
1: अच्छा, AI की तो बात हो गई, अब कुछ और भी ऐसा तकनीक, ऐसा लगता है कि कुछ और भी आने वाले हैं AI के अलावा, या फिर प्रेजेंट में जो चल रहा है उसके बारे में
0: क्या है? जैसे हम लोग प्रेजेंट देख रहे
1: हैं, AI अभी तो AI
0: बहुत सारे स्टेज हैं। AI अभी चूंकि हम लोग एक बेसिक वे में कहें, अगर बहुत डीप में नहीं जाते हैं तो सिंपल वे में कह सकते हैं कि AI का बहुत सारा जो अलग अलग स्टेज से गुजर रहा है उसमें अभी जो है हम लोग AI के बेसिक्स पे हैं जिसका यूज किया जा रहा है। अभी आया है जैसे जेनरेटिव AI, जेन AI की बात है, मतलब वो क्या है कि खुद आप, मतलब आपको हर चीज बताने की जरूरत नहीं है, वो आप ही के द्वारा दिए गए डेटा से या आपके द्वारा किए गए कार्य से खुद को ट्रेन कर रहा है, आप नहीं ट्रेन कर रहे हैं उसको। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई चीज सिस्टम पे, इंटरनेट पर आप बैठे, जैसे कंप्यूटर के बाद जब इंटरनेट आया 1969 में, PC आया, पर्सनल कंप्यूटर की बात आई, पर्सनल कंप्यूटर के बाद जब धीरे धीरे डेवलपमेंट होते होते 1969 में पहला नेटवर्क बना अर्पानेट, उसके बाद जब इंटरनेट का विकास हुआ लार्ज स्केल पर, ठीक है, तो इंटरनेट के यूज से क्या हुआ, आज भी हम लोग बैठते हैं, जैसे आप सिंपल सोचिए अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये सब पे कुछ ऑर्डर करते हैं, आपने जो चीज ऑर्डर किया, जिस चीज को देखा, नेक्स्ट टाइम से जब आप ओपन करेंगे तो देखेंगे उसी तरह की चीजें आपके सामने आना प्रारंभ हो गया, शुरू हो गया। ठीक है,
1: ये तो प्रचलन है,
0: ये तो आप नहीं खोजे फिर।
1: हाँ,
0: ठीक है, तो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली वो समझा कि ये व्यक्ति इन चीजों को लाइक
1: इंटरेस्टेड है
0: तो इनको इस तरह का चीज दिखाया जाए।
1: जैसे छोटे से अपने डिवाइस पर भी किसी चीज को सर्च कर रहे हैं,
0: सर्च कर रहे हैं,
1: एक बार आपने खाने का कोई रेसिपी अपने
0: देखिए उसका खुशी से रिलेटेड,
1: फिर उसी से रिलेटेड सारा आ गया, एक बार आपने किसी रोग से संबंधित किया फिर उसी रोग से संबंधित सारे आ गए।
0: अभी अभी का जो सिचुएशन है, आप अगर स्मार्टफोन लेकर के बैठे हैं तो आप नहीं कुछ सर्च कर रहे हैं, सिर्फ आप बात कर रहे हैं ना आपस में, अपने मित्र के साथ, अपने परिवार में,
1: तो उसको भी
0: घर में, उसको भी वो सुन रहा है। और जैसे ही नेक्स्ट आप खोलेंगे कोई वैसा साइट, ठीक है, आप फेसबुक पर जाइए तो देखिएगा कि उसी से रिलेटेड चीजें आपके सामने आना प्रारंभ हो गया। तो हम लोग को लग रहा है कि अरे मोबाइल तो मेरा बस, अभी हम बात तो नहीं कर रहे हैं या हम इस

0: सर्च थोड़े करें, हम तो सिर्फ रखे हुए हैं, बंद है,
1: लेकिन उसको
0: वो सुन रहा है हर कुछ। तो है क्या कि अभी एआई इस अभी एडवांस स्टेज तो बाकी है, फिर तो सोचिए कि अभी आपके द्वारा बात किए गए हर चीज को सुन करके, देख करके और खुद से खुद को ट्रेन कर रहा है वो, उसको ट्रेनिंग भी आप नहीं दे रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली अपने आप को ट्रेन कर रहा है कि नेक्स्ट क्या करना है, कैसे करना है, इन व्यक्ति को क्या चीज दिखाना है। मान लीजिए कोई चीज आपके सामने आ रहा था, आप उस पे ज्यादा देर नहीं रुके, आया सामने और आप उसको पास कर दिए, स्क्रॉल कर दिए, हटा दिए, एआई खुद से समझ गया कि इस व्यक्ति को इस तरह की चीजें नहीं पसंद है तो इनको ये चीज नहीं दिखाना है। कोई चीज आया आपके सामने, उस पर आप 2-4-10 सेकंड रुके, देखे, क्लिक किए, वो समझ गया, वो इनको इस तरह का चीज पसंद है, इनको आगे इसी तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करना है, तो यह इस स्टेज पे काम कर रहा है।
1: तो अब क्या है सर कि अभी जो है यूनिवर्सिटी में आपके डिपार्टमेंट पे कौन कौन से ऐसे बदलते तकनीक के समय में कौन कौन ऐसे नए कोर्सेज आरंभ हुए हैं जिसमें हमारे श्रोता जो इस वक्त सुन रहे हैं इंटरेस्टेड है वो कोर्स करके उसके ड्यूरेशन बताएं, उसके फी बताएं, उसके करने से उनका भविष्य संवर जाएगा और आगे जाके वो बेहतर
0: विश्वविद्यालय में बहुत सारे पाठ्यक्रम को, बहुत सारे कोर्सेज को पहले से चला रहा है
1: जी,
0: लेकिन नए भी कोर्सेज स्टार्ट किए हैं। प्लस क्या है कि हमेशा जैसे हमारा जो MCA विभाग है, MCA विभाग में हमारे यहाँ दो कोर्सेज जो चल रहे हैं, जैसे एक तो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जो AICTE अप्रूव्ड है और 2 साल का कोर्स है, ठीक है। दूसरा एक BCA कोर्स भी चल रहा है 3 इयर्स का, जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है, ये 3 इयर्स का है, वो भी AICTE अप्रूव्ड है।
1: अच्छा।
0: तो इसमें जो एडमिशन के लिए है, मान लीजिए कि जो बच्चे BCA तो प्लस टू के बाद जो बच्चे आते हैं वो मैथमेटिक्स के हों या प्लस टू में कंप्यूटर साइंस रखे हों तो वो BCA में आते हैं, BCA करने के बाद लोग MCA में जाते हैं, मास्टर्स डिग्री करते हैं। आए दिन जो चेंजे जा रहा है टेक्नोलॉजी में, इस टेक्नोलॉजी के चेंज के कारण हमेशा हर साल हम लोग अपने कोर्स को भी, सिलेबस को, जो विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल है या विश्वविद्यालय का जो सिलेबस कमिटी है, वो कमिटी डिमांड को देखते हुए कि आज सोसाइटी में या देश में इंडस्ट्रियल रिस्पेक्ट से, इंडस्ट्रियल प्रोस्पेक्टिव के अनुसार किस चीज का डिमांड है, किस सारे प्रोग्राम का डिमांड है या किस सॉफ्टवेयर का डिमांड है, कौन सा सॉफ्टवेयर मार्केट में नया आया है, उसके अनुसार कार्यक्रम पाठ्यक्रम को चेंज किया जाता रहा है, अपडेट किया जाता रहा है, इम्प्रूव किया जाता रहा है
1: जी। ये बहुत बेहतर,
0: बहुत ही बेहतर है, क्योंकि उसमें उस जो कमिटी है उसमें इंडस्ट्री के भी कुछ लोग होते हैं जो ये बताते हैं कि अभी मार्केट में इन चीजों का हमको डिमांड है, इनकी जरूरत है, तो उसके अनुसार पाठ्यक्रम को फिर से रिवाइज कर दिया जाता है।
1: सर इस पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए पात्रता क्या है, जैसे संकाय के लोग आ सकते हैं,
0: किसी भी संकाय के लोग, जैसे BCA में है मान लीजिए, तो BCA में क्या है किसी भी संकाय से आए, लेकिन अभी एक रिस्ट्रिक्शन है कि प्लस टू में उनका मैथमेटिक्स होना चाहिए या
1: अच्छा या फिर
0: या वो एक पेपर, जैसे प्लस टू में बच्चे रखते हैं कंप्यूटर साइंस या रखते हैं इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, मतलब कंप्यूटर का एक पेपर है, तो पेपर को रखे हो
1: जी
0: आ सकते हैं। जहां तक MCA में आने का प्रश्न है, तो MCA में कोई भी ग्रेजुएट जो 50% कम से कम मार्क्स लाया हो वो आ सकता है, लेकिन वहां भी एक कंडीशन है कि प्लस टू में मैथमेटिक्स उसका
1: होना चाहिए
0: ठीक है। लेकिन जी। अभी जस्ट हमको लगता है कि एक सप्ताह पहले AICTE ने निर्णय लिया है, भारत सरकार का जो AICTE जो सारे टेक्निकल जितने भी टेक्निकल कोर्सेज चलते हैं देश में, उनको जो रेगुलेटरी बॉडी है, उनको रेगुलेट करने वाली जो संस्था है AICTE, जिसको हम लोग ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन कहते हैं, उसने एक निर्णय लिया है इस बार को खत्म किया जाए, और वो खत्म कर रही है कि मैथमेटिक्स होना कोई जरूरी नहीं होगा।
1: अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बड़ी राहत की बात।
0: इसलिए हुआ क्योंकि NEP में जो कॉन्सेप्ट आया, NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई आई है 2020, उसमें आया कि कोई बच्चा मान लीजिए किसी कारण से प्लस टू में मैथ्स नहीं पढ़ पाया, मान लीजिए नहीं पढ़ पाया, लेकिन आगे चल करके उसकी इच्छा है कि भाई हम कंप्यूटर फील्ड में या कंप्यूटर साइंस में अपना कैरियर बनाए, तब तो बेचारा उसके चलते मारा जा रहा है, वो आगे चाहते हुए भी इच्छा होने के साथ साथ और नॉलेज होने के साथ भी फिर भी नहीं आ पा रहा है। तो उसने कहा कि नहीं, किसी बच्चे को ऐसा रोकना सही नहीं है, इसलिए नई एक पॉलिसी लेकर के आ रही है कि उनको एक छोटा सा ब्रिज कोर्स करा कर, जिसमें कि आप कहते हैं कि मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए, तो ठीक है भाई उसको कुछ दिनों का ब्रिज कोर्स करा करके और वो फिर BCA MCA में एडमिशन के लिए पात्रता उसकी हो जाएगी, वो ले सकता है, भले ही वो मैथमेटिक्स प्लस टू लेवल में नहीं पढ़ा हो।
1: ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी पहल है। उम्मीद करते हैं कि इस पे बहुत जल्द निर्णय हो जाएगा।
0: जी जी,
1: निर्णय हो गया है कि समय थोड़ा लगेगा।
0: निर्णय उसने ले लिया है, सिर्फ नोटिफिकेशन बाकी है।

0: बाकी,
1: तो भारत
0: लेकिन उम्मीद है कि अगले वर्ष से ये चालू
1: एकदम एकदम हो सकता है कि नोटिफिकेशन हार्डली तो महीनों के अंदर ये नोटिफिकेशन चलाएगा आ जाएगा।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही का है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जिनका मैथमेटिक्स नहीं था अब वो वंचित हो जाते करने से,
1: और बाद में
0: एक अच्छी खबर आपने जी जी। तो ये आपसे बातचीत करके श्रोता हमारे जरूर लाभान्वित होंगे, खुश भी होंगे कि भाई एक ऐसा अवसर आ रहा है हम लोगों के लिए। अभी तक कंप्यूटर एप्लीकेशन में एडमिशन नहीं कर पाया थे बीसीए में, तो वो अब भी वो कर सकते हैं एक छोटा सा संक्षिप्त कोर्स करके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आप बताइएगा कि कितने वर्षों का ये कोर्स होगा? आप पहले भी बता चुके
1: हैं तीन साल का कोर्स है, जैसा मैंने कहा कि बीसीए 3 इयर्स।
0: अच्छा, कोई साथ साथ ग्रेजुएशन के साथ कर रहे हैं उनका ठीक है, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं
1: उनके लिए एमसीए है जो कि 2 साल का कोर्स है।
0: अच्छा जी,
1: उसको कर सकते हैं
0: मास्टर डिग्री।
1: हाँ, मास्टर डिग्री कर सकते हैं। विश्वविद्यालय ने अदर जो छोटे कोर्स हैं जैसे कि हम लोगों ने बीच में किया था साइबर सिक्योरिटी में भी, साइबर डिफेंस में
0: बहुत,
1: और कैंपस में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का भी कोर्सेज चल रहा है।
0: अच्छा।
1: और भविष्य में ऐसा है, हमारे विभाग का भी सोच है और हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रपोजल है कि हम लोग भी कुछ नए पाठ्यक्रम, अब हमारे जो माननीय कुलपति हैं उनके सामने एक प्रस्ताव रख करके, और हम लोग भी कुछ और नए पाठ्यक्रम जिसका कि जिस डिमांड है या जिसकी जरूरत है, जिनको करने के लिए बच्चे हजारीबाग से उनको बाहर जाना पड़ रहा है, तो उन पाठ्यक्रमों को भी जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है उसको हम लोग अपने विभाग में स्टार्ट करें।
0: बहुत खूब। तो और इसमें फी कितना लगता है?
1: हाँ, जैसे
0: बीसीए के बारे में बताएं जी, और आरंभ में कितनी रकम देनी पड़ती है?
1: हाँ, जैसे
0: पार्ट टाइम में लिया जाता है।
1: अगर
0: इसके बारे में थोड़ी सी,
1: बच्चे को सहूलियतें दी गई है यहाँ कि अगर वैसा है कि बच्चे एक बार में फी जैसे नहीं दे, जैसे फी जो है वो सेमेस्टर वाइज है,
0: सेमेस्टर जी
1: एडमिशन जैसे बीसीए की
0: तो
1: बात,
0: दो वर्ष में कितने सेमेस्टर है? 6-6 महीने के सेमेस्टर,
1: 6-6 महीने के सेमेस्टर है। तो अगर बीसीए की बात करें तो 6 सेमेस्टर हुआ बीसीए, 6 सेमेस्टर हुआ और एमसीए 4 सेमेस्टर का कोर्स हुआ। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन बीसीए की हम लोग बात करते हैं तो उनको 20,000 देना है, 20,000।
0: बहुत अच्छा।
1: एक सेमेस्टर का फी उसमें 15,000 है और 5,000 ये सब जो एडमिशन फी सारा चीज लेकर के, ठीक है। उसी तरह से फिर अदर जो बाद बाकी 5 सेमेस्टर बचे उनको उसमें 15,000 रुपए देने हैं, ठीक है
0: जी।
1: और एमसीए में एडमिशन के समय जो उनको फी देना है वो नियर अबाउट 28,000-30,000 रुपए का है
0: जी,
1: ठीक है
0: ठीक है।
1: और पर सेमेस्टर जो फी है उनका वो 28,000
0: बांट दिया गया।
1: हाँ, उसको बांट दिया गया,
0: तो बहुत महंगा भी नहीं है,
1: नहीं,
0: और ये एलिजिबल है
1: मतलब इसी कोर्स को करने के लिए, एमसीए और बीसीए को करने के लिए
0: जो
1: बच्चे बाहर जा रहे हैं, ठीक है, उनको इसी चीज में 4-5 लाख रुपए का खर्चा
0: है। सही बात,
1: मतलब सिर्फ फी,
0: फी की बात है, प्लस रहना खाने का अलग से खर्चा,
1: वो सारा चीज अलग है। और हमारे यहाँ के भी जो बच्चे हैं जो हम निकले हैं वो बहुत अच्छे अच्छे जगहों पर प्लेस्ड हैं।
0: जी जी,
1: ठीक है,
0: सही बात।
1: तो इसलिए यहाँ के लोकल बच्चों के लिए सुविधा है कि वो आसानी से इस चीज को यहाँ पर कर सकते हैं। और एक चीज और है कि
2: तकनीक के बदलते युग में कंप्यूटर की भूमिका। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संतोष कुमार सिंह से ली गई भेंटवार्ता का पुनर्प्रसारण। भेंट करता थे अशोक कुमार। और अब कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो चुका है, आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवानी, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। 6:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे फिल्म वारंट का गीत।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: फिल्म संगीत कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म नया दौर का गीत, आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।

और अब आइए सुनते हैं सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की आवाजों में ये गीत। फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मैली।

किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाजों में फिल्म शोले के इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल के लिए अगला प्रसारण हमारे रांची केंद्र से कुछ ही पलों बाद।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत तारावत, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: जन जन तक पहुँचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
8: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आँखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचे, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
9: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
8: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
10: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। पद्मभूषण दिशम गुरु दिवंगत शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 100 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जेपीएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। झारखंड में एसआईआर अभियान के तहत कल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का किया जाएगा प्रकाशन। देवघर के राजकीय श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं के लिए आज से विशेष हेलीकॉप्टर सेवा शुरू। और राजधानी रांची समेत राज्यभर में अच्छी बारिश की संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र ने 8 अगस्त तक भारी वर्षा का जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। पद्मभूषण दिशोम गुरु दिवंगत शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर रामगढ़ के बरलंगा थाना क्षेत्र के लुकैया टांड में आज विकास मेला सह परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 100 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहां दिवंगत शिबू सोरेन के आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। दिशोम गुरु की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर आज राज्य के सभी जिलों में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
11: पूरे राज्यभर में आदरणीय गुरुजी के याद में लोग एकत्रित हो रहे हैं। हर एक जिला आज उनके याद में राजनीतिक दल से ऊपर उठकर लोगों को इकट्ठे होते भी हम देख रहे हैं, क्योंकि आदरणीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी अपने आंदोलन के माध्यम से अलग पहचान बनाते बनाते उन्होंने योगदान दिया और धीरे धीरे वो राजनीतिक लकीर को पार कर इतना आगे चले गए जहां उनके पास नेता, विधायक, मंत्री सभी फीके पड़े।
10: दिशोम गुरु शिबू सोरेन को आज रांची स्थित कांग्रेस भवन में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, पूर्व मंत्री के एन त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान नेताओं ने कहा कि शिबू सोरेन का पूरा जीवन संघर्ष, सामाजिक न्याय और झारखंड की अस्मिता की रक्षा के लिए समर्पित रहा।
12: दलित, शोषित, पीड़ित, यहाँ के आदिवासी, पिछड़े तमाम वर्गों के लोगों के हित के लिए वे बराबर संघर्ष करते रहे। उन्होंने सत्ता को नहीं बल्कि संघर्ष को, और उन्हीं के संघर्ष का देन है कि आज हम झारखंड अलग प्रांत में रह रहे हैं और यहाँ की अस्मिता के लिए हम सबों को एकजुट होकर के गुरु जी के पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा ली।
10: साहिबगंज के सिद्धो कान्हू स्टेडियम में आयोजित श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में जननायक पद्मभूषण शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर झामुमो नेताओं और स्थानीय लोगों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। साथ ही राज्य के राजस्व निबंधन भूमि सुधार और परिवहन विभाग के मंत्री दीपक बिरुवा द्वारा अनावरण किया गया।
13: राज के निर्माता रहे गुरु जी, जल जंगल जमीन की आवाज को हमेशा मुखर होकर के उन्होंने उठाया। आज गुरु जी सिर्फ एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे समाज के कारण हम लोग चाहते हैं कि गुरु जी का त्याग, उनका संघर्ष और उनके बताए रास्तों को संसार आशंसा करते हुए जिनके सपनों का राज समृद्ध झारखण्ड और अग्रणी झारखण्ड बनाने का हम लोग।
10: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन आज भी जारी रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार मामले पर गंभीरता से नजर रखे हुए है, जांच जारी है और समय आने पर छात्रों की मांगों के अनुरूप निर्णय लिया जाएगा। इस बीच भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कहा कि छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मामले में सरकार को शीघ्र ठोस निर्णय लेना चाहिए। उधर जमशेदपुर में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी सीबीआई जांच की मांग की।
14: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं, जेएसएससी और जेपीएससी सीजीएल की परीक्षाओं में गड़बड़ियों के लिए सीधे छात्रों से बातचीत की जाए और उनके मांगों के अनुरूप त्वरित कदम उठाए और न सिर्फ सीबीआई के जांच के आदेश दिया जाए बल्कि ऐसे प्रावधान भी बनाया जाए ताकि भविष्य में कोई अनियमितता बरतने की हिम्मत न कर सके।
10: राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत कल 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची और एएसडीडी सूची का ऑनलाइन तथा ऑफलाइन माध्यम से प्रकाशन किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी मतदाताओं से मतदाता सूची में अपना विवरण जांचने और पात्र लोगों को नाम जुड़ाने के लिए जागरूक करने की अपील की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय कल पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर बाद 1 बजे तक #NewVoters सोशल मीडिया अभियान भी चलाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
15: सेवा जोहार, तैयार हो जाइए इतिहास के सबसे बड़े सांस्कृतिक महाकुंभ का गवाह बनने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड सरकार लेकर आ रही है झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026। आगामी 9 और 10 अगस्त को रांची का मोराबादी मैदान गूंजेगा 5000 से अधिक लोक कलाकारों, झूमर, छऊ और पारंपरिक जनजातीय प्रस्तुतियों से। महोत्सव में होंगे भव्य उद्घाटन एवं सम्मान समारोह, कला एवं शिल्प प्रदर्शनी, पुस्तक मेला, स्वतंत्रता सेनानी विरासत प्रदर्शनी, चित्रकला प्रदर्शनी, ट्राइबल फैशन शो, रॉक बैंड की शानदार प्रस्तुतियां, इमर्सिव जोन और 700 ड्रोन का भव्य शो, आधुनिक 5D थिएटर और AI तकनीक इस अनुभव को और भी यादगार बनाएंगे।
16: यहां मिलेगा पारंपरिक जनजातीय खानपान, आदिवासी व्यंजन प्रतियोगिता, आकर्षक हस्तशिल्प, नॉलेज पार्टनर्स और लेखकों से संवाद का अवसर। सब परिवार आइए और अपनी संस्कृति के रंग में घुल जाइए, अपनी परंपरा और अपनी पहचान का उत्सव गर्व के साथ मनाइए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।

देवघर के राजकीय श्रावणी मेले में आए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए झारखंड सरकार ने आज से विशेष हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत करा दी है। जिला प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार आज से देवघर और बासुकीनाथ के बीच किफायती हवाई सेवा का संचालन किया जा रहा है। टिकट की बुकिंग हथगढ़ मैदान में बनाए गए काउंटर से की जा रही है। विशेष जानकारी के लिए वेबसाइट www.jharkhandaviation.in और हेल्पलाइन नंबर 9122583111 पर जारी किया गया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार 7 अगस्त को जमशेदपुर स्थित ब्रह्म कुमारीज यूनिवर्सल पीस पैलेस रिट्रीट सेंटर से 10 करोड़ देशव्यापी नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर वे विशेष रूप से तैयार की गई नशा मुक्ति जनजागरण बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह अभियान ब्रह्म कुमारी संस्थान की ओर से भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के नशा मुक्त भारत अभियान तथा गृह मंत्रालय के अधीन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मिशन स्पंदन के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। रिम्स में विश्व अंगदान दिवस के तहत सोसाइटी ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पोस्टर, निबंध, नुक्कड़ नाटक और प्रश्नोत्तरी जैसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से अंगदान के महत्व की जानकारी दी गई। चतरा जिले में पुलिस ने 2 युवकों को देसी पिस्तौल और कई कारतूस तथा अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वे दोनों भाकपा माओवादी संगठन के जोनल कमांडर मनोहर गंजू के निर्देश पर भुईयाडीह घाटी में फायरिंग कर मालवाहक वाहनों में आगजनी की घटना को अंजाम देकर इलाके में दहशत फैलाने जा रहे थे। मौसम। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में इस सप्ताह अच्छी बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 8 अगस्त तक राज्य के कई जिलों में भारी बारिश, आकाशीय बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। पद्म भूषण दिशम गुरु दिवंगत शिव सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जेपीएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। झारखंड में एसआईआर अभियान के तहत कल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का किया जाएगा प्रकाशन। देवघर के राजकीय श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं के लिए आज से विशेष हेलीकॉप्टर सेवा शुरू। और राजधानी रांची समेत राज्यभर में अच्छी बारिश की संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र ने 8 अगस्त तक भारी बारिश का जारी किया येलो अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत तारावत, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे दुमका जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे दुमका संवाददाता।
1: उपराजधानी दुमका में आज दीशम गुरु शिव सोरेन की पहली पुण्यतिथि मनाई गई। शहर के खिजरिया स्थित शिव सोरेन आवास पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में दुमका के विधायक और गुरुजी के छोटे पुत्र बसंत सोरेन, जामा विधायक लुईस मरांडे तथा सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके संघर्ष और सपनों को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर बसंत सोरेन ने कहा कि
2: बाल बच्चे पढ़े लिखे स्वावलंबी बने और वही प्रयास हम लोगों का भी है और पार्टी का भी यही दायित्व है और वो उस चीज को कर रही है और हम लोग प्रयास करेंगे कि जो उनके अधूरे सपने हैं बहुत सारे पूरे हो रहे हैं, बहुत सारे बाकी हैं, सबको हम लोग पूरा करें।
1: जामा विधायक लुईस मारांडे ने गुरुजी के जीवन संघर्ष और उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि
3: आज पहले पुण्यतिथि के रूप में आज हम सारे लोग गुरुजी द्वारा स्थापित उनका आवासीय परिसर में हम सारे कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उनको याद किए हैं और हम सारे लोगों को उनकी कमी खली है। उनका हम सभी ने देखा है कि वो किस तरह से गांव कैसे जाते थे, कैसे कहाँ बैठते थे, कैसे लोगों से बात करते थे।
1: दुमका का विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ श्रावणी मेला महोत्सव अपने उत्कर्ष पर है। मेले में अब तक करीब 4 लाख शिव भक्त और कांवरिया बाबा का जलाभिषेक कर चुके हैं। सावन की पहली सोमवारी पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। रात 2:30 बजे मंदिर का पट खुला और सरकारी पूजा के बाद भोर 3:30 बजे से जलार्पण शुरू हुआ। आज मंगलवार को भी भक्तों की यहां भारी भीड़ रही। लोगों ने अर्घा के माध्यम से बाबा को जल अर्पित किया। मंदिर के पुरोहित सुबोध पंडा बताते हैं कि
4: श्रावण माह विशेष महीना होता है, शिव का ही महीना कहा जाता है, बहुत विशेष महत्व है जलाभिषेक का।
1: मंदिर के एक अन्य पुरोहित पप्पू पंडा ने बताया कि
5: सुल्तान जैसे जो लोग जल भरते हैं तो एक जल बाबा बैद्यनाथ के लिए और एक जल बाबा बासुकीनाथ के लिए, बासुकीनाथ के बिना पूजा अधूरा माना जाता है।
1: भक्त बाबा का दर्शन और जलार्पण कर आनंद और सुख की अनुभूति से अभिभूत हो रहे हैं। भक्त बताते हैं कि
6: जितने भी लेडीज है, महिलाएं हैं, उनके लिए बहुत खास है सोमवार, उनके लिए बहुत अच्छा है। हम जो भी मांगते हैं उपवास करते हैं, बाबा को कुछ भी मांगते हैं पूरा करते हैं, इसीलिए आज बाबा का दरबार आए हैं।
1: एक अन्य भक्त ने कहा कि मेले में सांस्कृतिक आयोजनों के साथ साथ दुमका जिले के हस्तशिल्पों और महिलाओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री के लिए स्टॉल भी लगाए गए हैं। आजीविका मिशन से जुड़ी अंजू देवी बताती हैं कि बहरहाल इस वर्ष श्रावणी मेला 28 अगस्त तक चलेगा। मेले में आने वाले भक्तों को जिला प्रशासन द्वारा हर स्तर पर सेवा सुविधा और सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। आर की नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका।
0: अभी आप सुन रहे थे दुमका जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।
7: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 MHz पर रात्रि के 7:15 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम झनकार। सबसे पहले आइए सुनते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार को। फिल्म का नाम है यादों की बारात।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आप सुन रहे थे फिल्म सरगम का गीत। और अब आइए सुनते हैं साधना सरगम और कुमार शानू को।

और इस गीत के साथ ही आज का झनकार कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 7:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: जय जवान जय किसान।
1: किसान मन कार्यक्रम में रौर मन का बहुत बहुत स्वागत है।
0: सुनवैया सब भाई बहन मन के रौर मन के रेडियो संगी जुगनी बहन और
1: मनोज कुमार का
0: नमस्कार
1: जोहार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
0: और मनोज भाई रौर बटले कैसन हाल समाचार है, बरखा पानी कैसन है, खेत बाड़ी में कैसन काम धाम चले लागल है?
1: एकदम बढ़िया है बहन, देखो नी बरखा पानी तो तनी देर से होलक लेकिन ठीके होलक और खेती बाड़ी बढ़िया चलत है। और देखो नी अखन कर मौसम में कहब तो चारों दिन से हरियर हो जाए है और सावन कर महीना भी चलत है तो और बेस लागत है।
0: एकदम बढ़िया कहले रौरे। और देखो बरखा का दिन है के बरखा तो होबे करी और कोनो कोनो ठाव बतले बरखा पाछे है तो सिकर से रोपनी मन भी धान खेत में रोपा मन पछे होल है कि नहीं। और कोनो कोनो ठाव बतले रोपा मन सिरा गेलक है और खेत हरियर हो लागल है। और देखो झारखंड ऐसा राज्य है जे की बोन पत्रा का राज्य है के और झारखंड में खेती बाड़ी मौसम से आधारित है।
1: सही बात है। और देखो मौसम कर बात करे थी बहिनी तो मौसम के हमरे मन के अनुमान करे के मुश्किल होला, लेकिन हमरे मन रेडियो कर संगे चाहे पेपर कर माध्यम के संगे बेरा बेरा से जानकारी में देते रहेला कि कौन कौन बेरा से बरखा पानी होते रहे तो इकर से हमरे मन के फायदा होला है कि नहीं।
0: एकदम नगद गोठ रोरे कहली। देखो बरखा पानी कर बेरा में अगर हमरे के मौसम पूर्व अनुमान अगर जानकारी रहेला तो देखो बरखा पानी बेरा ठनका मन कर भी आपदा से हमरे के डर रहेला तो हमरे मन ई मन से बच सकीला और खेती बाड़ी करेला तो खेत बाड़ी में ठनका जैसा आपदा कर संभावना रहेला तो हमरे मन के ऐसा बेरा में अगर मौसम कर पूर्व अनुमान रहेला तो हमरे अपने सुरक्षित जगह में जा सकीला और अपन जीव जान के बचा सकीला।
1: और देखो भाई बहन हमरे मन के मौसम के बारे में तो जानकारी एकदम चाहिए और संगे संगे देखो हमरे मन के नहीं अब पहले जैसा खेती बाड़ी करत रहे नहीं पारंपरिक ढंग से उसने एखन हमरे मन करब नहीं तो हमरे का जो फसल है नहीं वो बढ़िया होवेला है कि नहीं।
0: एकदम नगद गोठ कहले। देखो अगर हमरे पारंपरिक खेती करब तो हमरे कर फसल बढ़िया होवे और हमरे कर आमदनी भी बढ़िया होवे। काले की देखो पहले हमरे जे खेती करत रही तो उ बेरा कर खेत में हमरे जैविक खेती कर उपयोग करत रही, गोबर खाद जे की हमरे कहिला ओकर उपयोग करत रही सेकर से हमरे कर माटी बढ़िया रहत रहे और ओकर उर्वरक क्षमता जे रहत रहे से बनल रहत रहे। और जे हमरे जैविक खेती कर उपजल अगर हमरे कर सेवन करत रही तो ओकर से हमरे कर स्वास्थ्य बढ़िया रहत रहे और हमरे के जे कौन भी बीमारी से लड़े कर क्षमता भी बढ़िया रहत रहे।
1: सही बात है कहले बहनी। और देखो एखनो तक हमरे कर गांव में चाहे बहुत सारे सन गांव में खेती बाड़ी में नहीं जैविक खाद का प्रयोग करे ना जेकर में खास करके गोबर खाद रहे एकर से का होल नहीं कि ओकर फसल बढ़िया होला ओकर बिक्री भी जल्दी से झट से हो जाएला। तो बहन चलो ने देखो परंपरा खेती कर बारे में एक बढ़िया से हमरे मन संदेश भी सुनी ला।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का
3: पुतला बोल रहे
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी शुद्धता झलकती थी हाँ? माटी भी तंदुरुस्त और लोग तो पहली वाली बात कहा
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है
2: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
1: और देखो बहन संगे संगे हमारे मन के खेती बाड़ी करे कर संगे हमारे मन के फसल बीमा मन भी करवाए चाहिए क्योंकि सरकार कहे ना कि अगर मौसम कर अनुसार से खेती बाड़ी हमारे मन करत थी और सही रूप से खेती बाड़ी नहीं होते नी तो हमारे मन के फसल मन के बीमा जरूर करवाए चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल हमारे कर खेती बाड़ी मौसम से आधारित है और अगर मौसम हमारे के खेती बाड़ी में साथ नहीं दिलक और फसल कोनो तरह नुकसान हो तो हमारे के फसल कर बीमा करवाए से फसल नुकसान कर जिस सरकार दन से मुआवजा भेटायला शिकर से हम किसान भाई मन के राहत मिलेला।
1: और देखो सरकार बहुत सा योजना मन हमारे लिए लाई है और हमारे मन के बस जरूरत है कि जाने कर की कौन कौन सा बीमा चाहे कौन कौन सा योजना हमारे लिए लाभदायक है उसके हमारे मन के फायदा उठाए चाहिए। तो बहन देखो एक जानकारी लिए हमारे मन के नजदीकी ब्लॉक स्तर पर जाके हमारे मन संपर्क कर सकेला और संगे संगे बैंक में जाके एक बारे में हमारे मन जानकारी ले सकेला।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: हमरे गोथियाते रहब, लेकिन हमरे के कार्यक्रम के भी आगे बढ़ाए के, तो आज हमरे कार्यक्रम में काकर लाइन ही से के एक बार जानकारी कर ले। तो मनोज भाई।

0: किला। और देखो एखन बरसात का दिन है के, और बरसात का दिन में हमरे तालाब में मछली पोस के हमरे आमदनी ले सकीला। चलो इकरे बारे में जानकारी करब और इनकर बारे में जानकारी देवे विशेषज्ञ आशीष कुमार, और इनकर से बातचीत कर रहे हैं गौरव कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान वाणी में। आज हम बात करेंगे मत्स्य पालन यानी मछली पालन के विषय में। ग्रामीण क्षेत्र में मत्स्य पालन या मछली पालन कह लें, मछली पालन एक प्रमुख रोजगार के तौर पर उभरा है। आज हमारे साथ स्टूडियो में है आशीष कुमार, सेवानिवृत्त उप मत्स्य निदेशक झारखंड सरकार। सर स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
2: धन्यवाद जोहार।
1: सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि झारखंड में मछली पालन की क्या स्थिति है।
2: झारखंड राज्य बनने के उपरांत झारखंड में मछली पालन बहुत ही तेजी से विकसित हुई है। जब राज्य बना था वर्ष 2000 में तो मात्र 14,000 मेट्रिक टन उत्पादन था, जो बढ़कर अभी 3,63,000 मेट्रिक टन हो गया है। तो इसमें सरकार की भूमिका और मत्स्य पालकों की भूमिका बहुत ज्यादा है, जो कि वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन को अपना करके उत्पादन बढ़ा लिए।
1: झारखंड की अगर भौगोलिक स्थिति को देखें सर, तो ज्यादातर यहाँ नदियां जो है वो पहाड़ी मानी जाती हैं, बरसाती नदियां मानी जाती हैं, तो ऐसे में जल क्षेत्रों के विषय में कुछ जानकारी दें सर।
2: देखिए झारखंड में बहुत तरह के जल क्षेत्र हैं, जैसे कि सरकारी तालाब है, निजी तालाब है, इसके अलावा नदियां हैं, जलाशय हैं बहुत सारे संख्या में, और इसके अलावा डोभा यहाँ बनाए गए हैं कृषि विभाग से कुछ वर्ष पहले। इन सभी में मछली पालन हो रहा है और अलग अलग तरीकों से मछली पालन करके इनका संपूर्ण दोहन हो रहा है। तो विभाग का एक नारा भी है कि जहां कहीं भी पाओ पानी वहां पर पालो मछली रानी, तो सभी प्रकार के जल क्षेत्रों का उपयोग मछली पालन के लिए किया जा रहा है।
1: तो मछली पालन के लिए सर सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए हैं?
2: बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आम जनता को मछली पालन में आगे बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें झारखंड सरकार की भी योजनाएं हैं और केंद्र सरकार की भी योजनाएं हैं। इसमें मछली पालन के लिए प्रशिक्षण है, मछली के बीज उत्पादन के लिए अनुदान है, और हैचरी निर्माण के लिए अनुदान है, तालाब निर्माण के लिए अनुदान है, मछली के दाना पर अनुदान है। तो बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से मछली पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार के भी हाल ही में एक योजना पूर्ण हुई है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसके लिए विभिन्न कार्यों के लिए 40-60% अनुदान की व्यवस्था की गई है, और इससे काफी लोग लाभान्वित हुए हैं।
1: अगर कोई मछली पालन का व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए?
2: देखिए मछली पालन तो तालाब में होता है, तो सबसे पहले तो तालाब की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि उनके पास अपना तालाब है तो वो उसमें कर सकते हैं, यदि नहीं है और उनके गांव में कोई सरकारी तालाब है तो सभी सरकारी तालाबों की बंदोबस्ती मत्स्य विभाग के द्वारा किया जाता है। तो यदि उनके गाँव में सरकारी तालाब है तो वो जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क करके उसका डाक ले सकते हैं, 3 वर्ष के लिए डाक होता है। यदि अपना तालाब नहीं भी है तो आप नया तालाब बनवा सकते हैं, यदि उसके पास जमीन है उनके पास। इसके अलावा अभी छोटे छोटे बायोफ्लॉक सिस्टम आ गया है, एक पॉन्ड बायोफ्लॉक सिस्टम है, जिसमें मात्र 25 डिसमिल के तालाब में मछली पालन किया जा रहा है, तो कम जमीन भी है तो वो भी किसान मछली पालन कर सकते हैं।
1: मछली पालन के लिए सर बीज की उपलब्धता कहाँ से होगी?
2: मछली पालन के लिए सरकार के सभी जिलों में मत्स्य प्रक्षेत्र है, फार्म है, 80 से ऊपर फार्म है पूरे राज्य में, जहाँ से सरकारी दर पर मछली का बीज उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा निजी क्षेत्र के भी लोगों को मछली बीज के उत्पादन के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, और उन्हें स्पॉन्ज जो छोटी मछली होती है 3 दिन की, उसको दिया जाता है, जिससे कि वे मछली बीज उत्पादन करके स्थानीय लोगों को मछली का बीज बेच सके। इसलिए बीज की कोई कमी नहीं है, पूरे राज्य को आच्छादित किया गया है बीज के उत्पादन के लिए।
1: साथ ही सर बीज उत्पादन के बाद जब स्पॉन और बीज दोनों उपलब्ध करा दिया जाता है तो मछलियों को जो दाना दिया जाता है उसकी उपलब्धता के संबंध में बताएं।
2: झारखंड में जब मछली पालन का विकास हुआ तो धीरे धीरे मछली के दाना की भी आवश्यकता महसूस हुई। इसके लिए विभाग के द्वारा 4-5 जगहों पर मछली का दाना का फैक्ट्री बनाया गया है, जहां से दाना उपलब्ध होता है, और वह किसानों को 50% अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा कई बाहरी कंपनियों के भी दाना अब झारखंड में उपलब्ध है। यदि किसान बाहरी कंपनियों का दाना खरीदते हैं तो उस पर भी उनको अनुदान दिया जा रहा है। इस प्रकार यदि वे एक यहाँ फेडरेशन है झास्को फिश करके, झारखंड राज्य सहकारी मत्स्य संघ लिमिटेड, उसके द्वारा संचालित फीड मिलों से यदि लेंगे तो 50% का अनुदान है, यदि बाहर से लेंगे तो उस पर भी उनको 18 रुपये प्रति किलो का अनुदान है। इस प्रकार से दाना की भी व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है।
1: सर उस पॉन्ड से

0: मछली बनने तक की जो प्रक्रिया है, जब मछली पूरी बड़ी हो जाएगी तो उसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है कि मछली पालक उस मछली को किस प्रकार बाजार में ले जा सकता है और सरकार ने क्या इसके लिए प्रावधान किए हैं?
1: देखिए, मछली बिक्री के बाद बाजार में ले जाने के लिए एक तो सरकार अनुदान पर वाहन देती है, पिकअप वैन हो गया या रेफ्रिजरेटेड वैन हो गया या फिर इंसुलेटेड वैन हो गया, एक ये व्यवस्था है। इसके अलावा जो मछली मारते हैं, शिकारमाही करते हैं, वो लोग भी ले जाते हैं। किसान हमारे यदि मछली के जो शिकारमाही करने वाला समूह है उनसे संपर्क करेंगे तो मछली निकाल भी लेते हैं और बाजार भी ले जाते हैं, वहां बिक्री करके पेमेंट कर देते हैं। इस प्रकार कोई दिक्कत नहीं होती है।
0: व्यावसायिक तौर पर सर किन मछलियों का पालन करना और उनका उत्पादन करना मछली पालकों के लिए अच्छा रहता है?
1: झारखंड में देखिए रेहू कतला जो मछलियां हैं ये बहुत दिनों से काफी प्रचलित है, लोग पसंद करते हैं। तो रेहू कतला मृगल जो मछलियां हैं ये भारतीय मछलियां हैं, इनको इनका पालन करना चाहिए। इसके अलावा तीन विदेशी मछलियां हैं जैसे कि सिल्वर कार्प है, कॉमन कार्प है, ग्रास कार्प है, उसको भी एक साथ पाली जा सकती है। इसके अलावा झारखंड का राजकीय मछली जो है वो मांगुर मछली को घोषित किया गया है, तो मांगुर के विकास के लिए भी सरकार अभी कार्यक्रम बना रही है, उसको भी पाल सकते हैं। उसका दर काफी अच्छा है बाजार में, काफी फायदा होता है। इसके अलावा जलाशयों में जो केज लगे हुए हैं उसमें पंगास मछली और तिलापिया मछली ये काफी ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है, बल्कि पंगास तो राज्य के बाहर बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में एक्सपोर्ट भी हो रहा है राज्य से। तो ये सारी मछलियां हो गई जो मेजर कार्प मछलियां हैं, इसके अलावा मांगुर और सिंगी हो गई और तिलापिया और पंगास हो गए। इसके अलावा बहुत लोग कवई मछली भी पाल रहे हैं, छोटे छोटे छोटे हौदा बना करके। तो ये सारी मछलियां पाली जा रही हैं और इनका अच्छा बाजार भी मिल रहा है।
0: जो किसान या जो भी व्यवसायी मछली पालन करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं उनको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए?
1: बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए मछली पालन में एक तो तालाब में पानी का स्तर को बनाए रखना है कि पूरा पानी रहे, पानी कम होने से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, पानी का तापक्रम बढ़ जाता है, मछलियां मरने लगती है। तो एक तो पानी का स्तर बनाए रखना है। इसके अलावा पानी का कुछ गुणवत्ता होता है जैसे उसका पीएच है, ऑक्सीजन है, ये सब देखते रहना है। इसके अलावा मछलियों को नियमित भोजन देना है जिससे कि उनकी वृद्धि होती रहे, और उनके बीमारियों की जाँच करते रहना चाहिए जिससे यदि कोई इन्फेक्शन हो जाए तो तुरंत उसका उपचार किया जाए, नहीं तो सभी मछलियों में संक्रमण फैलने की और संभावना रहती है। तो इस प्रकार से क्या क्या आवश्यकताएं हैं इसके लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, आवासीय प्रशिक्षण है और उसमें ये सभी बातें बताई जाती हैं जिसका पालन करके किसान भाई अच्छा से मछली पालन करके ज्यादा उत्पादन और ज्यादा लाभ कमा सकते हैं।
0: एक सर बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ और आता है कि कोई किसान अगर मछली पालन कर रहा है तो जैसे फसल बीमा योजना है तो क्या इस प्रकार की कोई बीमा योजना भी है मछली पालन हेतु?
1: अभी हाल ही में शुरू किया गया है, बहुत दिन से प्रयास लोग कर रहा था लेकिन अभी ये हो गया, मूर्त रूप ले लिया है। मछली पालन के भी के लिए बीमा शुरू हो गया है और इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार और NFDB जो है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, उन तीनों की सहभागिता है। जो भी किसान चाहें वो अपनी मछलियों का बीमा करा सकते हैं।
0: सर आकाशवाणी के नियमित श्रोता अक्सर किसान रहे हैं और उनको काफी सारे संदेश यहाँ से पहुंचाए जाते हैं, तो किसानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: किसानों को ये संदेश देना चाहेंगे कि मछली पालन से बहुत ज्यादा लाभ है। इसके लिए जो भी सामग्री चाहिए वो आपको स्थानीय स्तर पर ही मिल जाती है, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार के द्वारा हर कदम पर आपको सहयोग दिया जा रहा है, आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, बीज दिया जा रहा है, दाना दिया जा रहा है, मिट्टी पानी के जांच की सुविधा है। तो आप इसको अपनाएं और मछली का दर मार्केट में बहुत ही ज्यादा है, मतलब आप समझिए 200, 300 रुपए, 400 रुपए किलो तक चली जा रही है। इसके अलावा जो छोटे जलाशय हैं उनमें प्रॉन मछली, झींगा मछली, उसका भी पालन हो रहा है, उसमें किसान काफी लाभ कमा रहे हैं। तो ये बहुत ही लाभ का बिजनेस है, इसको आप अपनाइए। यदि आपको कोई भी जल क्षेत्र मिल जाए तो उसको लेकर के उसमें मछली पालन कीजिए, सरकार के संपर्क में रहिए, योजनाओं का लाभ उठाइए और अपना भी आमदनी बढ़ाइए।
0: सर आप किसान श्रोताओं को बड़ी अच्छी जानकारी दी और आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: तो भाई बहन देखो एखन हमारे सुनने की बरखा कर मौसम में मछली पोसे के लिए हमारे मन के का विशेष ध्यान रखे चाहिए, तो सही बात है भाई बहन। देखो कोनो चीज के हमारे मन खेती बाड़ी करत है नी, उकर जानकारी बहुत जरूरी है। जानकारी के अभाव में हमारे मन खेती बाड़ी ठीक से नहीं कर पारेला, तो हमारे मन का प्रशिक्षण जरूरी है। और संगे संगे देखो दूसर मन से भी हमारे मन पूछ के चाहे देख के हमारे मन सीख सकिल है की नहीं,
3: एकदम नगद गोट कर ली के हमारे मन के दूसर मन से भी हमारे देख के प्रेरणा ले सकेला।

0: और उके हमरे अपनाए सकेला और उकर से हमरे आमदनी ले सकेला।
1: और बहन देखो अब एक बात हमके लगत है कि काटो गीत मन सुने चाहे, चूंकि देखो गीत कर बिना हमरे का खेती बाड़ी तो अधूरा रहबे करे।
0: एकदम नगद गोइट रोरे कहले कि देखो खेत में काम करके मन थाकल रहेला तो हमरे के गीत गोविंद कर संगे रिझ रंग करे चाहिए, इकर से हमरे कर जे थाकल मन है से दूर होएला। तो चलो हमरे एगो नागपुरी लोक गीत सुनब, इग्नेश कुमार और संगे मनकर गावल गीत।

0: गीत तो बड़ा नगद लगलक, मन के रिझा दिलक, मन तो करत है कि गीत के सुनते रह, लेकिन कार्यक्रम के भी आगे बढ़ाए के। और आगे कार्यक्रम में हमरे किसान से करल गोइठ के सुना जे महिला किसान है सुमित्रा देवी, जे की जैविक खाद अपने से बनाए ना और जैविक विधि से कीटनाशक दवाई भी बनाए ना। तो चलो इकरे गोइठ के हमरे सुनेला और इनकर से गुठियाए हैं हमरे कर संगी मनोज कुमार।
1: आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं?
2: मेरा नाम सुमित्रा देवी है और मैं कांके ब्लॉक से गागी गांव से आई हूँ।
1: तो सुमित्रा बहन, आपकी पढ़ाई लिखाई कुछ हुई थी क्या?
2: हाँ, कुछ बहुत पढ़ाई हुई है, मैट्रिक तक पढ़ाई हुई है।
1: और क्या करते हैं आप?
2: अभी हम तो खेती बाड़ी का काम करते हैं।
1: जैसे कि बात करते हैं हम लोग खाद के बारे में, और बहुत सारे किसान भाई खाद देते हैं, बहुत सारे रासायनिक खाद देते हैं, बहुत सारे जैविक खाद देते हैं, तो आप कौन सा खाद का ज्यादा प्रयोग करते हैं?
2: अधिकतर हम ऑर्गेनिक खाद, जैविक खाद प्रयोग करते हैं।
1: तो ये सब खाद के बारे में जब बात की है, जैविक खाद के बारे में, तो अपने से बनाते हैं कि खरीदते हैं?
2: हम जैविक खाद अपने से बनाते हैं।
1: उसमें क्या क्या बनाते हैं?
2: उसमें हम केचुआ खाद बनाते हैं। जैसे मेरा खेत में जो भी सब्जी का अवशिष्ट बचता है, लतर हो गया, जो भी साग का पत्ता उत्ता हो गया, उससे हम केचुआ खाद बनाते हैं। और हम खाद में बनाते हैं कि डीएपी खाद के जगह हम बनाते हैं मटका खाद हो गया, घन जीवामृत हो गया, और फिर द्रव जीवामृत हो गया, ये सब खाद बनाते हैं।
1: तो ये सब कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा हमारे किसान भाई को बताएं ताकि वो भी बना पाए।
2: जैसे मटका खाद हो गया, डीएपी का काम करता है, तो एक लीटर पानी में 250 ग्राम गुड़ डालते हैं और 250 ग्राम बेसन डालते हैं और आधा केजी गोमूत्र डालते हैं, आधा केजी गाय का गोबर डालते हैं। उसको हम एक सप्ताह के लिए छोड़ देते हैं। उसको सुबह शाम हमको दहिना और बायां दोनों तरफ से मिलाना पड़ता है, हिलाना पड़ता है उसको, तब एक सप्ताह में मेरा खाद तैयार हो जाता है। फिर उसको हम 15 लीटर पानी में मिला करके हम अपना खेत में छिड़काव करते हैं।
1: और इसके बाद फिर दूसरा कोई और खाद के बारे में?
2: गोबर को हम ले लेते हैं, फिर गोबर में बेसन डालेंगे, देसी गाय का गोबर 10 केजी रहेगा, उसमें आधा केजी गुड़ डालेंगे और

0: आधा केजी बेसन डालेंगे, फिर उसमें गोमूत्र डालेंगे, उसको अच्छा से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम उसको दीवार में गोइठा छायादार जगह में गोइठा ठोकते हैं, फिर वो सूख जाता है। उसको हम एक जगह जमा करके और उसको चूर बनाते हैं। चूर बना करके उसको बोरी में हम डाल देते हैं, उसको हम समय समय से प्रयोग करते हैं।
1: इसको कौन सा खाद बोलते हैं?
0: इसको घन जीवामृत खाद बोलते हैं। और तीसरा खाद है द्रव जीवामृत है, वो भी डीएपी का ही काम करता है। जैसे 5 लीटर पानी में हम 1 पाव गुड़ डालते हैं, 1 पाव बेसन डालते हैं और 250 ग्राम गोमूत्र डालते हैं, गोबर 1/2 केजी डालते हैं। उसको हम कोई घड़ा या डब्बा में उसको घोल करके छाया जगह में रख देते हैं और उसको भी हम सुबह शाम उसको चलाते हैं। फिर 1 सप्ताह में वो तैयार हो जाता है। उसके बाद हम उसमें 25 डिसमिल जमीन के लिए 15 लीटर पानी में मिला करके हम उसको डालते हैं। वो मेरा खाद 1 महीना तक अच्छा रहता है, 1 महीना के बाद वो खराब हो जाता है, इसलिए हम उसको 1 महीना में अपना खेत में यूज करते हैं।
1: तो दवा में क्या क्या बनाते हैं?
0: कीटनाशक दवा में ये है कि जैसे नीमास्त्र हो गया कीड़ा को मारने के लिए, नीमास्त्र बनाने के लिए 25 लीटर पानी में 2.5 किलो करंज का पत्ता डालते हैं, फिर 2.5 किलो नीम का पत्ता डालते हैं और धथुरा का पत्ता हो गया, थेथर का पत्ता हो गया, ये सबको हम मिला करके कूट के और पानी में 25 लीटर पानी में उसको हम डालते हैं। फिर उसमें हम 2.5 केजी गोबर डालते हैं, फिर और 2.5 लीटर गोमूत्र भी उसमें हम डालते हैं। उसको हम रख देते हैं, 1 सप्ताह के बाद वो तैयार हो जाता है। फिर उसको हम 1 लीटर पानी में उसको छान लेते हैं, फिर 1 लीटर पानी में 250 ग्राम हम उसमें डालते हैं और अपना खेत में छिड़काव करते हैं ताकि कीटनाशक मर सके।
1: तो कौन कौन खेत में प्रयोग करते हैं इसका कीटनाशक का?
0: हाँ, कोई भी खेती में हम लोग कर सकते हैं छिड़काव।
1: इसके अलावा और कोई कीटनाशक बनाते हैं?
0: हाँ
1: बताइए।
0: ब्रह्मास्त्र है, तो ब्रह्मास्त्र में सब वही सब रहता है, तो उसमें ब्रह्मास्त्र में नीम का पत्ता, करंज का पत्ता, जो भी पत्ता है जिसको जानवर नहीं खाता है, सब पत्ता को कूट करके हम पानी में डाल देते हैं। तंबाकू का डंठल हो गया या मिर्ची भी हो गया, लहसुन हो गया, वो सबको हम उसमें सबको कूट करके मिलाते हैं। उसके बाद 1 सप्ताह में भी तैयार हो जाता है। 1 सप्ताह के बाद उसको छान के हम लोग अच्छा से बोतल में रख देते हैं और बोतल में रखने के बाद हम उसको छिड़काव करते हैं। जैसे 1 लीटर पानी में 250 ग्राम करके मिलाते हैं और उसको हम 1 सप्ताह के अंतराल में छिड़काव करते हैं। जैसे बड़ा कीट, छोटा कीट, जो भी कीड़ा हमारे खेत में है उसको हम छिड़काव करते हैं तो मर जाता है।
1: चलिए, अच्छी बात है किसान भाइयों कि आप लोग अपने खेतों में खाद और कीटनाशक का प्रयोग करने के लिए खुद से बनाएं, जैसा कि हमारे सुमित्रा बहन बता रही हैं आपको, तो अवश्य हमारे खेतों में इसका प्रयोग करना चाहिए। सुमित्रा बहन, आप जितने सारे जो खाद और कीटनाशक के बारे में बताएं, ये सब की जानकारी आपको कहाँ से मिली?
0: जो जानकारी मिली, जो कीटनाशक खाद हो गया, कीटनाशक दवा हो गया, ये हम लोग को JSLPS में हम जुड़े हैं, तब हम लोग को वहाँ से प्रशिक्षण मिलता है, या तो आत्मा ब्लॉक से वहाँ से भी हम लोग को ट्रेनिंग मिला और हम लोग सब अपना खेत में यूज करते हैं।
1: तो इस सब को देख के आपके गांव वाले चाहे और आसपास के गांव वाले, तो वो लोग भी खुद बनाते होंगे?
0: हाँ, हम लोग मिल के बनाते हैं, फिर अगला दीदी, अगला किसान है, उन लोग को भी हम लोग जानकारी देते हैं और मिल के एक साथ 10-15 किसान मिल के हम लोग वो सब काम करते हैं ताकि अगला किसान भी इसको जाने और समझे।
1: जो किसान भाई हमारे बात को सुन रहे हैं, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
0: जो किसान दादा और दीदी सुन रहे हैं, उन लोगों को हम यही सलाह देना चाहते हैं कि पहले हम लोग रासायनिक खाद से, रासायनिक दवा से खेती करते थे, उससे हमारे मिट्टी में भी बहुत सारा उर्वरक शक्ति था, वो खराब हो गया, नष्ट हो गया, और जो रासायनिक दवा था वो उससे भी हमारे शरीर में नुकसान पहुंचता है। इसीलिए हम यही सलाह देना चाहेंगे कि जो भी किसान दादा दीदी हैं, उन लोगों को हम रासायनिक खेती को हटाना है और जैविक खेती को
1: अपनाना है। सही बात है किसान भाइयों, हम लोग को नए नए तरीके अपनाने हैं और खाद को हम लोग को बढ़िया से ध्यान देना है। तो किसान भाइयों, आज हमारे साथ मौजूद थे सुमित्रा बहन, जो कि गागी रांची के रहने वाले हैं, जो कि खेती बाड़ी करते हैं और साथ में खाद और कीटनाशक खुद बनाकर अपने खेतों में प्रयोग करते हैं। सुमित्रा बहन, आपको भी नमस्कार, जोहार, धन्यवाद। तो संगे साथी मन और भाई बहन, देखो आज कर जे किसान रहे सुमित्रा देवी, इकर से हमरे मन जे गोठियाली और हमरे मन जानले की का लखे हमरे मन के जैविक खाद में बनाए चाहिए और कीटनाशक दवा के हमरे मन कैसे बनाए के अपने खेत में प्रयोग कर सकेला। तो हमके लगत है कि किसान भाई मन ने बढ़िया जानकारी है कि नहीं?
2: एकदम बहुत नगद जानकारी है। तो जी किसान भाई मन सुनत है, तो इकर से किसान भाई मन प्रेरणा ले सकन और ई गोइठ बड़ा नगद रहे और एक गोइठ से नवा संदेश भेटालक और जे किसान भाई मन खेती बाड़ी करे ना तो उमन भी जैविक विधि से कीटनाशक दवाई मन कर उपयोग करो और खेती करो और खेती करके अधिक से अधिक मुनाफा कमाऊ।
1: तो यह गोइठ संगे आज कर हमारे कर कार्यक्रम कर।

0: विदा होकर बिरा हुई केलक। तो कहे चाहते कि ये कार्यक्रम के प्रायोजक रहे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: प्रस्तुति रहे आकाशवाणी रांची।
0: तो भाई बहन आज ले बस इतने, दोस्तों दिन फिर भेटाब एगो नवा जानकारी के संगे। तब तक रोर मन के रेडियो संगी मनोज और
1: जुगनी बहन के देव विदा।
2: नमस्कार, जोहार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। संसद समीक्षा के लिए हमारा अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

अब आप विशाल शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण बैठक बार बार बाधित हुई। हंगामे के बीच जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। उच्च सदन की सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए नकदी और कीमती सामान की चोरी का मुद्दा उठाया, जिसका सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जोरदार विरोध किया और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अपनी बात रखने के लिए कहा। खड़गे ने राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट के कुछ सदस्यों पर चढ़ावे की कथित चोरी का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियां श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों पर लगे आरोपों की जांच क्यों नहीं कर रही हैं। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभापति की अनुमति से बोलते हुए कहा कि विपक्ष जिन मुद्दों को बार बार उठाने की कोशिश कर रहा है उसे सदन में उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया और राम मंदिर निर्माण का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अब ये दल चंदा चोरी के मुद्दे पर नाटक कर रहे हैं। इस बीच द्रविड़ मुनेत्र कषगम के सदस्य तिरुचि शिवा ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में ले जाने का मुद्दा उठाने का प्रयास किया, लेकिन सभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी। हंगामे के बीच शून्यकाल में दो सदस्यों ने लोक महत्व के मुद्दे उठाए। भाजपा की सीमा द्विवेदी ने देश में परिवहन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए परिवहन आयोग के गठन की मांग की। उन्होंने कहा कि परिवहन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन समय की आवश्यकता है। भाजपा की ही गीता उर्फ चंद्र प्रभा ने उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में कौशल विकास केंद्र खोलने की मांग करते हुए कहा कि जिले में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं तथा शिक्षा, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि औरैया में बड़ी संख्या में

व तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक हैं। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहने के कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी था। हंगामे के बीच ही सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू कराया। कुछ सदस्यों ने पूरक प्रश्न भी पूछे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उनके जवाब भी दिए। प्रश्नकाल के दौरान लगातार नारेबाजी और शोर शराबे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश की अनुमति से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया, किंतु सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामे के बीच विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा में भाजपा की दर्शना सिंह, विश्वजीत सिन्हा, साधना सिंह, तृणमूल की ममता ठाकुर, द्रमुक के तिरुचि शिवा, बीजू जनता दल के संतृप्त मिश्रा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मेदा रघुनाथ रेड्डी, अन्ना द्रमुक के एम थम्बीदुरई, एम धनपाल, बीआरएस के रविचंद्र बद्दीराजू, माकपा के वी शिवदासान, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो और शिवसेना की ज्योति नागनाथ वाघमारे ने हिस्सा लिया। चर्चा में अधिकतर सदस्यों ने माना कि देश में जन्म और मृत्यु पंजीकरण नागरिकों का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून को ठीक से लागू नहीं कर देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करने का आरोप लगाया तथा दावा किया कि वर्तमान सरकार इन दोनों के सार्वभौमिक पंजीकरण के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि विलंब से जन्म और मृत्यु पंजीकरण कराने से होने वाले दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां चाहती हैं कि जिन बच्चों का जन्म किसी अन्य देश में हुआ है ऐसे बच्चों का भी जन्म भारत में दिखाया जाए और इसके लिए कानून की खामियों का फायदा उठाया जाता है। उन्होंने आगाह किया कि अब ऐसा नहीं हो पाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इसमें किसी भी सही व्यक्ति के लिए कोई रोक नहीं है तथा इस प्रक्रिया का डिजिटलीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि देश में 3.5 लाख से अधिक पंजीकरण केंद्र हैं। उन्होंने सदन को सूचित किया कि देश में जन्म पंजीकरण स्तर 2014 में 86.6% था जो 2024 में बढ़कर 99.8% हो गया है। उन्होंने कहा कि मृत्यु के मामले में यह आंकड़ा क्रमशः 72.5% था जो बढ़कर 99.4% हो गया है। राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के माध्यम से देश और लोकतंत्र के साथ धोखा किया था। मंत्री ने कहा कि सरकार जन्म और मृत्यु के सार्वभौमिक लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जन्म या मृत्यु होने के 2 वर्ष के बाद यदि सूचना दी जाती है तो ऐसे मामलों में केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही रजिस्ट्रार पंजीकरण करेंगे। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में जन्म और मृत्यु के 2 वर्ष के भीतर सूचना देने वाले मामलों में जो पुराने प्रावधान लागू हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उन्होंने 2 साल से अधिक की अवधि वाले मामलों के लिए प्रावधानों में बदलाव करने का कारण स्पष्ट करते हुए कहा कि देश चाहता है कि भारत माता की गोद में पैदा होने वाली हर संतान का रजिस्ट्रेशन हो। ये मोदी सरकार का संकल्प है। साथ ही जिसकी मृत्यु हो जाती है और वो भूत बनकर तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों का मतदाता बना रहता है, ऐसे भूतों से देश छुटकारा चाह रहा है। राय ने कहा कि इसलिए समय से मृत्यु का पंजीकरण भी अत्यंत आवश्यक है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 को संशोधित कर विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को कड़ा बनाना है। उच्च सदन में यह विधेयक पारित होने के बाद विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामा थमते न देख उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा ने आज विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। हालांकि विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने शोर शराबे के बीच ही सदन में कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 भी पेश किया।
अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर कई विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण आज

भी लोकसभा में गतिरोध बरकरार रहा। सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के कारण पिछले कई दिनों की तरह आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा तो विपक्षी के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि मैं आप सभी को बोलने का अवसर दूंगा, लेकिन प्रश्नकाल में केवल प्रश्न उत्तर होते हैं और सभी से अनुरोध है कि कार्यवाही चलाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि मैंने कल भी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सभी दलों से यह अनुरोध किया था। संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है और चर्चा एवं संवाद के लिए है। ये नारेबाजी करने और तख्तियां लेकर आने का मंच नहीं है। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद बैठक 2 बजे शुरू हुई तो पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाए। इस दौरान विपक्षी सदस्य पहले की तरह ही शोर शराबा कर रहे थे। सैकिया ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर जाकर बैठने का आग्रह करते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण विधेयक है और सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन ने इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विपक्ष के जिन सदस्यों ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पेश किए जाने के विरोध में बोलने के लिए नोटिस दिया था, उन्होंने आसन द्वारा नाम पुकारे जाने के बावजूद ऐसा नहीं किया। इस विधेयक का उद्देश्य संदाय एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करते हुए उन्हें सरल, स्पष्ट और अधिक प्रभावी बनाना है। ये मुख्य रूप से कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करने तथा आयकर कानूनों में आवश्यक बदलाव करने के लिए लाया गया है। आयकर अधिनियम 2025 तथा आयकर अधिनियम 1961 में कई तकनीकी और प्रक्रियात्मक संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। इसके तहत कर निर्धारण, अपील, दंड और अभियोजन से संबंधित प्रावधानों को अधिक स्पष्ट और सरल बनाया गया है। कुछ मामलों में दंड की राशि बढ़ाने तथा कुछ मामलों में कर की दरों का युक्तिकरण करने का प्रस्ताव है। स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए कुछ परिस्थितियों में दंड एवं अभियोजन से राहत का दायरा बढ़ाया गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल भले ही नहीं चल सका, लेकिन सरकार ने कई लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने वर्ष 2024 से अब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों में 254 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने जानकारी दी कि इन लोगों के कब्जे से 40 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। मंत्री के अनुसार 103 विदेशी नागरिक अनिवार्य किराएदार सत्यापन के बिना किराए के मकानों में रह रहे थे। इस मामले में 63 मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक अन्य लिखित उत्तर में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का उल्लेख करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एनक्रिप्टेड संचार एप्लीकेशन तथा डार्कनेट के माध्यम से संचालित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क की पहचान कर उन्हें ध्वस्त करने के लिए खुफिया जानकारी आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि डार्कनेट आधारित मादक पदार्थ तस्करी तथा क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से होने वाले लेनदेन की जांच के लिए साइबर विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है। मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल संबंधी विजन डॉक्यूमेंट के अंतर्गत सभी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में समर्पित डार्कनेट और क्रिप्टो करेंसी सेल स्थापित करने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विश्लेषण, उन्नत तकनीकों तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से साइबर सक्षम संगठित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क को समाप्त करने की परिकल्पना की गई है। राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि देशभर में इस वर्ष 1 मार्च से अब तक लू के कारण 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 4,853 मामले दर्ज किए गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में लू से सबसे अधिक मौतें हुई हैं, जबकि तेलंगाना में सबसे अधिक मामले सामने आए।
राय ने बताया कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर गृह मंत्रालय ने 2026

31 अवधि के लिए राज्य आपदा मोचन कोष एसडीआरएफ तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष एनडीआरएफ के संचालन संबंधी दिशा निर्देशों के अंतर्गत लू और आकाशीय बिजली को अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि अब एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के माध्यम से राहत सहायता प्रदान करने के लिए एक स्पष्ट नीतिगत ढांचा लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही लू से बचाव और उसके प्रभाव को कम करने से संबंधित परियोजनाओं को भी आपदा न्यूनीकरण निधियों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए पात्र बनाया गया है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में हालिया गिरावट का मुख्य कारण भारत द्वारा विदेशों में बढ़ते निवेश तथा विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश की वृद्धि है। उनके अनुसार शुद्ध एफडीआई वर्ष 2024-25 में घटकर 1 अरब अमरीकी डॉलर रह गया, जबकि ये 2023-24 में 10.2 अरब डॉलर तथा 2022-23 में 28 अरब डॉलर था। जितिन प्रसाद ने कहा कि शुद्ध एफडीआई प्रवाह में हालिया रुझान भारत द्वारा विदेशों में बढ़ते निवेश तथा विदेशी निवेश की बढ़ती वापसी से जुड़ा हुआ है। जितिन प्रसाद ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों एसईजेड से देश का निर्यात 2025-26 में 11.8% बढ़कर 16,36,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। उन्होंने कहा कि एसईजेड की क्षमता का बेहतर उपयोग करने, निवेश आकर्षित करने तथा उन्हें घरेलू आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए सरकार समय समय पर विभिन्न कदम उठाती रहती है ताकि इन निर्यात क्षेत्रों की परिचालन दक्षता में वृद्धि हो सके। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण लगातार 12वें दिन आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत। कार्यक्रम की शुरुआत में ये सुनते हैं फिल्म अमर प्रेम का गीत, आवाज किशोर कुमार की। सुनना चाहा है आप सब श्रोताओं ने मालीटोला खीरगांव हजारीबाग से वीरेंद्र भगत, मालती भगत, विकास भगत, जितेंद्र भगत, रितेश भगत, रोहित भगत, अनिकेत भगत, ऋषि और राहुल। सरदार रोड से इम्तियाज अहमद, शहबाज आलम, मोहम्मद फरजंद अली, मोहम्मद मुमताज, गुलाम मुस्तफा, गुलाम मुर्तजा, राजेंद्र ठाकुर और अजीत ठाकुर। और जीटी रोड बरही से सीताराम मालाकार, इंदु देवी, कैलाश भगत, अनीता देवी, हर्षिका रानी, पूनम कुमारी, नूतन, कुसुम और राजा।

की चाहत कार्यक्रम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से पेश किया जा रहा है। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं इन श्रोताओं के पसंद का गीत। चेपाकला बड़का गांव से बाबूलाल ठाकुर, सबिया ठाकुर, तिलेश्वरी भरत ठाकुर, मंजू संतोष ठाकुर, विकास ठाकुर, प्रभात ठाकुर, जितेश आदर्श, अनुराधा रुक्मणी, प्रियंका और दीपिका। झुमरित लैया से जगन्नाथ प्रसाद साहू, पतरातु हजारीबाग से बेसिल खलखो, मधु ऋतु रचना, मीतु श्वेता, पल्लवी रोहित, परवीन, नदीम, मनीषा सोरेन और परिवार के सदस्य। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं फिल्म द बर्निंग ट्रेन का गीत, आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद रफी की।

सौदागर मोहल्ला रामगढ़ से महबूब आलम, शबनम नूरी, मकसूद आलम, पाकीजा बेगम, महमूद आलम, शहनाज नूरी, महफूज आलम और शमशाद बेगम। मेन रोड बड़कागांव से दिनेश मालाकार, नीरज मालाकार, आशीष मालाकार, विकास मालाकार, रंजना मालाकार, गुड़िया रानी, गोलू बाबू, भोला बाबू और उनके मम्मी पापा। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में फिल्म आराधना का गीत।

फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से पेश किया जा रहा है। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म आन मिलो सजना का गीत, आवाज किशोर कुमार की। इस गीत को सुनना चाहा है आप सब श्रोताओं ने जामा मस्जिद रोड हजारीबाग से मुबारक हुसैन, तबारक हुसैन, अमानत हुसैन, शराफत हुसैन, बिल्किस फातिमा, कनीज फातिमा और शहनाज फातिमा। बरका काना से भानु पासवान, अशोक पासवान, सुधा, मंजू, रेखा, सुनीता, पूनम, बिट्टू, अन्वी और अप्पू। भादोडी झुमरी तिलैया से उमेश चंद्र पांडे, शंभु चंद्र, अनिल चंद्र, साकेत शुभम, नर्मदा पांडे, अक्षता, प्रियंका, शमी, अपराजिता और परिवार के सदस्य। जामाडोबा से मोहम्मद रफीक अंसारी और बेगम फरीदा रफीक।

और कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं इन श्रोताओं के पसंद का गीत। खीरगांव माली टोला से कल्लू माली, अरविंद मालाकार, आदर्श मालाकार और अनिकेत मालाकार। रेलवे स्टेशन रोड हजारीबाग से शमी मोहम्मद, शगुफ्ता परवीन, नूरजहां बेगम, तहसीन बानो, खलील अहमद, एहसान अहमद, आरजू परवीन और नसीम अहमद। बड़ी बाजार चाईबासा से मुअज्जम बिहारी, शमीमा खानम, जिम्मी, बिट्टू, किरण, रोशनी, मुस्कान, परी, सानिया, नबीहा और अमन। इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म महबूबा का गीत।

0: और इस गीत के साथ ही आज का आपकी चाहत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। समाचार संध्या, न्यूज एट 9 और स्पॉटलाइट के लिए अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से कुछ पलों बाद।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों

0: सदनों की कार्रवाई नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मंत्रालय ने कहा कि 2014 से पहले भारत के केवल 37 देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौते थे और आर्थिक भगोड़ों से निपटने या उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कोई समर्पित कानून भी नहीं था। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह दिखावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
2: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग भी मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: सितंबर महीने में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को इस साल फरवरी में पदभार ग्रहण करने पर भारत की द्विपक्षीय यात्रा का औपचारिक निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संबंध में भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के जनसंपर्क सत्र में शामिल होने के लिए अलग से निमंत्रण दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाताओं से संवाद पर प्रवक्ता ने कहा कि यह संवाद एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया है।
2: वो एक प्राइवेट मीडिया संस्थान उसका आयोजन कर रहा है। भारत सरकार का इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही साथ वहां पर इस मंच से उठाए गए विषय या उस मंच से बोले गए शब्दों का कोई समर्थन हम नहीं करते हैं, ना हमारा कोई उससे कोई रिश्ता नहीं है।
0: पंजाब पुलिस ने आईएसआई समर्थित दो सीमा पार आतंकी मॉड्यूल के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुरक्षा प्रतिष्ठानों की निगरानी में भी शामिल थे। उन्होंने रेलवे ट्रैक के पास निगरानी कैमरे लगाए थे और फुटेज विदेशी एजेंटों के साथ साझा कर रहे थे। जांच जारी है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के कार्यक्रम को 17 अगस्त तक बढ़ा दिया है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा जबकि अंतिम मतदाता सूची अब 27 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने बताया कि नागरिक 24 अगस्त से 23 सितंबर तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।

0: झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा तक मार्च निकालने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति को गठित करने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले की CBI जांच की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाया है।
1: झारखंड में हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं? कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरेज है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देशभर में 50 लाख से ज्यादा परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का फायदा मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है, ये भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 19 लाख से ज्यादा परिवारों का बिजली का बिल अब शून्य हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में ग्लाव झील को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे जैव विविधता संरक्षण, जल और जलवायु सुरक्षा तथा सतत आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि पूर्वी हिमालय में स्थित ये कमलांग बाघ अभयारण्य और वन्य जीव अभयारण्य के भीतर बसा हुआ स्वच्छ मीठे पानी की झील जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र है। यूपीआई ने पिछले महीने 236 करोड़ 60 लाख रुपए का लेन देन किया है। वित्त मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान को अपनाने और इसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया है। मंत्रालय ने लोगों से देश में लेन देन के तरीके को बदलने की इस यात्रा को जारी रखने का आह्वान किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 210 अंक घटकर 78,429 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक नीचे आकर 24,615 पर दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 4 पैसे कमजोर होकर 95.38 रुपए पर बंद हुआ।
0: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ रुपए की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा।
3: सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम लाया, स्पोर्ट्स के लिए सारी फैसिलिटी व्यवस्था खड़ी करी, लास्ट वीक में 36,000 करोड़ रुपया दिया जो आपके लिए यूज करा जाए। सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी नहीं चलाई। आप जैसे जो एथलीट रिटायर करेंगे, जो स्पोर्ट्स को जीते हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप चलाओ, पैसा हम देंगे। देश की आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा है। हमें हर बार नए लक्ष्य को तय करना है और ये लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रयास करना।
0: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोरापोल थोंगसानगा और चालो एम्पोन चारोएन कितामोर्न को हराया। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2379 में उड़ान के दौरान अत्यधिक ऊंचाई पर विमान में कुछ समय के लिए झटके महसूस किए गए, जिसके कारण विमान के सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को नई दिल्ली में सुरक्षित उतारा गया। विमान में 137 यात्री और 8 चालक दल के सदस्य सवार थे। 13 यात्रियों और 4 चालक दल के सदस्यों को मामूली चोटें आईं। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दिन में दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना है। केरलम, माहे, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर प्रदेश में भी अगले दो से तीन दिनों में ऐसी ही स्थिति रह सकती है। सुरों के जादूगर किशोर कुमार की जयंती पर उनकी जन्मस्थली खंडवा में पूरे दिन उत्साह का माहौल रहा। देशभर से पहुंचे हजारों प्रशंसकों ने उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। समाधि परिसर में दिन भर किशोर कुमार के सदाबहार गीत गूंजते रहे। बड़ी संख्या में संगीत प्रेमियों ने बॉम्बे बाजार स्थित उनके पैतृक निवास का भी भ्रमण किया। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Parliament passes Registration of Births and Deaths Amendment Bill to make delayed registration more stringent. Supreme Court directs Reserve Bank of India to prepare and circulate a SOP for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. 274 fugitive criminals brought back to India from 36 countries between 2019 and 2026, says Home Ministry. New Delhi terms so-called local elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir as complete farce. Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia felicitates Indian medal winners after a successful Glasgow Commonwealth Games campaign. And in badminton, Indian pair of Krishna Prasad Garaga and Prithivi Krishnamurthy Roy advances to the men's doubles second round at Korea Masters Tournament in Assam. The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Home Nityananda Rai moved the bill in the upper house, which aims to amend the Registration of Births and Deaths Act 1969. Following the passage of the bill, the Rajya Sabha was adjourned for the day. We have more from a correspondent.
5: The objective of this bill is to prevent delays in the registration of births and deaths and to encourage people to register in a timely manner. The bill provides that if a birth or death is reported to the registrar more than 1 year but within 2 years, it may be registered only with the approval of the district magistrate, sub-divisional magistrate or an executive magistrate. The bill further states that if a birth or death is reported to the registrar more than 2 years, it will be registered only on the order of the judicial magistrate of the first class. The bill also mandates that the designated authority must verify the authenticity of the reported birth or death before granting permission for delayed registration. The registration of births and deaths is mandatory and the certificate issued provides legal identity to an individual. With Dipendra, this is Anand Kumar for Akashwani News, Delhi.
4: The Lok Sabha has passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 today. Following the passage of the bill, the lower house was also adjourned for the day. Earlier, Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. The lower house witnessed repeated disruptions by opposition members over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET paper leak issue. The Supreme Court today directed the Reserve Bank of India to prepare and circulate a standard operating procedure, SOP, for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. The court also issued a series of directions to states, union territories, law enforcement agencies and banks to strengthen grievance redressal, speed up the restoration of defrauded money and improve the handling of

ये है विविध भारती। आज की फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है भारतीय सिनेमा के बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, गायक और संगीतकार किशोर कुमार को।

सन 1929 के अगस्त महीने की चौथी तारीख को जन्मे किशोरदा ने तारीख यानी इतिहास में अपना वो स्थान बनाया कि उस ऊंचाई को किसी और कलाकार के लिए छू पाना लगभग नामुमकिन सा है। उनकी टाइमिंग, नाटकीयता, भूमिका की समझ और अदायगी, सब कुछ अद्भुत। सच तो ये है कि किशोरदा अपने आप में अभिनय और गायन की एक संपूर्ण संस्था।

मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में जन्मे किशोर कुमार का वास्तविक नाम था आभास कुमार गांगुली। उन दिनों आभास कुमार गांगुली के बड़े भाई अशोक कुमार हिंदी सिनेमा का एक स्थापित नाम बन चुके थे। परिवार के सदस्य अब नियमित रूप से मुंबई आने जाने लगे थे। मुंबई में किशोरदा की नई पाली की शुरुआत हुई किशोर कुमार के नाम से। 1946 में आई फिल्म शिकारी में उन्होंने पहली बार अभिनय किया। इसके दो बरस बाद सन 1948 में आई फिल्म जिद्दी में उन्हें पार्श्व गायन का मौका मिला।

सन 1951 में किशोर दा ने बॉम्बे टॉकीज की फिल्म आंदोलन में नायक की भूमिका निभाई। इसे निर्देशित किया था फणी मजूमदार ने। इसके बाद सन 1957 में किशोर दा ने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म मुसाफिर में अभिनय किया। ये फिल्म ऋषि दा की बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी। लगभग उसी दौर में फिल्म नौकरी में किशोर दा ने एक गीत गाया जिसे पहले हेमंत कुमार गाने वाले थे, लेकिन बाद में सलिल दा ने फिल्म नौकरी का वो गाना किशोर दा से गवाया।

0: बंसुरी बजा।
1: किशोर दा की अभिनय यात्रा जारी थी। अभिनय के साथ साथ फिल्मों के लिए गायन भी जारी था। अपने आप पर फिल्माए गए गीत तो उन्होंने गाए ही, वहीं देवानंद जैसे दिग्गज कलाकारों के लिए भी गीत गाए। उस दौर में संगीतकार सचिन देव बर्मन ने उनसे कई फिल्मों में गीत गवाए। उनमें से कुछ फिल्मों के नाम हैं मुनीम जी, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44, फंटूश, 9 2 11 और पेइंग गेस्ट।

किशोरदा की प्रतिभा अनूठी थी। उनकी फिल्में आज हिंदी सिनेमा की अमूल्य निधि हैं। अपने गीतों में भी स्वरों से वो अभिनय किया करते थे।

0: बात अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार।
1: हास्य व्यंग पर किशोरदा की गहरी पकड़ थी, लेकिन गंभीर भूमिकाओं को भी किशोरदा ने बखूबी निभाया। सुनिए उन्हीं पर फिल्माया गया ये

किशोर दा खुद एक मंजे हुए शानदार अभिनेता थे, इसलिए जिन अभिनेताओं के लिए उन्होंने पार्श्व गायन किया उन अभिनेताओं के अंदाज को अपनी गायकी में बड़े असरदार तरीके से उतारा और दिलकश अंदाज में पेश किया। फिर चाहे वो धर्मेंद्र हो, राजेश खन्ना हो या फिर अमिताभ बच्चन।

अपने करियर के शुरुआती दौर में किशोरदा ने गायन को लंबे समय तक गंभीरता से नहीं लिया। सन 1969 में रिलीज हुई फिल्म आराधना। फिल्म आराधना से भारतीय सिनेमा के आकाश में उदित हुए पहले सुपरस्टार के रूप में

फिल्म आराधना, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार सचिन देव बर्मन और गायक किशोर कुमार के लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुई। इस फिल्म से किशोरदा के करियर में एक रचनात्मक बदलाव की भी शुरुआत हुई और बाद के दशकों में फिल्म संगीत की दुनिया में किशोरदा ने गायन की बुलंदियों को छुआ। किशोरदा ने कई दिलचस्प फिल्मों का भी निर्माण किया, इनमें से कुछ के नाम है दूर गगन की छाव में, दूर का राही, दूर वादियों में कहीं, झुमरू, जिंदगी, चलती का नाम गाड़ी, शाबाश डैडी और बढ़ती का नाम दाढ़ी। आज किशोरदा की बनाई फिल्में अभिनय के छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह हैं। किशोरदा की फिल्मों में जहां हास्य का अपना रंग था, वहीं उतनी ही गहरी संवेदना भी। उनकी फिल्म का ये गीत जितना अर्थपूर्ण है, उतना ही मर्मस्पर्शी भी।

0: एक कलाकार के रूप में किशोरदा बेमिसाल थे, हरफन मौला थे। उनके कद्रदानों ने उन्हें नट सम्राट भी कहा। उनकी प्रतिभा के रचनात्मक आयाम एक से कहीं ज्यादा थे। उनके भीतर हास्य व्यंग्य का एक चितेरा, एक दार्शनिक, एक नटखट बच्चा, एक बेहद संवेदनशील इंसान और एक शानदार कलाकार समाहित था, जिसने अपने अभिनय और गीतों से हमें जाने कितनी बार हंसाया और गुदगुदाया।
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए।

0: ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।
2: 13 अक्टूबर सन 1987 को किशोर दा ने सांसों की सरगम पर अपना अंतिम गीत छेड़ा और फिर चले गए महायात्रा पर।

किशोर दा को अनेक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय फिल्मी गैर फिल्मी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। किशोर दा भारतीय संगीत के अनमोल रत्न थे और रत्न रहेंगे। एक अभिनेता, गायक, संगीतकार और फिल्मकार के रूप में किशोर दा ने भारतीय सिनेमा में जो अमूल्य योगदान दिया है, उसके लिए फिल्म जगत, फिल्मों के दर्शक और उनके गीतों के श्रोता सदैव उनके ऋणी रहेंगे।

0: किशोर कुमार पर, शोध आलेख और स्वर कमल शर्मा का, प्रस्तुति रमेश गोखले की।
1: आज के फनकार।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 10 बज चुके हैं। पेश है कार्यक्रम रजनीगंधा। रजनीगंधा कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं फिल्म आप आए बाहर आई का गीत, आवाज मोहम्मद रफी की।

रजनीगंधा कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं अलका याग्निक और अभिजीत की आवाजों में ये गीत। फिल्म का नाम है आप मुझे अच्छे लगने लगे।

अलका याग्निक और साथियों से आप सुन रहे थे फिल्म आरजू का गीत। और रजनीगंधा कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को। फिल्म का नाम है आया सावन झूम के।

और इस गीत के साथ ही आज का रजनीगंधा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है। रात के 10:30 हो चुके हैं। पेश है कार्यक्रम आज के फनकार। श्रोताओ, आज के फनकार कार्यक्रम में आज के फनकार हैं बॉलीवुड के हर दिल अजीज फनकार किशोर कुमार, बॉलीवुड के चुलबुले अदाकार, गायक, निर्देशक और लेखक किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था। उनका वास्तविक नाम आभास कुमार गांगुली था।

श्रोताओं, बॉलीवुड के चुलबुले अदाकार अभिनय के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। गायकी के साथ साथ अभिनय का उनका अंदाज बेहद निराला हुआ करता था।

दोस्तों, किशोर कुमार अकेले ऐसे कलाकार थे जिन्होंने एक्टिंग, सिंगिंग और डायरेक्शन तीनों में अपने झंडे गाड़े।

श्रोताओं, किशोर कुमार की गायकी को 13 अक्टूबर 1987 को विराम लग गया जब वो हमसे जुदा हुए।

किशोर कुमार की आवाज में इस गीत के साथ ही आज का आज के फनकार कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है।

FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। समाचारों के लिए अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों बाद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है।
1: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या डीएम द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी के नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एथेनॉल कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा अवसर है, बशर्ते इसकी नीति किसान केंद्रित हो और फसल का उचित मूल्य सीधे किसानों तक पहुंचे। नई दिल्ली में आज अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में श्री चौहान ने किसान नेताओं के सुझाव सुने और भरोसा दिलाया कि सरकार एथेनॉल से जुड़े उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के लिए कई निर्देश भी जारी किए। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मौसम विभाग ने कल असम और